FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:56 और 43 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब प्रारंभ होती है।

FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदी में समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं समूह स्वरों में इस देश वंदना के साथ।

0: शीला वर्मा के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम आराधना का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। आज जानकारी का विषय है मृदा परीक्षण और संतुलन पोषण प्रबंधन। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का।
1: किसान संगी हुआ, राम राम, जय जोहार। आज हम खेती के बात में विषय लेके आए हैं मृदा परीक्षण और संतुलित पोषण प्रबंधन। ए विषय में सुघर जानकारी आपन बर सकेल के लाए हवन। संगी हुआ, खेती में अच्छा पैदावार और कम लागत हर किसान के इच्छा होते, और लेकिन कई बार हम बिना माटी के जांच कराए उर्वरक के उपयोग करत रहन, है ना भाई, खातू माटी ला डालत रहन, जेकर से फसल ला पूरा पोषण नहीं मिल पावे, उत्पादन हर प्रभावित भी होते। आज के कार्यक्रम में हम यही बात करबो कि मृदा परीक्षण और संतुलित पोषण कैसे करें के बढ़िया फसल भी हो और हमार माटी भी स्वस्थ रहे। तो का करना है, माटी के जांच जरूरी है और काबर जरूरी है, एकर का लाभ है और कौन प्रकार से संतुलित पोषण दे के हम अपन फसल के उत्पादकता और जमीन के भूया के उर्वरा शक्ति ला बनाए रख सकत हन। आवा हम आप मन संग ये बात ला साझा करी। माटी हमार खेती के आधारशिला है। जौन प्रकार अच्छा स्वास्थ्य बर शरीर के जांच जरूरी होते ना भाई, स्वस्थ रहे बर हमन हमेशा बीच बीच में अपन शरीर के परीक्षण करवाथन, जांच करवाथन। वैसन ही प्रकार से खेती बर खेती अच्छा चाहिए तब माटी के जांच या मृदा परीक्षण जिला कही थन ओह जरूरी है। मृदा परीक्षण से हमन ला ये जानकारी मिलते कि हमार माटी में कौन कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हवा है और कौन पोषक तत्व के कमी है। एकर आधार में हम सही मात्रा में उर्वरक के उपयोग कर सकत हन। अक्सर किसान भाई मन अनुमान के आधार में यूरिया, DAP या जो भी उर्वरक प्रयोग करत है ओला डालत जाते और का होते फिर ओकर से पोषक तत्व के या तो कमी रह जाते या तो फिर ज्यादा मात्रा में खातू हडल जाते। एकर से का होते आर्थिक नुकसान तो है यही है, समझा, खातू खरीदिया तो पैसा भी तो लगते। आर्थिक नुकसान के संगे संग माटी के गुणवत्ता भी प्रभावित होते। तब माटी के परीक्षण बर खेत के अलग अलग जगह ले माटी के नमूना लेके प्रयोगशाला में जांच करवावा और जांच रिपोर्ट में माटी के pH मान, जैविक कार्बन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व के स्थिति बताए जाते। अब बात करबो संतुलित पोषण प्रबंधन के। तो संतुलित पोषण प्रबंधन के अर्थ ही होते कि फसल ला ओकर आवश्यकता अनुसार जम्मो आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध करावा। जैसे कि नाइट्रोजन देहले अच्छा पैदावार होते, फसल ला नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एकर संगे संग सल्फर, जिंक, आयरन और बहुत सारा सूक्ष्म तत्व के भी आवश्यकता होते। तो संतुलित पोषण व कुछ महत्वपूर्ण बात जिहावे जिला ध्यान दे के सुनना है। पहली तो माटी के परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही उर्वरक के उपयोग करा, खातू माटी के प्रयोग करा। दूसर होते खेत में गोबर के सड़े खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग अवश्य करा। एकर से माटी के संरचना सुधरते और जैविक पदार्थ के मात्रा भी बढ़ते। तीसर होते रासायनिक उर्वरक के विभाजित मात्रा में प्रयोग करा, जैसे कि विशेष रूप से यूरिया एला एक साथ नहीं डाल के फसल के आवश्यकता अनुसार थोड़ थोड़ अलग अलग अवस्था में डाला। और चौथा होते दलहनी फसल ला फसल चक्र में जरूर शामिल करा, एकर से माटी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन के उपलब्धता बढ़ते। और पांचवा होते जैव उर्वरक जो राइजोबियम, एजो

0: बैक्टर और पीएसबी के उपयोग करे। ए हर पोषक तत्व के उपलब्धता बढ़ाए में सहायक होते। किसान भाई बहनी हुआ, संतुलित पोषण प्रबंधन अपनाए ले उर्वरक के लागत कम होते, फसल के गुणवत्ता बेहतर होते और उत्पादन बढ़ते और माटी के उर्वरा शक्ति लंबा समय तक बने रहते। एकर बर हर 2 से 3 साल में अपन माटी के जाँच जरूर करवावा, अब पोषण प्रबंध ला जरूर अपनावा। ए हर होते टिकाऊ और लाभकारी खेती के आधार। तब भाई आज हम बात करें हैं मृदा परीक्षण और संतुलित पोषण प्रबंधन खेती में काबर महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से एकर से आप मन के खेत के उत्पादन क्षमता बढ़ी और लागत घटी और माटी के सेहत भी सुरक्षित रही। यही गोट बात के संग आज के खेती के बात में अत के कल नया विषय के साथ फिर हम उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: कार्यक्रम खेती की बात अभी हम प्रसारित कर रहे थे। कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय था मृदा परीक्षण और संतुलन पोषण प्रबंधन, वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रामचरित मानस गान। गायन स्वर महेंद्र कपूर और मिताली सिंह का। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गई माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगी। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

0: अभी हम प्रसारित कर रहे थे कार्यक्रम रामचरितमानस गान। गायन स्वर महेंद्र कपूर और मिताली सिंह का था, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। और अब समय हुआ है श्रोताओं कार्यक्रम चिंतन का। आज का विषय है थोड़ी सी असावधानी बड़ी भूल का कारण, आलेख श्री भावसी हिरवानी का।
1: इस बात का हम सबको अनुभव है कि जरा सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। कई बार ये हमारे जीवन की दिशा ही बदल देती है। आज जब हम अपने अतीत की ओर मुड़कर देखते हैं तो हमें बहुत साफ दिखाई देता है कि हमसे चूक कहाँ हुई। यदि हमने तब सावधानी बरती होती तो हम आज बेहतर जिंदगी जी रहे होते। मसलन, जब पढ़ाई का वक्त था हम इसके प्रति गंभीर नहीं रहे और दूसरों से पिछड़ गए, मगर अब पछताने से क्या होगा, वक्त बीत चुका है जिसे दोबारा नहीं लौटा सकते। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हर पल सावधानी की जरूरत है, चाहे खेती बाड़ी में काम कर रहे हों या फिर सड़क पर चल रहे हों। काम करते वक्त सावधान नहीं रहे तो काम बिगड़ सकता है और सड़क पर चलते वक्त असावधान हुए तो दुर्घटना घट सकती है। कुछ समय पहले पुलिस वालों ने सड़क पर रखे गति नियंत्रक पर बहुत सुंदर सूक्ति लिखी थी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह केवल सड़क पर चलते समय ही लागू नहीं होती बल्कि उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सब समय इसकी आवश्यकता होती है। प्रायः देखा जाता है कि कहीं बाहर जाना होता है तो लोग घर में टाल मटोल करते समय व्यतीत कर लेते हैं और सड़क पर आते ही उन्हें हड़बड़ी हो जाती है। सड़क पर और भी लोगों को चलना है, इसलिए आराम से सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। हड़बड़ी का कोई भी काम अच्छा नहीं होता। इस संबंध में किसी ने क्या खूब कहा है, एक मिनट देर से पहुंचने की बजाय 3 घंटे पहले पहुंचना अच्छा है। अन्य क्षेत्रों में भी असावधानी का परिणाम घातक हो सकता है। यदि हम भोजन करते समय सावधान नहीं रहे और अधिक खा लिया तो स्वास्थ्य खराब होने में देर नहीं लगती, इसलिए यही अच्छा है कि शरीर के अनुकूल खाना खाएं और स्वस्थ रहें। यही सिद्धांत हमारे व्यावहारिक जगत में भी लागू होता है। दुर्भाग्यवश हमारे सारे संबंध स्वार्थ के धागे से जुड़े हुए हैं। जिस दिन लोगों का स्वार्थ खत्म हो जाता है उस दिन अपने सारे संबंध तोड़कर अलग हो जाते हैं। यदि हमने अपने पराए किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार में चूक की तो हमारे संबंधों में दरार आ जाती है, कई बार हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाता है। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जानते हैं कि उन्हें कितनी सावधानी पूर्वक पेपर हल करने होते हैं। थोड़ी सी लापरवाही के कारण उन्हें असफलता का मुख देखना पड़ता है। इसीलिए हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा सावधान करते हैं कि काम चाहे कोई भी हो उसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, किंतु हम लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। रामचरितमानस में सीता हरण की घटना से हम सब परिचित हैं। इसका कारण क्या था? सीता की असावधानी। हिरण के

0: पीछे भागते हुए राम के दूर चले जाने के बाद मारिच ने हाँ लक्ष्मण कहा तो सीता भ्रमित हो गई और राम को संकट में जान लक्ष्मण को सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, पर सीता जी के विवश करने पर उन्होंने सीता के चारों ओर सुरक्षा रेखा खींच दी और हिदायत दी कि वे इसके बाहर कदम न रखें। मगर जब रावण साधु के वेश में भिक्षा के लिए आया तो सीता जी उस रेखा को पार करके भिक्षा देने चली गई और रावण के द्वारा हर ली गई। महाभारत के पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी युधिष्ठिर की घोर लापरवाही का ही परिणाम था। एक बार हारा हुआ राज्य पांडवों को लौटा दिया गया था, मगर युधिष्ठिर फिर जुआ खेलने बैठ गया और राज्य को हार जाने के बाद अपने भाइयों के अतिरिक्त द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इसका परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध और भरत वंश का विनाश। इस संसार में सब कुछ अनिश्चय के अंधकार में डूबा हुआ है। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाएगा। आज जिस व्यक्ति पर हमें बहुत भरोसा है वो कल स्वार्थवश मुंह फेर ले तो कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सतत सजग रहकर जीवन जीने का प्रयास करें, इसी में हमारी भलाई है।
1: कार्यक्रम चिंतन अभी हम प्रसारित कर रहे थे। आज कार्यक्रम में विषय था थोड़ी सी असावधानी बड़ी भूल का कारण। आलेख था श्री भाव सिंह हिरवानी का। और अब लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आपको जानकारी दे दें आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आज शाम 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले करेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से क्रिकेट मैच की समाप्ति तक। इस बीच समाचारों का अनुप्रसारण उनके निर्धारित समय पर किया जाएगा।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण दिन के 11 बजे किया जाएगा और शाम 5 बजे प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे CF वन विभाग सरगुजा। शाम 5:05 पर कार्यक्रम किसानवाड़ी के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम में सुनिएगा बरसात पूर्व पशुओं को रोग रोधी टीकाकरण विषय। इस पर जानकारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर रंजना नंदा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सालय बरतोरी, विकास खंड बिल्हा, जिला बिलासपुर से। कार्यक्रम के संचालक होंगे चैतु भैया। कार्यक्रम महिला सभा का समय होगा शाम 5:35 का। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नशे के खिलाफ एकजुट समाज इस विषय पर। साथ ही क्रम पर्यटन स्थल में आपको सुनवाएंगे मंदिर दर्शन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी इस विषय पर बातचीत। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की।

फरमाइशी कार्यक्रम लेकर आएंगे, कार्यक्रम माटी के स्वर, सुबह 8:30 पर। इस कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीत, छत्तीसगढ़ी लोकगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे, और फरमाइशी फिल्मी गीतों को श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद में सुबह 10:00।

वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला टी20 विश्व कप स्पर्धायां अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैनचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते। या भारतीय समयानुसारं सायंकाले 7 वादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू सम्प्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

0: हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सवेरा होकर रहता है। मुश्किलों का हर बादल एक दिन बिखर कर रहता है। जो भरोसा रखता है अपनी मेहनत और हौसलों पर, उसके लिए हर अंधेरा उजाले में बदल कर रहता है। कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले सभी श्रोता साथी, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी खुशियों की धूप खिलती है तो कभी चुनौतियों के बादल घिर आते हैं। लेकिन ऐसे समय में जो चीज हमें संभालती है, आगे बढ़ने की ताकत देती है, वो है सकारात्मक सोच और हमारा आत्मविश्वास। किसी ने क्या खूब कहा है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं होती, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। साथियों, जीवन की कठिनाइयों को हम हमेशा नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, उन्हें देखने का अपना नजरिया हम जरूर बदल सकते हैं, और यही सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम प्रकृति को देखें तो वो भी हमें सकारात्मकता का संदेश देती है। जैसे गर्मी कितनी भी तेज हो, बारिश की फुहारे एक दिन राहत लेकर आती है। पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते खो देते हैं, लेकिन फिर नई हरियाली के साथ खड़े भी हो जाते हैं। साथियों, प्रकृति हमें सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है और कठिन समय हमेशा नहीं रहता। श्रोताओं, आज का युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जावान है और बड़े सपने देखता है, लेकिन आज के युवाओं पर दबाव भी पहले की तुलना में कहीं अधिक है। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, प्रतियोगी परीक्षाएं, नौकरी की अनिश्चितता और सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर कई बार युवा खुद को कमतर समझने लगते हैं, अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं, और यहीं पर सकारात्मक सोच की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ युवा असफलता या निराशा के क्षणों में गलत दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। कोई नशे की तरफ बढ़ जाता है तो कोई गलत संगति में पड़ जाता है, और कुछ लोग छोटी सी असफलता से घबरा जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि असफल

0: सफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि सफलता की तैयारी होती है। किसी परीक्षा में असफल होना, नौकरी न मिलना या किसी भी लक्ष्य का पूरा न होना, ये नहीं बताता हमें कि व्यक्ति असफल है। ये केवल बताता है कि प्रयास अभी जारी रखना है। किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य रखना, परिवार और मित्रों से बात करना और सकारात्मक बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे भी चर्चा करेंगे। समय हुआ है एक छोटे से अंतराल का।
1: जब बात हो परिवार की सेहत, स्वाद और भरोसे की, तो नाम हो हेल्दी व इंडिया। शुद्ध शहद A2 बिलोना की कच्ची घानी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विश्वसनीय श्रृंखला के साथ हेल्दी व इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
2: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम आज सुबह में आप सभी का पुनः स्वागत। समय हुआ है यातायात संबंधी जानकारी सुनने का। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट। ट्रैफिक अपडेट हमें मिलता है उमाशंकर पांडे से, तो चलिए जानते हैं आज आपके शहर बिलासपुर में क्या रहेगा ट्रैफिक का हाल।
4: नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत है ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर, अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। सभी श्रोता साथियों का स्वागत है, मैं हूं उमाशंकर पांडे। आज प्रदेश स्वास्थ्य मितानी संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपे जाने की योजना है। आज दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य मितानी संघ के सदस्य अर्पण में एकत्र होकर रैली स्वरूप चलकर नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे। रैली के सभी सदस्य ये ध्यान रखें कि रैली के कारण आम यातायात किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। सभी सड़क में एक किनारे चलें। कलेक्टर कार्यालय गेट में सड़क तक खड़े होकर सड़क में जाम न लगाएं। सार्वजनिक सड़क में सभी को चलने का अधिकार है, इसलिए अपने अधिकार की मांग कर आम जनों के अधिकारों का हनन हरगिज ना करें। मित्रों, आज ही नागरिक सुरक्षा मंच के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में सीपत चौक सरकंडा में शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। धरना प्रदर्शन में शामिल सभी सदस्यों से यही कहना है कि यह सुनिश्चित करें कि इस आह्वान से आम यातायात बाधित ना हो, लोग नाहक परेशान ना हो। शाम के समय यहाँ पर यातायात का दबाव बहुत अधिक होता है, इसलिए धरना प्रदर्शन सड़क से सर्वथा हटकर होना चाहिए। सामान्यतः इस प्रकार के आयोजनों में लोगों की यह धारणा होती है कि ऐसे स्थान में यातायात बाधित कर अव्यवस्था उत्पन्न कर देना ही कार्यक्रम की सफलता है, जो सर्वथा अनुचित है, विधि विरुद्ध है, ऐसा कभी ना करें। साथियों, इस समय मुहर्रम पर्व की शहर में धूम है, कहीं सवारी की गश्त हो रही है तो कहीं डल्ला सिर का नाच हो रहा है। सभी से अनुरोध है सड़क के किनारे चले, ऐसे स्थानों से अपने वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ट्रैफिक अपडेट अभी आप सुन रहे थे उमाशंकर पांडे से, और जाना आपके शहर बिलासपुर में क्या रहेगा आज ट्रैफिक का हाल। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बात एक ऐसे महान संगीतकार की। साथियों, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा भी है, और जब बात भावनाओं को सुरों में ढालने की हो तो संगीतकार मदन मोहन का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम

दौर में अनेक महान संगीतकार हुए, लेकिन मदन मोहन की पहचान सबसे अलग रही। उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत की गहराई, गजल की नफासत और भावनाओं की सच्चाई सुनाई देती है, और यही कारण है कि उन्हें गजलों का शहजादा कहा जाता है। संगीतकार मदन मोहन का जन्म आज ही के दिन यानी 25 जून को हुआ, और बचपन से ही संगीत के प्रति उनका रुझान रहा था। उन्होंने सेना में भी कुछ समय काम किया, अपनी सेवा दी, लेकिन अंततः उनका मन संगीत की दुनिया में ही रमा। मुंबई आने के बाद उन्होंने संघर्ष किया और धीरे धीरे फिल्म संगीत में अपनी जगह बनाई। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी श्रोताओं कि वे संगीत के भाव को समझकर धुन तैयार करते थे, और शायद यही वजह है कि उनके गीत सीधे दिल तक पहुँचते हैं। प्रेम, विरह, इंतजार, दर्द और संवेदनाओं को उन्होंने जिस खूबसूरती से संगीत में ढाला, वो आज भी बेमिसाल माना जाता है। श्रोताओं, गायिका लता मंगेशकर जी ने एक बार कहा था कि मदन मोहन की धुनें गायक से पूरी तन्मयता और संवेदनशीलता की मांग करती हैं। लता जी की आवाज और मदन मोहन के संगीत का संगम हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बन गया। लग जा गले नैना बरसे, आपकी नजरों ने समझा जैसे गीत इसकी मिसाल है। साल 1964 उनके करियर का महत्वपूर्ण वर्ष रहा, और इसी वर्ष आई फिल्म वो कौन थी और हकीकत का संगीत आज भी साथियों उतना ही लोकप्रिय है। कर चले हम फिदा जानोतन साथियों जैसे देशभक्ति गीत हो या होके मजबूर मुझे जैसी दर्द भरी रचना, हर गीत में उनकी प्रतिभा झलकती है। साथियों, मदन मोहन ने केवल प्रेम गीत ही नहीं बल्कि देशभक्ति, भक्ति और गजल आधारित गीतों को भी नई ऊंचाइयां दी। उनके धुनों में कभी शोर नहीं होता था बल्कि एक सादगी और आत्मीयता होती थी जो श्रोताओं को बांध लेती थी। और साथियों, दिलचस्प बात ये कि अपने जीवन काल में उन्हें अपेक्षाकृत कम पुरस्कार मिले, लेकिन समय के साथ संगीत प्रेमियों और विशेषज्ञों ने उनके योगदान को और अधिक सहारा। आज उनके गीत संगीत सीखने वालों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके निधन के वर्षों बाद भी उनकी धुनें जीवित रहीं। फिल्म वीर जारा में उनके अप्रयुक्त संगीतबद्ध सुरों का उपयोग किया गया, जिन्हें नई पीढ़ी ने भी खूब पसंद किया, और ये उनकी अमर रचनात्मकता का प्रमाण है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं उन्हीं के संगीत से सजा ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कुछ कलाकार अपनी मौजूदगी से नहीं अपनी रचनाओं से अमर होते हैं। मदन मोहन भी ऐसे ही संगीतकार थे जिनकी धुनें आज भी यादों के झरोखे से निकलकर दिलों में उतर जाती हैं। और अब श्रोताओं, बात करेंगे ऐसे विषय पर जो देखने में अलग अलग लगते हैं लेकिन वास्तव में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, योग, प्रकृति और नशा मुक्त जीवन। श्रोताओं, जून का महीना अपने साथ कई संदेश लेकर आता है और एक और देखिए, मानसून के आने की आहट सुनाई दे रही है। धरती हरियाली की चादर ओढ़ने की तैयारी में है, तो वहीं हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया। ऐसे समय में ये सोचना जरूरी है कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन का रास्ता आखिर है क्या। वैसे कहा भी गया है, प्रकृति के करीब रहिए, योग को अपनाइए और नशे से दूरी बनाइए, जीवन स्वयं सुंदर बन जाएगा। साथियों, अक्सर लोग योग को केवल कुछ आसनों तक ही सीमित समझ लेते हैं लेकिन योग इससे कहीं अधिक है। योग का अर्थ है जोड़ना, शरीर को मन से, मन को विचारों से और व्यक्ति को प्रकृति से जोड़ना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और भागदौड़ बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में योग हमें रुकना, स्वयं को समझना और संतुलन बनाना सिखाता है। जब हम सुबह कुछ मिनट प्राणायाम करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। प्रकृति और योग का संबंध बहुत गहरा है। सुबह का उगता सूरज हमें नियमितता का संदेश देता है, पेड़ हमें निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाते हैं, नदियां हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं, और जब हम किसी बगीचे में टहलते हैं, पेड़ों की छांव में बैठते हैं या पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। साथियों, आज विज्ञान भी मानता है कि प्रकृति के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आज हमारे पास देखिए पहले से

कहीं अधिक सुविधाएं हैं, मोबाइल इंटरनेट कई आधुनिक सुख साधन हैं, लेकिन इसके बावजूद तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग तनाव से बचने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं और नशे की ओर बढ़ जाते हैं। तो कोई कहता है सिर्फ एक बार दोस्त यार के साथ, लेकिन तनाव कम करने के लिए हम नशा कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत बन जाती है। नशीले पदार्थ साथियों कुछ समय के लिए भ्रम पैदा कर सकते हैं कि तनाव

जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को प्रकृति के साथ भी जोड़े। स्वस्थ जीवन किसी दवा की दुकान में नहीं मिलता है श्रोताओं, वो हमारी आदतों में ही छिपा होता है। योग हमें संतुलन देता है, प्रकृति हमें शांति देती है और नशा मुक्त जीवन हमें आत्मविश्वास और सम्मान देता है। जिसके जीवन में योग है, जो प्रकृति के निकट है और जो नशे से मुक्त है, वो ही जीवन में वास्तव में स्वस्थ, सुखी और सफल है। वैसे भी संत कबीर कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। तो आइए आज से ही स्वस्थ जीवन की दिशा में एक नया कदम बढ़ाएं।

कार्यक्रम आज सुबह अभी श्रोता सुन रहे थे और अब समय हो चला है श्रोताओं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का।

और अब इन्हीं बातों और गीतों से दी कार्यक्रम आज सुबह से दीजिए अनुमति आपके अपनी रेडियो साथी खुशबू को।

श्रोताओं, 90 के दशक का हिंदी सिनेमा जब भी याद किया जाएगा, कुछ चेहरे अपनी मुस्कान, अदाकारी और नृत्य कला के कारण हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्हीं में से एक नाम है करिश्मा कपूर का। करिश्मा कपूर ने ऐसे दौर में फिल्मों में कदम रखा जब कपूर परिवार की बेटियों का फिल्मों में आना आम बात नहीं था, लेकिन उन्होंने परंपराओं को तोड़ते हुए अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज करिश्मा कपूर अपना जन्मदिन मना रही हैं। आज ही के दिन 25 जून साल 1974 को उनका जन्म हुआ और आज कार्यक्रम सदाबहार नगमे में हम आपको सुनवाएंगे करिश्मा कपूर के अभिनीत फिल्मों के गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं दिल तो पागल है इस फिल्म का प्यारा सा गीत। आवाजें उदित नारायण और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी की रचना, उत्तम सिंह का संगीत।

दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें उदित नारायण और लता मंगेशकर की थी, आनंद बख्शी की रचना, उत्तम सिंह का संगीत। श्रोताओं, करिश्मा कपूर एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रेम कैदी फिल्म से बॉलीवुड में पदार्पण किया। शुरुआती दौर में उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत और सीखने की लगन ने उन्हें जल्द ही दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्री बना दिया। साल 1990 का दशक करिश्मा कपूर के नाम पर रहा। उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ बेहद लोकप्रिय हुई। राजा बाबू, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग और चंचल अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उस दौर में करिश्मा कपूर और अभिनेता गोविंदा की जोड़ी मनोरंजन की गारंटी मानी जाती थी। और अब आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं अगला गीत, प्रेम कैदी, इस फिल्म से आवाजें साधना सरगम और SP बालासुब्रमण्यम की, समीर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत।

0: जब बात हो परिवार की सेहत, स्वाद और भरोसे की, तो नाम हो हल्दीवा इंडिया। शुद्ध शहद ए टू बिलोना की कच्ची घनी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विश्वसनीय श्रृंखला के साथ हल्दीवा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास।
1: कार्यक्रम सदाबहार नगमे अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। श्रोताओं, करिश्मा कपूर ने केवल हास्य और व्यावसायिक फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा। साल 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इस फिल्म में उनके भावपूर्ण अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और वे गंभीर अभिनेत्रियों की श्रेणी में शामिल हो गईं। तो चलिए आपको सुनाते हैं फिल्म

0: पर बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, करिश्मा कपूर को दिल तो पागल है में निशा के किरदार के लिए एक नई पहचान मिली और इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। फिल्म में उनका नृत्य, अभिनय और भावनात्मक अभिव्यक्ति आज भी याद किया जाता है। साल 2000 में आई फिल्म फिजा और जुबैदा ने करिश्मा की अभिनय क्षमता को और भी मजबूत किया और इन फिल्मों में उन्होंने चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाकर ये साबित किया कि वे केवल ग्लैमरस स्टार नहीं बल्कि एक परिपक्व और संवेदनशील अभिनेत्री भी हैं।

कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में जुबैदा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया, जावेद अख्तर के बोल, एआर रहमान का संगीत। श्रोताओं, करिश्मा कपूर ने न केवल पर्दे पर अनेक यादगार किरदार निभाए बल्कि ये भी साबित किया कि प्रतिभा और समर्पण किसी भी परंपरा या चुनौती से बड़े होते हैं। उनकी मुस्कान, नृत्य और अदाकारी आज भी हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम अध्याय का हिस्सा है। 90 के दशक की चुलबुली प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्री करिश्मा कपूर को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ ही आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, हीरो नंबर वन। इस फिल्म से उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज़, समीर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत।

0: हीरो नंबर वन इस फिल्म का गीत उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। समीर के बोल थे, आनंद मिलिंद का संगीत। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजे समाचार अब
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य

0: समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना

0: की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
1: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
2: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री

0: ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1,15,00,000 डॉलर चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

कार्यक्रम माटी के स्वर सुनने वाले सभी श्रोता साथी, स्वीकार कीजिए आपके अपने रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत लीजिए सुनिए, पंचराम मिर्झा कुलवंतीन बाई और साथियों की आवाजों में। पसंद आई है नांदघाट ग्राम कातलबोड़ से भागसिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, रीतु डोमन यादव और रामशीला यादव का। और ये पत्र हम तक पहुंचा है मुनगाडीह पाली कोरबा से श्रोता विकास, दीप्ति डिकसेना, प्रवीण चंद्रमणि बेबी और नित्या डिकसेना। भाटापारा से हैं दानसिंह रावत दानु, पद्मनी, शुभम, सौरभ रावत। हटरी बाजार भाटापारा से मोतीलाल देवदास, श्रीमती गौतम, मुकेश, पवन, गोलू देवदास का पत्र। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से पसंद आई है रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय, बेबी, अनिष्का, राधिका गजभिये। यवतमाल विदर्भ से पसंद संतोष खड़से, विनोद खड़से की। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा कौशल और खुशबू सेन। और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, सहना नवाज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी का पत्र आया है। ये श्रोता है ग्राम लालपुर से लोकेश यदु, प्रतिमा, जागृति, साक्षी और समीर यदु। दतरेंगी भाटापारा से पसंद नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि और पुष्पेंद्रमणि वर्मा की आई। भूरसुदा छत्तीसगढ़ से गजेंद्र, चंद्र प्रकाश, भगवानी, चिराग, संतोषी और नेहा सेन का पत्र हम तक पहुंचा है। और ये श्रोता हैं नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुखमणि, जय प्रकाश, प्रीति दीवान। साथ में हैं सिद्धांत, सौर्य, सानवी और इनका पूरा परिवार। श्रोता हैं मुकाम फुलसर, हव्या, कटघोरा, चिरमिरी रोड, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से। शीतला नगर दुर्ग से पसंद शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर की आई है और इसी लोकगीत को सुनना चाह है। मनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार और पूरा माखीजा परिवार इसी लोकगीत को पसंद करता है। ये श्रोता नैला बोड़सरा जांजगीर से हैं, हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, ठगिया देवी, अंजुलता, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर का पत्र। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, झावेंद्र कुमार वर्मा। ये पत्र धरसीवा छत्तीसगढ़ से आया है। श्रोता हैं छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना, इकबाल कुरेशी, साथ में रानू खुशी, प्रवीण कुमार साहू। और दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर से पसंद छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अदिति, अभिनव, बलदाऊ राजेश्वरी, आस्था और सीएल यादव। नावागढ़ कटाई से श्रोता है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा। ग्राम बिजरहड़ी से राकेश यदु, लक्ष्मीना संध्या और प्रांजल यदु, इन्होंने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और ये पसंद करता है खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। छत्तीसगढ़ छुरी से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, कमल सिंह, महेंद्र, माला, मानु, शानु, बबन, मुनु और कान्हा ठाकुर का पत्र हम तक पहुंचा है। भाटापारा से श्याम रतन मुंधड़ा, रचनाकर मुंधड़ा का पत्र। रावण भाटा भाटापारा से हैं बबला यादव, रिखीराम, कमलेश्वरी यादव। और ये श्रोता है पंचशील नगर भाटापारा से मंगल यादव, मयूर बाबू। इसी लोकगीत को शिव चौक साकरा भूमिया तिलदा से मनोज निषाद, प्रतिभा पूर्वी और खुशांत निषाद ने पसंद किया। डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से पसंद देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार, डॉली, बेबी पूजा और प्रभा देवी तामुरिया ने पसंद किया इस गीत को। और ये श्रोता है ग्राम बनवघेरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा। ग्राम पहरा अहिरवार, जिला दुर्ग से पोषण बंछौर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछौर का पत्र। दतरेंगी से पसंद आई है विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना और लक्ष्मीना यदु की। और आप हैं हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा। तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी शानी, छन्नूला श्रीवास, अनीता, हेमंत नामदेव का पत्र। तो लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पंचराम मिर्झा और साथियों का गाया ये लोकगीत।

पंचराम मिर्झा और साथियों की आवाज़ों में ये लोकगीत हम आप तक पहुंचा रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, आपको सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर अगला फरमाइशी लोकगीत। श्रोता है नया पारा भिरई से श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज ईश्वर राज, चंद्रकांत प्राची और टीयूषी सूर्यवंशी। इसी लोकगीत को भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज पारिकर, नारायण यदु, लेखराम, राधेश्याम, लतेल साहू ने पसंद किया है। मारवाड़ी कुआं भाटापारा से पसंद सियाराम और अश्विनी पांडे की आई है और आप है सुनहडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा।

रायपुर से श्रोता हैं नीलू मेघ, और ये हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश नेहा और वानिया सिंगरौल, कटघोरा गांव जुराली से देवचरण पटेल, अंजोरमती भूपेंद्र कुमार महेंद्र, दक्ष दिव्यांश कुणाल कुमार पटेल का पत्र हम तक पहुंचा है। सुभाषवाड़ भाटापारा से पत्र श्रीमती अमृता यादव, पार्वती ईश्वरी लक्ष्मी प्रेरणा डिम्पी यादव का। हथबंद नेवधा से हैं श्रोता श्रीमती दुलारी यादव, प्रियंका प्रीति उमेश्वरी और सुनती यादव। और ये श्रोता है मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना बिट्टू, चिंटू युग कुमार झेरिया। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं राम कुमार राउत, अमरीका गणेश, कार्तिक युवराज राउत। इसी लोकगीत को इन श्रोताओं ने भी सुनना चाहा है। मोहन पारा अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक साहू। नेहरूवाड़ भाटापारा से प्रेम लाल, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू का पत्र। सरगुजा मेनपाठ से सोनिया थापा, सोनम रेशमा आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी से हैं श्रोता परवीन, सरफुद्दीन कुमार वली और कुमारी डब्लू। और ये श्रोता जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा बेलदार, अकरम और उल्लाह बेलदार। अरमई खुर्द दुर्ग छत्तीसगढ़ से चूरा मनलाल वार्डे, जैनी विवेक कुमार और नेहा वार्डे का पत्र। ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु हिमांशु अंकित देवांगन। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से पत्र सुशील जैन, कल्पना सौरभ, सेया शुभम और शौर्य जैन का आया है। लाफा दादर से पसंद शरद कुमार जगत, कैलाश देवी, बेबी सुप्रिया परीक्षित और आशीष कुमार जगत की। और ये पसंद ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त की आई है। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से पसंद करता मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, कीर्ति, संध्या और साथ में है डिकेश वालू, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। पौड़ी भाट अकलतरा से दिलीप चंदन, चोराम यदु, साथ में निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। ये पत्र सुंदर पारा रोहासी से पहुंचा है डगेसर राम साहू, नूतन अलका जानवी, गौरव और घनश्याम साहू का। इसी गीत के अनुरोध करता दगौरी उड़नताल से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता जागृति, सरला पल्लवी, समीर गायकवाड़, परस शर्मा, निधि रुचि, नित्या शर्मा, यशोता महारानी चौक भाटापारा से। और साथ में सिद्ध बाबा भाटापारा से कामता यादव, सोनमत मन्नू, निकिता यादव। ग्राम दामन बोर्ड से पत्र आया है कुमार यादव, अमृत कामदेव और लेख राम यादव का। बोड़सरा नैला से पसंद प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, साथ में है अंशु बबली और प्रियांशु साहू। ये श्रोता करगी रोड कोटा से हैं संतु यादव, तनुश्री श्रेयांश और सक्षम यादव। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से पत्र हम तक पहुंचा है रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव का। और भाटापारा से मिलव मानिकपुरी, संतोष, संदीप, अजीत, लक्की भार्गव, निलक्ष, विवान मानिकपुरी। और ये श्रोता भी भाटापारा से ही हैं, बिरजा मानिकपुरी, संगीता, अंजलि, संजना और चारू मानिकपुरी। तो लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लता खापरडे का गाया ये लोकगीत।

लता खापर्डे की आवाज़ में ये लोकगीत अभी आपने सुना। और अब आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं साधना यादव की आवाज़ में अगला फरमाइशी लोकगीत। पसंद ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारी, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे की आई है। ये श्रोता हैं जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जयदास, देवेश दास मानिकपुरी, श्रोता गणेश धाम परसुली डोंडी लोहरा जिला बालोद से। और चांदनी चौक गंडे पंडरिया से पत्र है पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, खुशी रौनक सेन का। और अठीपारा भाटापारा से पत्र है अनीता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा साहू का आया है। हटौत बाजार लाहौत से ये पसंद आई है कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर, राजकुमारी पटेल की। और आप हैं हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव। बावली से पसंद कमलेश साहू, हारेंद्र और सुशील बिलसपुरिया की। पटेलपारा ओड़ी लाफा से रतिराम पटेल, रतनबाई, वीरेंद्र कुमार, मीना देवी, अमनदीप, गुरुदीप और संदीप पटेल। ये श्रोता है ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। इसी लोकगीत को सुनना चाहा है गोरकापारा अर्जुंदा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से खेमराज साहू, प्रतिभा देवी, तुलसाबाई टोमन प्रसाद और शुभम कुमार साहू ने। कोरबी बेलतरा से पत्र हम तक मोहन सिंहराज, अनीता, सुनीता, सुमित, सोमू, मंजीत और मानस राज का पहुंचा है। जांजगीर महेंदा से हैं श्रोता राम नारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुमलता और खुशबू कुमारी कश्यप। और आप हैं कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। ममहर चाटेडी से इसी गीत को पसंद किया है गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, बेबी, मीनाक्षी और निधि देवांगन ने। और हम तक राम पहाड़ बछाली से ये पत्र पहुंचा है कैलाश कुमार यादव, महेंद्र कुमार, सुभाष चंद यादव का। आप है शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, साथ में दिशा और लबी श्रीवास्तव। इसी लोकगीत को सुनने के ख्वाहिशमंद बलौदा छत्तीसगढ़ से दिलहरन गौतम, अंजलि आनंद पटेल और समृद्ध

सिद्धि पटेल। लखनपुर से पत्र रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू का पहुंचा है। आप हैं ग्राम बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारा गांव से सुजान, सुहाद्रा, आयुषी और कृत वर्मा, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। और ये पत्र देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मयाराम, पुनेश्वर फानेश्वर, मुकेश कुमार, हाव्या और टानिया रजक का आया है। शिव राम निषाद, सविता, प्रफुल्ल निषाद और बेबी नेहा निषाद ये श्रोता ग्राम लाफा से हैं। पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से अनुरोध उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर की आई है। और ये पत्र सुभाषवाड़ भाटापारा से पहुंचा है, एमएल यादव, अजय कुमार, अमित अमीन, गिरीश, करण, युवान ढावेश यादव, हदबंद न्योधा से सेवक राम, टुपेंद्र, तुलेंद्र और देव कुमार यादव, इन्होंने भी इस लोकगीत को पसंद किया। शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, असरफ नासिर, अयाज अल्फैज, महजबीन बानो, सादिया, हजीरी निशा का पत्र। और आप है मेहता नगर भाटापारा से दुर्गेश साहू, अश्वनी कुमार और समीर टंडन। तो लीजिए सुनिए आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर संध्या यादव का गाया ये लोकगीत।

0: খুট মোলা বিরহা কে পরথে পিনা রে সাবরিয়া রে জিয়া লাগে না তো।
1: और अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी लोकगीत नवल दास मानिकपुरी और साथियों की आवाजों में। पसंद बेलगहना शक्ति बेहरा से श्याम शंकर काशीपुरी, बाबा विजय, राम शंकर रागनी देवी, कैलाश चंद्रवती, कुसुम काशीपुरी और राधा पड़वार की। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन और माही सिंह। ग्राम पोड़ी लाफा से विद्यानंद साहू, त्रिवेणी रानी, बबली, सुमन मंटू, मिष्ठी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा और

अंशु साहू, इन्होंने भी इस लोकगीत को पसंद किया है। और ग्राम भर्री टोला डोंडी बालों से पसंद नमित कुमार, गौतम पीहू नीतू मुरली गौतम की, नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज, ये श्रोता लुतरखा मरिया से। और जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू, तारा विद्या, जितेंद्र किशन, सुनीता ऋषवंत, हीरेन्द्र नीलकंठ, चंद्रहास संजीव त्रिलोक, और ये हैं रणजीत सिंह साहू। ग्राम भिलौरी बावन लाख जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से श्रीमती रोहिणी डागेश्वरी साहू, खुलासा देवी, देवव्रत, राघवेंद्र राज साहू, हेमंत कुमार, विधि दीपिका, कविता और सृष्टि साहू का पत्र आया है। रेंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लछनपुर से विश्वनाथ साहू, और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू का पत्र। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देवकुमार, नेत्राम, भूपेंद्र साहू। और आप है ग्राम बसीबार से शिवनारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद आंचल, चंचल चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार कंवर। शांतिनगर पाली से हैं विष्णु सिंह कोरम, संतोषी, आरती पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और पूरा कोरम परिवार। तो लीजिए सुनिए नवलदास मानिकपुरी और साथियों का गाया ये लोकगीत।

नवलदास मानिकपुरी और साथियों के गाए से लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम माटी के स्वर से अब आपके अपनी रेडियो साथी खुशबू को दीजिए।

फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से FM एंड 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजे हैं, अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: शाहिद माल्या की आवाज में आप सुन रहे थे उड़ता पंजाब फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा शिव कुमार बटालवी ने, अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां।

अदम्य साहस की कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना हॉलीडे फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत, इरशाद कामिल के बोल, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल हिमेश रेशमिया की तर्ज और आवाजें अमन त्रिखा, विनीत सिंह और साथियों की।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे।

0: बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

विशाल शेखर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे। बैंग बैंग फिल्म के इस गीत में हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाज है, अन्विता दत्त के बोल। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। हृदय गट्टानी की आवाज में ये गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म बैंजो से सुनिए ये गीत।

बैंजो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, हृदय गत्तानी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और दिन भर जहां भी रहें, रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

ऐसी बेबी साल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने 2.5 दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है, ये उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है।

0: आपसे आके मिलना चाहता हूँ, और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूँ। इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उनका खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ मैं, बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया, और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी, और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी। और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है, और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था, और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए, और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ, एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा की कार्यक्रम FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं प्रादेशिक समाचार। अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा और अगले 1-2 दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच कराने

0: कहा है सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसमें फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था और भवन की सुरक्षा जांची जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा हमारी सरकार सेवाएं लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर विकास और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। देशभर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को पुनर्स्थापित किया है। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी की रायपुर जिला इकाई ने आपातकाल के विरोध में मौन जुलूस निकाला। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 केंद्रीय विद्यालयों में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का पीएमसी केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। राजनांदगांव में राज्य कर विभाग ने फर्जी बिलिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरड़िया को गिरफ्तार किया है। जांच में करीब 76 करोड़ रुपए के कागजी लेनदेन और 8 करोड़ 22 लाख रुपए के संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला सामने आया है। विभाग के अनुसार फर्म ने बिना वास्तविक खरीदी के फर्जी बिलों के माध्यम से कर लाभ लेने का प्रयास किया। मामले में अन्य लोगों और फर्मों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिले को छोड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि अगले एक दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक की ब्रह्मकिला शाखा में 18 करोड़ 13 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा और अगले एक दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। एफएम एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

तौर पसंद इन श्रोता साथियों की। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कहवाड़कर, श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश कहवाड़कर और अकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से पसंद श्रीमती वैशाली शैलेश कहवाड़कर की साथ में है श्वेता सुमित ध्वनि कहवाड़कर। और ये श्रोता है बदलापुर मुंबई से सिद्धांत कहवाड़कर, प्रणीता लाडला टुकटुक कहवाड़कर। महादेव घाट अमलेश्वर से पसंद डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश तारनी, सूरज सुजला ज्योति और रियांश ठाकुर की आई है। आप है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम। गांव परसा टोला जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से पत्र भेजा है ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र और तुषारणी मसिया ने। और ये श्रोता जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आशा सबीहा, अनस और रेहान। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से पसंद आई है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, छाविंद्र कुमार, बेदबाई, सुमित्रा, योगिता और फलेश्वरी वर्मा की। और ये पत्र हम तक पहुंचा है बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि आनंद और साथ में है समृद्धि पटेल, इन्होंने भी इस गीत को सुनना चाहा है। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से है नोखेलाल वर्मा, हीरामढ़ी पारसमढ़ी और पुष्पेंद्रमढ़ी वर्मा, बाजार पारा बेमे तरह से ये पत्र हम तक पहुंचा है भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की मुरली मनोहर पटेल का। और आप हैं शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान, सिकंदर अशरफ, नासिर अयाज, अल्फैज सादिया, हजीरुन्निशा और बिलह से पत्र शेख नासिर और महजबीन बानो का। बनियापारा धामतरी से ये श्रोता है रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति और पूरा माखीजा परिवार इसी गीत को सुनना चाहता है। और ये पत्र हम तक डोंडी लोहरा बाला छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार, डॉली बेबी पूजा, प्रभा देवी तामुरिया का पहुंचा है। किकिर मिट्टा बेलहारी पाटन दुर्ग से है संतोष शर्मा, रुक्मणी गुरामी और डोंडी लोहरा बालोद से पीयूष नेताम, जोहत्री बाई नेताम और साथ में कोमल नेताम। और आप हैं ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा नीरज, नीलेश अंजलि सारवा। इसी गीत को तेली परा बिलासपुर से सुनना चाहा है रज्जन साहू, बेबी ईशानी, छंडूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास ने। आप ग्राम रसेड़ा अकलतरा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या और साथ में डिकेश वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। ग्राम बसीबाश से हैं शिवनारायण नामदेव, सविता, राम प्रसाद, आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार और वर्षा और मनोज कुमार कंवर। और ये श्रोता हमारे शांति नगर पाली से हैं श्रीमती संतोषी कोरम, आरती पूर्वा, प्रतिभा और पूरा कोरम परिवार इसी गीत को सुनना चाहता है। ग्राम दरचूरा से पसंद आई है ददुआ साहू, भूरी संतोषी, दुलौरिन रेखा, मोतीलाल साहू, साथ में कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू की। और जातुका किशनपुर से पत्र आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम और नाज परवीन का। आप हैं हटौत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर, राजकुमारी पटेल। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशि कांता प्रजापति का ये पत्र हमको मिला है, तो लीजिए सुनिए आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर जानवर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू। सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत लीजिए सुनिए फिल्म जानवर से अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाज़ों में। यह गीत है समीर के बोल आनंद मिलिंद का।

जानवर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें अलका याग्निक और मनहर उदास की थी, समीर के बोल थे, आनंद मिलिंद का संगीत। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाज़ों में स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत संगीत है शांतनु मोइत्रा का और पसंद आई है आप सभी श्रोता साथियों की। हथनी पारा भाटापारा सह दुर्गा दुर्गेश्वरी गीतू मुकेश वर्मा हरीश किरण और दुलारी वर्मा। ये श्रोता नेहरूवाड़ भाटापारा से है प्रेमलाल साहू भूपेंद्र दुष्यंत राघवेंद्र साहू और मोहनपारा अकलतरा से पत्र अभिनव अभिषेक और उमा देवी साहू का हम तक पहुंचा है। हटौत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल राकेश कुमार समीर और राजकुमारी पटेल इन्होंने भी इस गीत को सुनना चाहा है। आप है कतियापारा जुना बिलासपुर से सुशील देवांगन अखिलेश लोकेश आशीष रवि मोनू सोनू कान्हा और आदित्य देवांगन और ये पत्र बमहर चाटी डी से गंगा देवी देवांगन पूनम धनेश्वरी महेश्वरी मिल्की और बेबी मीनाक्षी निधि देवांगन का है। इसी गीत को चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पसंद किया है पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविंद्र खुशी और रौनक सेन ने। पसंदकर्ता दगौरी उड़नताल से श्यामता प्रसाद गायकवाड़ हेमलता जागृति सरला पल्लवी समीर गायकवाड़। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हैं श्रोता श्रीमती पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भाव्या और श्रीमती सुषमा सारथी। आप हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर अमनदीप और कालका से पसंद शुभ चंद्र बजाज बिट्टा बजाज और साहिल की। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से हैं सुशील जैन कल्पना सेया सौरभ शौर्य और शुभम जैन। और बेमित्रा से पसंद आई है सुरेश कुमार सारथी हेमलता भाई कमलकांत और वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी की।

नवागढ़ कटाई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल राजेश का ये पत्र हम तक पहुंचा है। हटरी चौक बिलाईगढ़ से हैं खीकराम देवांगन, रेणु रजनी पिंकी देवांगन और आप हैं हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से पसंद कमलेश साहू, हारेंद्र और सुशील बिलसपुरिया की। साकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से पत्र हम तक पहुंचा है नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा और साथ में मिलिंद प्रणय और रुद्रांश प्रताप साहू। रिंगनी छत्तीसगढ़ से पसंद दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। तो लीजिए सुनिए सोनू निगम और शेख खुशाल का गाया ये की।

0: कार्यक्रम का शेष फरमाइसी गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की पहचान है
2: हल्दीवा इंडिया,
1: हल्दीवा का सम्मान है।
2: शुद्ध शहद एटो बिलोना की कच्ची घनी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की श्रृंखला के साथ हल्दीवा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास। हर दिल में भरोसा, हर घर में हल्दीवा। अपने नजदीकी स्टोर पर पूछिए
1: हल्दीवा इंडिया।
2: अब हर घर की सेहत और शुद्धता का नया भरोसा हल्दीवा इंडिया।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब अगला गीत हमारे इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर लीजिए, सुनिए। श्रोता हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबिया निष्का तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन। और ये श्रोता हैं इंद्रनगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा। धरसीवा से पत्र छिदुलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना, अरुणा और साथ में अनुराधा और अल्पना यादव का आया है। आप है दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव। और इसी गीत को पसंद भाटापारा से किया है इन श्रोताओं ने बचकमल, मोतीलाल यादव, वसंत भृगु, विनय ठाकुर, नारायण यदु, लेखराम, चोरम वर्मा, सूरज बारिकर, राधेश्याम, लतिल साहू, भुवन कामरी। और मारवाड़ी कुआं भाटापारा से पत्र सियाराम और अश्विनी पांडे का आया है। सोनहडी से पसंद सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा की और रायपुर से है नीलू मेघ। मिलाव मानिकपुरी संतोष, संदीप, अजीत, लक्की, भार्गव नीलक्ष और विवान मानिकपुरी, ये श्रोता भाटापारा से हैं। और भाटापारा से ही हैं बिरजा मानिकपुरी, संजना संगीता, अंजलि चारू मानिकपुरी। लुतरा खमरिया से पसंद नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज की। बोरसरा नैला से पत्र प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू का। और कोरबी बेलतरा से फरमाइश भेजी है मोहन सिंह राज, अनीता, सुनीता, सुमित, सोमू, मंजीत और मानस राज ने। ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से है रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त। और आप हैं दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना, लक्ष्मीना यदु। लालपुर से पसंद लुकेश और समीर यदु की आई है। और रोहानसी से है श्रोता डगेसर राम साहू, घनश्याम, नूतन, गौरव, अलका, जानवी साहू। देवरी भाटापारा से पसंद गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, मायाराम रजक, पुनेश्वर, फानेश्वर, मुकेश कुमार, हाव्या और टानिया रजक की ये पसंद। भाटापारा से हैं दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी, शुभम, सौरभ रावत। और आप हैं ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु, अंकित देवांगन। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर एक नज़र फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक नज़र फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में हम आप तक पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं कस्मे वादे। इस फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाज़ों में अमित कुमार का लिखा और माफ़ कीजिएगा आशा भोसले, किशोर कुमार और अमित कुमार की आवाज़ों में गुलशन बावरा का लिखा ये गीत संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और पसंद इन श्रोताओं की है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलवदास, जयदास, देवेश दास मानिकपुरी। ये श्रोता गांव गणेश धाम, परसूली पोस्ट, खैरथा बाजार, तहसील डोंडी, लोहरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हैं और औरठी पर भाटा पारा से पत्र अनिता साहू, वीणा नेहा, मुनिषा साहू का आया है। नया पारा भिराई से श्री बसंत कुमार, सूर्यवंशी, सरोज, ईशर राज, चंद्रकांत, प्राची और ट्यूशी सूर्यवंशी का ये पत्र हमें मिला है और ये श्रोता है महाराष्ट्र बोरी खुर्द से श्री सुधाकर राजा जाधव, प्रशांत जगुताई, साक्षीताई, संचित व्याल, प्रथमेश देशमुख मोताला से हैं और स्वामी देशमुख कराड़ा से, प्रणाली देशमुख मोताला से और सानवी देशमुख कराड़ा से। और इसी गीत को पूरा राजे जाधव और वयाल देशमुख परिवार पसंद करता है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू का पत्र हमें मिला है। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और ये श्रोता हैं शिवाजी चौक, राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव,

कस्मे वादे इस फिल्म का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें दी थी आशा भोसले, किशोर कुमार और अमित कुमार ने। गुलशन बावरा के बोल थे आरडी बर्मन का गीत। और अब इसी फरमाइशी फिल्मी गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद समाप्त करने की दीजिए अनुमति आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू को। सुबह के 10:30 हुए हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नए तराने।

कार्यक्रम नए तराने का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म जीरो से स्वर अभय जोधपुरकर का, इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

ज़ीरो फिल्म का गीत अभी आपने सुना, अभय जोधपुरकर की आवाज़ थी, इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत। और अब अगला गीत लीजिए, सुनिए ओ रोमियो। इस फिल्म से आवाज़ें रेखा भारद्वाज और सुखविंदर सिंह की, गुलजार की रचना, विशाल भारद्वाज का संगीत।

0: कार्यक्रम नए तराने में अब समय हुआ है श्रोताओं आज के ट्रैफिक अपडेट का। तो सुनिए आज का ट्रैफिक अपडेट और जानिए क्या रहेगा आपके शहर बिलासपुर में आज ट्रैफिक का हाल। उमा शंकर पांडे से।
1: नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत है ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। सभी श्रोता साथियों का स्वागत है, मैं हूं उमा शंकर पांडे। आज प्रदेश स्वास्थ्य निगरानी संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपे जाने की योजना है। आज दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य निगरानी संघ के सदस्य अर्पण व्यू में एकत्र होकर रैली स्वरूप चलकर नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे।

0: इल्जाम न लगाएं। सार्वजनिक सड़क में सभी को चलने का अधिकार है, इसलिए अपने अधिकार की मांग कर आम जनों के अधिकारों का हनन हरगिज न करें। मित्रों, आज ही नागरिक सुरक्षा मंच के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में सीपत चौक सरकंडा में शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। धरना प्रदर्शन में शामिल सभी सदस्यों से यही कहना है कि यह सुनिश्चित करें कि इस आह्वान से आम यातायात बाधित ना हो, लोग नाहक परेशान ना हो। शाम के समय यहाँ पर यातायात का दबाव बहुत अधिक होता है, इसलिए धरना प्रदर्शन सड़क से सर्वथा हटकर होना चाहिए। सामान्यतः इस प्रकार के आयोजनों में लोगों की यह धारणा होती है कि ऐसे स्थान में यातायात बाधित कर अव्यवस्था उत्पन्न कर देना ही कार्यक्रम की सफलता है, जो सर्वथा अनुचित है, विधि विरुद्ध है, ऐसा कभी न करें। साथियों, इस समय मुहर्रम पर्व की शहर में धूम है, कहीं सवारी की गश्त हो रही है तो कहीं डल्ला सिर का नाच हो रहा है। सभी से अनुरोध है सड़क के किनारे चले, ऐसे स्थानों से अपने वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट अभी आप सुन रहे थे उमाशंकर पांडे से, और अब कार्यक्रम नए तराने में लीजिए प्रस्तुत है राबता फिल्म का गीत, जुबिन नौटियाल की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, संगीत प्रीतम का।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: और अब आपको सुनवाते हैं और हम फिल्म का गीत, स्वर है जावेद अली और साथियों का, वरुण सूरी के बोल, विजय वर्मा का संगीत।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: और अब लीजिए सुनिए फिल्म शेर शाह का ये गीत। आवाजें हैं जुबिन नौटियाल और असिस कौर की, गीत और संगीत तनिष्क बागची का।
6: मैं फ्री हूँ।

0: तुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, बताया क्यों नहीं मुझे?
1: क्योंकि तू उस किस्म की लड़की लगती नहीं है जो आर्मी ज्वाइन करने वाले लड़कों को डंप कर देगी।
0: नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं, लेकिन बंदा अगर मुझे अपनी दिल की बात ना कहे तो उसे डंप करने में मैंने 2 महीने नहीं लगने, समझा?

0: Hello?
1: शेर शाह फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ें जुबिन नौटियाल और आशीष कौर की। गीत और संगीत था तनिष्क बागची का। और अब इसी के साथ ही कार्यक्रम नए तराने का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और W सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहां पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन

0: भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरि की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। ये कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।

0: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
1: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधेका।
0: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
1: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
0: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे

0: बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर। इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
1: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
2: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
2: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
2: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
3: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
2: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
4: शिक्षक बंधु, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
2: अपनी साहित्य कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी, नमस्कार।
5: नमस्कार।
2: तो

0: रितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
1: जी।
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
1: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
0: जी,
1: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
1: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
1: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
1: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ हाँ बताइए।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति
1: जी। इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
0: अच्छा।
1: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
0: जी,
1: वो बहुत ही शानदार है।
0: अच्छा
1: जी।
0: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
0: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
0: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
0: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी,

निर्माण जगबंधु जाना। श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी हम प्रसारित कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं।
2: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। अब जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

कार्यक्रम में आप सुनिए मसरूर अनवर का लिखा ये शेर। इसे आवाज दी है रूना लैला ने।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में हम आपको एक गैर फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं यतीन्द्र मिश्रा और संगीत दिया है प्रीतम ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विरंग तरंग। यह आवाज है भूपेंद्र सिंह की। विमल कश्यप के बोल हैं और निखिल कामत का संगीत।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें

0: नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको एक भक्ति पद सुनवा रहे हैं।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को पुनर्स्थापित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्य भर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच कराने को कहा है। सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसमें फायर NOC, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था और भवन की सुरक्षा की जांच की जाएगी। पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वहीं छूटे हुए बच्चों को 29 और 30 जून को मॉपअप अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 28 जून को अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। छत्तीसगढ़ में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। राज्य के सभी जिलों, विकासखंडों और सहकारी समितियों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सहकारिता सप्ताह के दौरान जागरूकता, जनभागीदारी और नवाचार पर विशेष फोकस रहेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री

0: गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा कल 26 जून को किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 10:25 तक प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में निपनिया भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण कार्य के तहत रिलीविंग गर्डर डीलॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते 25 जून से 29 जून तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 10 ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक की बरमकिला शाखा में 18 करोड़ 13 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि गबन में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों से नियमानुसार राशि की वसूली की जाएगी। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू करेगी। बलरामपुर जिले के सहकारी बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। करीब 30 करोड़ 51 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। मामले में 500 किसानों की शिकायतें आधार बनी है। जांच के दायरे में शंकरगढ़, कुसमी और रामानुजगंज की सहकारी बैंक शाखाएं शामिल हैं। ईडी वित्तीय लेनदेन और ऋण वितरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY के तहत आज रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई के सिरसा अंडर ब्रिज में मरम्मत कार्य की वजह से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आवाजाही बंद रहेगी। राजधानी रायपुर के सेजबार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में आज दोपहर 3 बजे तक संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निजी प्रतिष्ठानों द्वारा 900 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। CBI के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से

0: होने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम, बस कुछ ही पलों में।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज महान संगीतकार मदन मोहन का जन्मदिन है। हम उन्हें आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही आज मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे मदन मोहन को और साथ ही करिश्मा कपूर की फिल्मों से कुछ गीत सुनेंगे। यह आवाज लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, फिल्म का नाम मौसम, गीतकार गुलजार, संगीतकार मदन मोहन।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन
2: लाया। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम हीर रांझा।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है चिराग।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत। आवाजें मदन मोहन और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था वो कौन थी।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब सुनिए राजा मेहदी अली खान की रचना, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है मेरा साया। संगीतकार हैं मदन मोहन और अभी तक हम आपको सुनवा रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म मेरा साया का गीत सुना। गीतकार राजा मेहरी अली खान थे और संगीतकार थे मदन मोहन।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों अभी तक आप सुन रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर की फिल्मों से कुछ गीत। तो लीजिए पहले हम आपको नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ ये गीत सुनवा रहे हैं उदित।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, उदित नारायण की आवाज और ये फिल्म है अनाड़ी।

इस कार्यक्रम का अब आखिरी गीत सुनिए, आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, फिल्म का नाम कूली नंबर 1।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर तैयार है ना मेरे साथ सुरीला सफर में निकलने के लिए? मुझे पता है आप तैयार हैं। देखिए ना, बहुत ही एक सुंदर विचार है कि जीवन जो है एक संगीत वाद्य यंत्र के समान है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा है। जिस तरह एक वीणा या गिटार से निकलने वाली धुनें यंत्र की बनावट से ज्यादा उसे बजाने वाले वादक पर निर्भर करती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन की लय और सफलता हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों पर निर्भर करती है ना? तो फिर आप देखिए ना कि आप अपने जीवन के स्वयं रचयिता हैं। हर परिस्थिति, हर सुख और दुख में ये आप तय करते हैं कि कौन सा सुर हमें बजाना है, यानी कौन सा काम हमें करना है। तो संगीत की तरह हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और भावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम बनते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, यानी हमारे वाद्य यंत्र। तो जैसे एक वाद्य यंत्र के सुर में रखने के लिए, उसको सुर में रखने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सीखने और धैर्य की जरूरत होती है ना? और यदि इन तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाता है तो क्या होता है, वे टूट जाते हैं, और अगर ढीला छोड़ दिया जाता है तो उनसे सुर नहीं निकलता।

जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है, बस यही बात हमारे गीत संगीत में भी लागू होती है। जी हाँ, हमारे संगीतकार जब किसी गीत की रचना करते हैं तो हर वाद्य यंत्र को कस के रखते हैं, और जब कोई निर्देशक उन्हें पर्दे पर फिल्माता है तो वहाँ पर भी उन वाद्य यंत्रों के साथ उन गीतों को गाया जाता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। समझ गए ना आप मेरी बात? आज की हमारी जो टेक्स्ट है, आज का हमारा जो टेक्स्ट है वो ये है कि अक्सर जब कोई किरदार अकेला होता है, उदास होता है या प्यार में होता है, तो पर्दे पर उसे किसी वाद्य यंत्र के साथ नायक या नायिका अपने जज्बात पेश करते हुए दिखाए जाते हैं, तब वो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि स्क्रीन पर रोमांस, उदासी या दिल की गहराइयों को दिखाने का एक जरिया होता है। फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से लेकर आज तक एक खास वाद्य यंत्र पर कई जादुई गीत रचे गए हैं, फिल्माए गए हैं, और कई बार गानों की शुरुआत उसी वाद्य यंत्र की धीमी और मीठी मीठी धुन से हुई है। बाद में हाँ, अंतरा आते आते और सारे वाद्य यंत्र भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो आज हमारे दोस्तों को बताना है कि वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिनसे जुड़े खूबसूरत गीत आज मैं लेकर आई हूँ। जी हाँ, हम आपको गीत सुनवाने वाले हैं। इससे पहले हम उन श्रोताओं को बता दें जो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, विविध भारती परिवार से जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं और आपको अंदाज लगेगा कि ये कौन सा वाद्य यंत्र आज हम लेकर आए हैं। हमारे कई श्रोताओं ने तो सही लिखा है और कई श्रोताओं ने बहुत सारे वाद्य यंत्रों की बात कही है। तो आइए सुनते हैं ये पहला गीत, खय्याम साहब की धुन, साहिर लुधियानवी के बोल, जगजीत कौर की आवाज और फिल्म का नाम शगुन। याद करिए पर्दे पर नायिका कहाँ बैठी है, किस वाद्य यंत्र के साथ उनकी उंगलियां थिरक रही हैं।

जी, तो अभी आपने जगजीत कौर की आवाज में फिल्म शगुन का ये गीत सुना। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था खय्याम साहब ने। और हमारे श्रोताओं ने बता दिया है कि आज हम वाद्य यंत्र पियानो की बात कर रहे हैं। जी हाँ, और देखिए ये जो वाद्य यंत्र बज रहा है ये भी पियानो ही है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है और वो लिखते हैं कि भाई आज पियानो से जुड़े कुछ फिल्मी गीत आप लेकर आई हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने तो बहुत सारे वाद्य यंत्रों का जिक्र कर दिया है, जैसे कि गिटार, हारमोनियम, ढोलक, वायलिन, शंख, मृदंग, तबला, सैक्सोफोन, सितार और बांसुरी का। नहीं नहीं आज हम बात करेंगे किस पर? पियानो पर। जो पियानो से जुड़े गीत हैं जहां पर नायक या नायिका की उंगली थिरक रही है पियानो पर। एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात जिस घड़ी निशब्द झड़ते हैं धरती की गोद में, तब दबे पांव सितार की झनकार तारों की ओढ़नी ओढ़कर सोए कंदील को जगा देती है। दुख सुख का कोई भी पल हो, वाद्य कोई भी हो, कुछ गीतों ने जीवन में बड़ा डांडस बधाया है। वाद्य कोई भी हो, ये हमारे संवेदना की दुनिया के सच्चे साथी हैं। ये गीत जो आज बजेंगे वे हमारी सांसों में तिरते हैं, कानों में उतर कर मन के अंतर्मन को विकल कर देते हैं। आज के सुरीले सफर में जीवन रस में डूबे गीत सुनने को मिलने वाले हैं। कल्पना को परवाज देते इन गीतों की अनुगूंज पहरों पहर मधोश किए रहती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है। देखिएगा आपके जो गीत आपने लिखे हैं क्या वो गीत हमारी पसंद से मेल खाते हैं। आपने लिखा है कि आज मीठी धुनों से सुरीले संगीत से सजा है सुरीला सफर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के अनुसार आज के गानों में विभिन्न वाद्य यंत्रों की झनकार सुनने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर विषय है। जी हाँ, वैसे तो हर गाने में बहुत सारे वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन हमने जहाँ खास तौर से पियानो बजाया गया है उन गानों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि और वो वाद्य यंत्र और कोई नहीं पियानो ही है। आज हम पियानो पर बजने वाले गाने सुनेंगे, जैसे कि इन्होंने गाने का जिक्र भी किया है। वहीं एक साथी लिखते हैं कि नायक और नायिका को जब दुख और उदासी घेर लेती है तो दिल की व्यथा को उजागर करने के लिए वो गाने का सहारा लेते हैं और पियानो बजाकर अपना दुख व्यक्त करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो सिर्फ लकड़ी, तार और चाबियों का ढांचा नहीं है, वो इंसानी जज्बातों को सुरों में ढालने का एक जरिया है। जब इसकी सफेद और काली चाबियां पर उंगलियां थिरकती हैं तो मानो वक्त थम जाता है। पियानो की धुन में शब्दों की जरूरत नहीं होती। इसकी धीमी आवाज जहां आंखों में आंसू ला सकती है, वहीं इसकी तेज और ऊर्जावान धुन थिरकने पर हमें मजबूर कर देती है। बहुत सुंदर क्लासिक विचार ठीक हमारे आज के गीतों की तरह आपके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आगे बढ़ते हैं और वैसा ही एक और गीत सुनते हैं जहां कौन है देखिएगा, शायद दिलीप कुमार साहब की उंगलियां थिरक रही हैं। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम अंदाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद साहब की धुन।

जी हाँ, हमारे श्रोता लिखते हैं कि अभिनव अन्वेषण की पर्याय बन चुकी जोशी साहिबा का ये इबारत पूर्ण रूपेण कार्यक्रम अनुरूप है, जो सफर को सुरीला और नशीला बनाएगा। साज बिन आवाज अधूरी, यंत्र बिना मंत्र अधूरा, आवाज को अंजाम हासिल करने में इन यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आदिकाल से पूजा आदि शुभ कार्यों और समारोह में इनका सम्मान होता आ रहा है। चाहे शंख हो, घंटी की ध्वनि हो, ढोलक हो, मृदंग हो, तबला हो, उसकी थाप हो, वाद्य यंत्र हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आज के प्रसंग में पियानो और वायलिन का जिक्र है तो मन के शून्यता को पूर्णता प्रदान करने में सफल मानी जाती है। साज और आवाज से सज्जित सफर का बेसब्री से इंतजार है। तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में जिस वाद्य यंत्र की बात हो रही है वो है पियानो। हिंदी फिल्मों में दिखाई गई ये वाद्य यंत्र अक्सर अमीर घरानों के घर की शोभा होती थी। प्यार में धोखा या बेवफाई के कारण हीरो और हीरोइन अपना दर्द इसी पियानो के साथ बांटते नजर आते थे। आपने गीत का जिक्र भी किया है, देखिएगा ये गीत हमारी प्लेलिस्ट में है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज क्या टेक्स्ट पढ़कर लग रहा है, वो साज कोई और नहीं पियानो हो सकता है। ये हमारा मानना है जो खुशी और गम दोनों मौके पर हीरो या हीरोइन द्वारा अपनी खुशी या गम व्यक्त करने के लिए इस साज के साथ गाते देखा गया है। जैसे कि फिल्म अनाड़ी का इन्होंने गाना लिखा है, अनुपमा का, और भी बहुत सारे गाने इन्होंने आज लिख दिए हैं। हो सकता है आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएं। बताइएगा कितने गाने आपके गानों से हमारी पसंद मिली है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर में आपने बहुत सुंदर विषय चुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इबारत केवल एक वाद्य यंत्र की चर्चा नहीं करती बल्कि हिंदी सिनेमा की उस भावनात्मक विरासत को याद दिलाती है, जहां सुर संगीत और संवेदनाएं एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। जब पर्दे पर कोई नायक या नायिका अपने मन की अनकही बातों को शब्दों से नहीं बल्कि किसी वाद्य यंत्र की मधुर धुनों के सहारे व्यक्त करता है, तब वो संगीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। उसकी मीठी तान कभी प्रेम की कोमलता बन जाती है, कभी विरह की कसक और कभी अकेलेपन की मौन व्यथा। बहुत सुंदर जी। तो अगला गीत हम आपको सुनवाएं, इससे पहले हमारे दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे। पहला सवाल तो यही कि पियानो से जुड़े गीत बताइए जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप कौन कौन से गीतों का जिक्र करने वाले हैं, बताइए कौन कौन से ऐसे गाने हैं जहां नायक या नायिका इस वाद्य यंत्र को बजा रही हैं और गीत गाए जा रहे हैं। हो सकता है आप जो गीत लिखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट से, हमारी पसंद के गीतों से मेल खा जाए। और हमारा दूसरा सवाल, क्या आपने कोई वाद्य यंत्र सीखा है? अगर हाँ तो कौन सा? जैसे हमारे एक श्रोता ने कहा है कि उन्होंने वायलिन सीखा है और उनके बेटे को भी उन्होंने वायलिन सिखाया है, तो आप भी बताइए अगर आपने कोई वाद्य यंत्र सीखा है तो कितना सीखा, कितने साल सीखा और अब आप उसे बजाते हैं, कैसा महसूस करते हैं? कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात।

0: गीत सचिन देव बर्मन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम तीन देवियां। बताइएगा इसमें देवानंद तो वाद्य यंत्र के साथ हैं, यानी पियानो बजा रही हैं, सामने खड़ी हैं सिमी ग्रेवाल और ठीक पीछे कौन सी नायिका खड़ी उनका इंतजार कर रही है, यानी उस गाने को सुन रही है।
1: हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि देवानंद के साथ सिमी ग्रेवाल हैं और कल्पना मोहन हैं। बिल्कुल इस फिल्म में नंदा भी है, लेकिन इस गाने में नंदा जी नहीं खड़ी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि साज के साथ गीत और भावनाओं का संगम लेकर आया है आज का सुरीला सफर। साज वो दर्पण है जिसमें शब्द अपनी भावनाओं को निहारते हैं, साज वो आधार है जिस पर गीत अपनी उड़ान भरते हैं। जहाँ केवल शब्द अधूरे रह जाते हैं, वहाँ ये उस भाव को पूरा कर देते हैं। गीत अगर मौन की भाषा है तो साज उस भाषा की आवाज है। इस बात पर पियानो, गिटार, बांसुरी, सितार और कई पाश्चात्य वाद्य याद आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत गीतों का खजाना दिखाई दे रहा है। आपने कौन सा वाद्य और गीतों की मोती चुन लिए, अनुमान लगाना मुश्किल है, फिर भी कुछ गीत आपने लिखे हैं तो सुनिएगा, बताइएगा क्या गीत आपके हमारे गीतों से मिल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो के साथ साथ शायद हारमोनियम भी आज के गीतों में है। तो वैसे तो हमने कहा ना कि पूरे गीत में कई वाद्य यंत्र बजते हैं, लेकिन फिल्मांकन करते समय पर्दे पर जब हम देखते हैं तो नायक या नायिका उस पियानो के पास बैठे हुए बजाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उन गानों को आज हमने चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इट्स पियानो, सो मेनी सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन पियानो इन हिंदी सिनेमाज। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में जहां नायक नायिकाएं हाथ में कोई वाद्य यंत्र लिए गाते थिरकते नजर आते हैं, लेकिन पियानो की धुन पर सजी महफिल में गाती नायिका या नायक का गाना खुशियों में डूबा या उदास लम्हों को संजोए हुए है। दिल की भड़ास निकालते गीतों का क्या कहना, जहां तालियां तो बज रही है लेकिन सामने बैठी माशुका विलेन के साथ ठिठोली करती उसे जला रही है और आशी को बाहर चले जाने को मजबूर भी कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो में आज सिर्फ एक वाद्य यंत्र को नहीं समझा जाए बल्कि भावनाओं का अनुवादक रहा है ये। जब नायक या दिल टूटा हो, जब प्रेम अधूरा रह गया हो, जब यादें बेचैन कर रही हो या जब अपनी तन्हाई से बातें कर रहा हो कोई, तब अक्सर उसे पियानो पर गाना गाते दिखाया जाता है। पियानो की मधुर और गहरी धुनें मन के दर्द को शब्दों से भी ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है। आपने एक गीत का जिक्र भी किया है, शायद वो गीत आप सुन भी लें इस कार्यक्रम में, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। आगे एक श्रोता का कहना है कि आज का सुरीला सफर वास्तव में सुरीला होने वाला है, क्योंकि इबारत पढ़कर मुझे लगा कि आज वॉयलिन की बात होने वाली है। जहां तक मेरा सवाल है, हम भी अपने आप को संगीतकार समझते थे और इसी धुन में वॉयलिन की क्लास भी लगा ली, पर कुछ खास नहीं कर पाए। बहुत वर्षों पश्चात बेटे को भी वॉयलिन की क्लास लगवाई और उसने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। चार परीक्षाएं पास करके काफी कुछ बजाया है, लेकिन आम तौर पर जैसा होता है हम मध्यम वर्गीय परिवारों में कि नौकरी को वरीयता दी जाती है, समय अभाव के कारण वो भी इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। या आपने बिल्कुल सही कहा कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर चाहे LDC UDC बैंक में काम कर ले या बाकी दूसरी पोस्टों पर चला जाए, लेकिन एक साज को लेकर वो उसे अपना शौक नहीं बनाए या उस पर अपना कैरियर नहीं बनाए, है ना। इस तरह की सोच में अक्सर बहुत सारे कलाकार छूट जाते हैं बहुत पीछे। अगला गीत लेते हैं, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में है, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। जी हाँ, जॉय मुखर्जी और आशा पारिक की जोड़ी, देखिए कैसे बजता है ये वाद्य यंत्र। जॉय मुखर्जी से बजा रहे हैं।

जी, तो आज हम वाद्य यंत्र के रूप में आपको पियानो की विभिन्न धुनें भी सुना रहे हैं। इस पर भी ध्यान कीजिएगा, है ना, गौर फरमाइएगा। और हाँ, हमारे एक श्रोता ने ध्यान दिलाया है कि जो वाद्य यंत्र है पियानो पर, आशा पारिक बैठी हुई थी और जॉय मुखर्जी सामने है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते भी हैं कि फिल्म में पियानो इस तरह का साज है जिसमें नायक या नायिका अपने दिल के जज्बात को व्यक्त करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आइए मेहरबा बैठिए जाने जा जैसे ओपी नैयर का संगीत है, जिसमें लकड़ी के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है, वो बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से बहुत सारे गाने हैं जहाँ पर सपेरे की बीन की आवाज है। गीत तो बहुत सारे हैं जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्र जैसे गिटार, वायलिन, ढोलक, तबला आदि का प्रयोग किया जाता है। मुझे तो आपकी पसंद की गीतों का इंतजार है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज लग गया है 440 वोल्ट का झटका। अरे क्यों भाई, समझ नहीं पड़ रहा, क्योंकि अकेले नायक नायिका जब गाते हैं तो ज्यादातर दुख भरे गाने होते हैं या उम्मीद भरे, दोनों में गिटार या पियानो का उपयोग होता है, या कभी कभी बांसुरी भी। अनुमान लगाकर कुछ गाने लिख रहा हूँ। तो देखिएगा, ये गाने हमारे गाने से मेल खा रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कुछ गाने तो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत अलग सी थीम लेकर आप आती हैं, जरूर सुनेंगे नई जानकारी और मधुर गीतों के साथ आपको। जी जरूर सुनिएगा, आपके लिए तो ये सफर है जहां आप हमारे साथ और मेरे साथ होते हैं, खास है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी दुल्हन बनाकर पियानो पर ये गीत गाया जा रहा है। और रफी साहब की आवाज ने तो इस गीत पर जान ही लगा दी है, इस गीत पर जान ही लगा दी है। अच्छा, आपने जीत लिख दिया है, गलती से कुछ आपका टाइप हो गया है, और ये गीत आपको बहुत पसंद है, तो सुनते

कार्यक्रम कहीं ये गीत आपको सुनने को मिल सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे अंदाज से पियानो के साथ फैलाए गए गीतों की बौछार होगी। नायक नायिका के मनोभावों को व्यक्त करते हुए पियानो की तरंगे हैं, किसी को सुनने को मजबूर कर देती हैं, चाहे उदासी हो या खुशी का माहौल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्र केवल गायक के सहायक नहीं होते गायन के, बल्कि ये संगीत के प्राण लय और सुर के मुख्य आधार होते हैं। ये रचना को गहराई, सौंदर्य और पूर्णता प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और क्लासिक विचार आप सभी हमें लिखकर भेज रहे हैं जी। तो हमारे दो सवाल आपने नोट कर ही लिए हैं, कुछ श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं कि पियानो से जुड़े कौन से गीत हैं जो आपको याद हैं और वो हमारी प्लेलिस्ट से हो सकता है मेल खा जाएं, या वो गीत जो आपको पसंद हो बताइए, जहां नायक या नायिका की उंगलियां पियानो पर थिरक रही हैं। और हमारा दूसरा सवाल कि आपने अपने जीवन में कोई वाद्य यंत्र सीखा या आपके बच्चों ने सीखा तो उसका जिक्र कीजिए। और हम लेते हैं अगला गीत अगले सफर की ओर। रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, महेंद्र कपूर की आवाज और फिल्म का नाम हमराज। यहाँ पर सुनील दत्त साहब बैठे हैं वाद्य यंत्र के पास और उनकी उंगलियां थिरक रही हैं।

मुझे लगता है कि आज पियानो पर जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे दोस्तों की यानी हमारे साथियों की उंगलियां भी थिरक रही होंगी। क्यों थिरक रही है ना, पियानो की तरह। हाँ, पियानो पे मेरा मतलब है, क्योंकि हर गीत के साथ हम आपको एक पियानो की धुन भी अलग से सुनवा रहे हैं। और आज का ये सफर बहुत ही क्लासिक हो रहा है, मैं ऐसा समझती हूँ। आप क्या सोच रही हैं मुझे बताइएगा। बाकी आज जो हमने दो सवाल आपसे पूछे हैं, हमारे श्रोता फटाफट हमें जवाब दे रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी लड़की थी दिलवाले का और मेरी जंग जीत जाएंगे हम, इसमें पियानो का इस्तेमाल हुआ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म अनुपमा का धीरे धीरे मचल और ब्रह्मचारी का दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, क्या बात है। तो हो सकता है आपकी पसंद हमारे पसंद से मेल खाती हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राम और श्याम का और आदमी और ब्रह्मचारी फिल्म के गीत जो हैं पियानो से जुड़े हुए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी संगीत प्रेमी श्रोता बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक नायाब म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स और वाद्य यंत्रों को बजाने वाले नायाब कलाकार हुए, जिन्होंने हमें शानदार गीतों का खजाना दिया है। सोचो अगर ये सारे म्यूजिक वाद्य अच्छी तरह से बजाए न जाए तो गायक कलाकार की कितनी भी अच्छी आवाज क्यों न हो, अच्छा गीत नहीं बन सकता था। इसलिए सभी बजाने वाले साजिंदों को हम नमन करते हैं। बिल्कुल सैल्यूट देना चाहिए हमें उन सभी संगीतकारों को, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे 1960 से 1995 तक का संगीत बहुत ही पसंद है। और एक श्रोता ने तो पियानो के प्रकार लिखा है कि अपराइट पियानो, इसका भजन 175 वजन, इसका 175 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक होता है। अच्छा, क्या ग्रैंड पियानो का 300 से 600 किलोग्राम तक होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो पर फिल्म वंदना का गाना आपकी इनायतें आपके करम आप ही बताएं कैसे भूलेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये गाना आज के सुरीले सफर में होना चाहिए। और वहीं एक श्रोता कटी पतंग का गीत बताते हैं और वहीं लिखते हैं प्यार दीवाना होता है गाने में पियानो का इस्तेमाल हुआ है। एक श्रोता लिखते हैं कि कैसी हसीन आज बहारों की रात है फिल्म आदमी का गीत है। और वहीं मधुबन खुशबू देता है दिल के झरोखों में तुझको बिठाकर, धीरे धीरे मचल प्यार दीवाना होता है, मैंने तेरे लिए ही ख्वाब हो तुम, बहुत सारे गीतों को हमारे श्रोता ने लिखा है और आपकी पसंद हमारी पसंद से मेल खा रही है हुजूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं धीरे धीरे मचल ख्वाब हो तुम, दिल ने प्यार किया एक बेवफा से, चले थे साथ मिलके आपके हसीन रुख पे, बहुत सारे ऐसे गीत हैं। और वहीं एक श्रोता ने फिल्म धर्म कर्म का गीत एक दिन बिक जाएगा को पसंद किया है। एक श्रोता लिखता है कि संगम का गाना दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा, ये भी गाना उसी से जुड़ा है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तबला सितार हारमोनियम और अकॉर्डियन पसंद है, स्कूल के दिनों में 3 महीने हारमोनियम सीखा था पर ये छूट गया, अब कुछ साल पहले हारमोनियम खरीदा है और समय समय पर बजाती भी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी वाद्य यंत्रों को लेकर इतने इतने संवेदनशील हैं, इतने मार्मिकता आपके भीतर है और इन यंत्रों के बारे में आप भी बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण रखते हैं। आइए ऐसा ही एक और गीत सुनते हैं, रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, आवाज मोहम्मद रफी साहब की और फिल्म का नाम दो बदन।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज तक कोई भी वाद्य यंत्र नहीं सीखा, मुझे बहुत अफसोस है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती पर सुरीला सफर, जिंदगी गुजर रही है बेफिक्र, मजा आ रहा है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दो बदन का गीत मनोज कुमार पियानो बजाते हुए, मोहब्बत हो गई जिनको दीवाने कहां जाए, रफी साहब की आवाज में दर्द भरा गीत, शकील बदायूनी की कलम से और रवि का मध्यम संगीत बड़ा कर्णप्रिय लगता है। हमें पसंद है ये गीत, बजना चाहिए। हमें तो साज बजाना नहीं आता, हाँ हमारा लड़का ढोलक बजाता है जो जगह जगह भजन संध्या, अन्य कीर्तन और स्थानीय कार्यक्रमों में जाता है। अच्छी बात है ना। वहीं एक श्रोता ने पियानो वादक जो है, मशहूर जैज पियानो वादक कीथ जैरेट के बात लिखी है। 1975 का उन्हें कोलोन कॉन्सर्ट की कहानी के बारे में एक बहुत लंबी चौड़ी बात लिखी है। इसी फिलहाल हम यहाँ नहीं ले पा रहे क्योंकि कार्यक्रम में समय बहुत कम है, लेकिन शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं, जिंदगी इत्तेफाक है और आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना, आपके हसीन रुख पे गुजरा जमाना, ये बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई साज बजाना नहीं सीखा, लेकिन बचपन से विविध भारती को रेडियो पर सुनते सुनते आज ये दिन आ गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत आपने लिखे हैं, चेहरे पे खुशी छा जाती है, दोस्त दोस्त ना रहा, धीरे धीरे मचल और पत्थर के सनम, और इसके अलावा तू कहे अगर अंदाज का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बांसुरी, माउथ ऑर्गन और गिटार बजाना सीखा, काफी दिनों तक अपने विद्यालय और महाविद्यालय में कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाद में मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने कैसियो का कीबोर्ड, जो उस समय बहुत शुरू हुआ था, नेपाल से लाकर दिया। तब से मैं कीबोर्ड बजाता हूँ और आज मेरे पास यामाहा का कीबोर्ड है जो मैं अमेरिका से लेकर आया था। बहुत अच्छी बात है कि आप वाद्य यंत्रों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना।

0: आइए, हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में भी ये गाना है जो कहते हैं कि भाई फिल्म संगम का गीत सुनाइए मुकेश की आवाज में, दोस्त दोस्त ना रहा। तो चलिए सुना देते हैं आप सबकी पसंद पर, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। राज कपूर साहब बैठे हैं वहां इस वाद्य यंत्र को बजाते हुए। सामने कौन है? राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला, है ना?
1: के हसीन रुख

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे सूरत में रोज मेरी नामक एक रेस्टोरेंट के वेटिंग एरिया की फ्लोरिंग पियानो थीम पर बनाई गई है। कांच के व्हाइट और ब्लैक पट्टे पर चलने से अलग अलग लाइटिंग के साथ म्यूजिक बजता है, बहुत ही रोमांचकारी नजारा होता है। ये वीडियो नहीं अपलोड होता वरना मैं दिखाता, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सरोद सीखना चाहता था पर हसरत ही रह गई, हालांकि छोटे भाई ने सितार सीखा है। वही एक श्रोता ने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाना जानता हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे खैर गानों का इन्होंने जिक्र किया है और एक श्रोता ने कहा है कि मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ और तबला भी। वही एक श्रोता ने लिखा है हमने वायलिन सीखा है 4 साल तक पर अब हम बहुत कम बजाते हैं, अब थोड़ा भूलने भी लगे हैं। अरे भूलिए मत, उसे अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। और अब हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब फिल्म ब्रह्मचारी के लिए और मोहम्मद रफी और लता साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी की रचना है।

जी हाँ, उदास तो बिल्कुल भी नहीं होना है और जिंदगी का ये सुरीला सफर यूं ही कट जाएगा। हंसते हंसते इसी उम्मीद के साथ अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

साथियों, मौसम चाहे कोई भी हो, प्रकृति का सर्वाधिक सुंदर रूप धूली निखरी ओस से भरी शीतल सुबह में होता है। हर एक सुबह का अपना ही सौंदर्य है। स्वच्छ ताजी हवा और सूर्य की पहली किरण का स्पर्श हमसे कहता हुआ प्रतीत होता है, जागो मोहन प्यारे, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हो। रात्रि के अपने विश्राम कक्ष में जाते ही सूर्य का रथ गतिमान हो उठता है और हम सभी निर्मल मन के साथ नई सुबह के कोरे पन्ने पर एक नए दिन का संकल्प लिखते हैं और मुड़ जाते हैं अपने जीवोन्मुख कार्यों की ओर।

हर नई सुबह हमारे लिए जागरण का संदेश होती है। एक नई आशा, नई उम्मीद के साथ हमें कर्म पथ पर चलने का हौसला देती है। सुहानी सुबह के अद्वितीय सौंदर्य में हम शांत मन से प्रकृति के नैसर्गिक संगीत को सुनते हैं। ठंडी शीतल सुबह में सूर्य की किरणों के स्पर्श से खिलते फूलों की सुगंध और पंछियों की चहचहाहट हमें ऊर्जावान बनाती है। फूलों की तरह खिलती महकती हमारी सुबहें हमारे जीवन को नित नई दिशा देती हैं। एक आस का सूरज हर दिन हम सभी के लिए उदय होता है।

हमारे जीवन में उल्लास भरती, खुशियों की उजास लिए सुहानी सुबह हमारी आस का वो तारा बनकर चमकती है, जो हमें हमारे सपनों की राहों पे चलकर एक नई पहचान, नया आशियां बनाने को प्रेरित करती है, हवाओं पे एक नई कहानी लिखने का हौसला देती है। जागो, उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो।

साथियों, हर सुबह एक नई आस को जन्म देती है और इस आस को हम जिंदगी कहते हैं। अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ीं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
2: सीख सौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, 1 बरस
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक

0: वृद्धि सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
1: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
2: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
1: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
3: The global south should be enabled.
4: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT

0: ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

0: के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: నమస్కారం.
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन.

फिल्म बाबर का गीत था, आवाज सुधा मल्होत्रा की थी, गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज बनाई थी रोशन ने।

ये स्वर है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की फिल्म का नाम है मेरा घर मेरे बच्चे। रचनाकार हजरत जयपुरी, संगीतकार सरदार मलिक।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए प्रेम धवन का लिखा गीत, हंसराज बहल का संगीत, आवाज मुकेश की, और ये फिल्म है मुड़ मुड़ के नातिक।

कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में शमीम जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज एक बार फिर मुकेश की, और ये फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, यह है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत रोशन का है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, स्वर हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के। फिल्म का नाम है अपना घर।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल बहुत अच्छे हैं।
1: देखिए बारिश की बूंदें पड़ गई है मुंबई के सरजमी पर और
2: मुंबई के अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ छुटपुट बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से धूप निकलती है ना तो बारिश का मजाक किरकिरा कर देती है क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: बस जब बारिश होती है तो हमें इंतजार रहता है कि नदियां भर जाएं, तालाब झरने और कलकल बहने लगे, मतलब ये लगता है कि पानी पानी चारों तरफ दिखाई पड़े। और जब ज्यादा बरसात होती है तो हम परेशान भी होने लगते हैं, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार संतुलित बारिश हो। और आज विशेष तौर पर हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आज एक विशेष दिन है, नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस।
2: जी,
1: तो ये वैसे हमें रोज इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दिवस के बहाने हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो हमारे मछुआरे हैं, नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं
2: जी,
1: तो उनकी उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है, कितनी सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, घर परिवार वालों की, समाज की। और दूसरा कि जब आप इस नौका विहार के लिए जाएं और नाविक का काम, मतलब मछुआरों का काम करने जाते हैं, तो पहली शर्त यह है कि तैरना आना चाहिए, कि बिना तैरे नदी में छलांग न लगाएं कि हम
2: वैसे भी जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहां नदी, झील, झरने ऐसी चीजें होती हैं, और वहां पर जब हम नाव की सैर के लिए जाते हैं तो सुरक्षा के तौर पर हमें एक जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए कि अगर कभी कुछ दुर्घटना हो तो वहां आप सुरक्षित रहें। लेकिन उसके अलावा एक नाविक इस तरह का मौजूद हमेशा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो अधिकतम लोगों को वो बचा कर ला सके। और बहुत ही उनकी कठिन जिंदगी होती है, उनके बारे में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता हो, इसीलिए इस तरह के खास दिन जो है वो हम मनाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है कि जब नौका विहार के लिए लोग निकलते हैं तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं वो नाव पर जहां पर ये सुरक्षा जैकेट नहीं देते हैं, कम होते, दो चार होते हैं और 15-20 लोगों को बिठा देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक होता है। जो लोग बैठते हैं कहीं पैसों की बचत के चलते, कहीं समय की बचत के चलते बैठ जाते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, न कि आपके धन।

0: की धन, तो ये ध्यान रखें। अक्सर किसी जगह पर जब जहां पर कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी होती तो अमूमन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फला जगह पर नौका डूब गई। तो ये ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इस तरह की आपदाएं अब कम हो रही हैं क्योंकि सरकार की ओर से भी मुहिम चलाई जा
1: जी
0: रही है कि एक तो सुरक्षा जैकेट बहुत जरूरी कर दिया है और जगह जगह पर उनकी टीम काम करती है, नदियों में जाती रहती है कि कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उन्हें बचाया जा सके।
1: तो इससे जुड़े कोई अगर अनुभव है हमारे सुनने वालों के तो वो हमें लिखकर अवश्य भेजें। इसके अलावा आज जिन विषयों पर बातचीत हम करने वाले हैं, हम बता दें कि अगर आपने घर में कुछ पौधे लगाने के आप शौकीन हैं या आप कोई खेती भी करते हैं तो कीट जो लग जाते हैं, जो कुछ कीड़े हैं ना जो लग जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके घरेलू पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आज तो हम सिर्फ घरेलू पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने घर में अपने गार्डन छोटा सा बगीचा बनाया है, छत पर एक बगिया बनाई है, तो उनको बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वाले जरूर हमसे साझा करें। और शादी ब्याह एक ऐसा बहाना होता है जब बहुत सारे सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है हमारी। कई बार तो हमें शादी में जाते ही इसलिए हैं कि अरे वो मौसी आएंगी, वो मामा आएंगे, वो ताऊ आएंगे, या उनके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई होती है तो उनसे मिलना जुलना भी हो
0: और
1: जाएगा।
0: बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे तो चलते हैं, और वो जो इकट्ठे टीम बना के दल
1: जी
0: बना के जाना वो एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि अमूमन अकेले अकेले ही जाना होता है।
1: जी
0: लेकिन शादी ब्याह में कई टीम बन जाती है, भाई दफ्तरों से भी जब लोग किसी की
1: जी
0: शादी में जाते हैं तो कहाँ मिले, फला जगह पे मिलते हैं
1: हाँ जी
0: और सब झुंड बना के जाते हैं, तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के इस मामले में क्या अनुभव है कि वो जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की फीलिंग होती है, कौन सा एहसास होता है, उन एहसासात को यहां पर साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
1: और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसके अंतर्गत जिनका परिचय हम करा रहे हैं ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई। तो बातें विस्तार से होंगी लेकिन ममता जी एक गीत पहले सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहां के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल। और रमीला बेन, ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून, ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी थी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गाँव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी, और खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थीं उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे इस चीज से। महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
1: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उसे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि वो कर रही थी।
0: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहाँ भी कुछ बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे। और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गईं, लेकिन वो अडिग रही और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रही।
1: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज्यादा स्वच्छता इकाइयां बनवाई, जिससे कुछ गाँव खुले में शौच मुक्त हो गए।
0: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी थी। जैसे आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं, लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे, जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
1: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता

0: आबादी और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने।
1: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया और रमीला बहन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
0: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को ग्रामीण लोगों को और उनके अथक प्रयास के से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
1: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थी अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को और इन गांवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गांवों के बच्चे खासतौर पर लड़कियां अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
0: बिल्कुल सही बात है। रमीला बेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए
1: ममता जी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी 2022 में उन्हें मिला।
0: 2022 बिल्कुल सही कहा आपने और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
1: और उनकी ये जो कहानी थी जो कार्य उन्होंने किए वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया। और रमीला बेन अब तक गुजरात के करीब करीब 700 से ज्यादा शौचालय वहां पर वो बनवा चुकी हैं या मदद की है उन्होंने हम ऐसा कह सकते हैं और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव छोटा से छोटा कदम भी अगर है अगर अटूट संकल्प है तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड
1: जी
0: रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही
1: हाँ।
0: हैं, फलानी चाची आ रही हैं,
1: और
0: फलानी जगह
1: कोई
0: की
1: मत
0: भाभी
1: वाला
0: आ
1: आया मेरे द्वारे ही तो होता है।
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी,
1: हाँ
0: पुरवा वाली भाभी, और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे
1: हाँ
0: जगह जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली
0: अलग।
1: चाची,
0: हाँ,
1: आगरा वाले
0: और
1: ताऊ
0: कई बार
1: जी।
0: तो भाभी और चाची कर वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही हैं, देखिए
1: हाँ
0: ना, राजस्थान वाली आ रही है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मजा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीजें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊजी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी ब्याह में जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा
0: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना
1: जी
0: बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी
1: जी
0: टाइम पे नाश्ता चाहिए। वही दायरा, उसी दायरे में सिमट कर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी
1: हाँ
0: वाली चाची, कौन सी वाली बुआ, तो उनको पता ही नहीं है कि फोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहां तक बात है कि पढ़ाई पे
1: जी
0: विघ्न आता, तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में
1: अगर
0: शादी है
1: कोई
0: तो।
1: बहुत जरूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहां उनके सहकर्मी हैं वो।
0: अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे
1: जी
0: में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्योहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब

0: सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है?
1: बिल्कुल सही बात है।
0: हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है, पुरानी बातें याद ताजा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उसपे जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में नहीं आंगन तक, बरांडे तक गूंजते हैं,
1: बिल्कुल,
0: उसकी
1: बहुत सारी
0: बात अलग
1: छेड़छाड़
0: होती है।
1: होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको, कितने
0: बड़ा हो
1: बड़े हो
0: गया,
1: गए हो।
0: बड़ा हो गया हमारा बेटा,
1: जी
0: बड़ी हो गई हमारी बिटिया, तो ये सब होता है। और समय का अंतराल कई बार कुछ चीजों को विस्मृत कर देता है, जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताजा हो
1: कई बार
0: जाती
1: कुछ
0: हैं।
1: कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष
0: ज्यादा अमीर हो
1: छेड़छाड़।
0: गई हो, ये भी
1: हाँ
0: होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक
1: जी
0: गाना सुनवाते हैं।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं, और फिर शादी बीत जाती है लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही हैं, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती हैं जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
5: अब इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी उखड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोवल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
2: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था, हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे, मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गई, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई, बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर, कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है और रात को जो महलूल होता है अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
5: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादियां पधारें, पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है।
2: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान है, दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए, ठीक है उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं

0: जी
1: उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत न करें।
0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष श्रोता शामिल होते हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहां हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे। रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए, किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी। वहां पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे, और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी। 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई, और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी। अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना। मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही हैं, पर वे मुस्कुरा कर रह गई और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए। आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं। वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता
0: जी
1: है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं कि
0: हाँ
1: हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू ने दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया। मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
0: इस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहां कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो, या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहां कुछ दिक्कत हुई हो, जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना है।
1: पर रिश्तेदार जो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं,
0: जी
1: क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सब सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्मों रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
0: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है।
1: अमूमन ऐसा होता है। अब
0: चलिए
1: पता
0: फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन लें।
1: सुनते हैं।

0: भाई ममता जी, शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है। सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से, यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी, तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई, बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठ कर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताजा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए हैं कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापर, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल
1: क्या बात है
0: रिश्तों
1: भाई,
0: को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोहों में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
1: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं, मैं परिवार में छोटी हूँ, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरा, चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी जमाना है,
0: जी,
1: अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी

0: एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है अभी अभी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले, इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज्यादा उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी
0: जी
1: लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं।
0: जी
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मजेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी
0: क्या
1: तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मजे किए, डांस किया, बाद में फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सबने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे आज आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
0: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं, जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, कि हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहां जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज़्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
0: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
1: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे पौधे
0: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं, हाँ। मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं ताकि वो जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
1: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80-90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर जो भी वस्तुएँ हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुँचाया जाता है।
0: बिल्कुल, और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं, तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर

0: वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क का नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहां तक नहीं
1: बिल्कुल
0: पहुंचता
1: सही।
0: है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। तीन तीन चार चार दिन, कई बार महीनों
1: जी
0: तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
1: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए, और उद्योग समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
0: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: ये था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण बाजपाई VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण बाजपाई VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन एस्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स 3 सन्स ऑफ माई पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेज, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज NCC कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लियर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन क्लियर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज और फिर IMA ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन्ड इन टा जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा,
0: okay, मतलब पूरा वो
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली JNK का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में,
0: okay.
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा एंड देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहां से एक एकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई,
0: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा तो वापस
1: वो वापस घूम फिर के
0: वापस घूम फिर करके आया। लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा था।
1: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है। अच्छा। तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते अच्छा। रहे हैं जी। तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से। अच्छा। विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में, तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट नहीं और।
0: ओके, तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी, देयर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई

0: बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ वेकेशन, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ व्हाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा उसकी अलग सैंक्टिटी होती है, बट हाँ फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
1: तो आज की संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है, और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085-2342-1085।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफ़ी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी।
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, okay. चिंगचिप करके, वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे हमने सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
0: अच्छा।
1: सो एक बार एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल व्हिच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस, उन्हीं के वो टेबल तक आई। बट इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल्स स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं, और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो, और पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस अच्छा। जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को, उन क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे है,
0: पूरा लाइफस्टाइल
1: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को एस्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं। फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे, एंड आई टू वाइंड अप ओनली जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
0: तो जबकि उस पर बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश

0: रही इसमें कि इतने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा
1: जी
0: कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ,
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: क्या वो भी उसमें कंट्रीब्यूटर रहे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तो बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे. हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे. देखिए साहब,
0: तो एक बड़ी टीम हो गई,
1: एक बड़ी टीम हो गई. द इंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में.
0: बिल्कुल,
1: टू इनकल्केट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ना वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में. That was the bigger and the larger aim actually. मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं.
0: अच्छा.
1: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी. तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे आगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है और वो फल फूल रहा है, सब तरफ फैल रहा है.
1: बिल्कुल.
0: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफस्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना,
1: जी.
0: वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
1: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं. उसके साथ साथ में पांच टीचर्स लिए आते हैं, पांच टीचर्स और करीब छः सात का और स्टाफ. तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैंने 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को
0: जी.
1: शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
0: बस.
1: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट, आपके आँख कान नाक सब कुछ होते हैं. तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है. तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके.
0: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए,
1: हमेशा
0: तो
1: के लिए.
0: बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया. तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा? कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
1: नहीं सर, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में ये स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, देखिए हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
0: हमेशा के लिए, हमेशा बन गया और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते रहेंगे.
1: जी, जी,
0: तो
1: जी,
0: ये
1: जी.
0: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा.
1: मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात. ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका. तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद, बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का.
0: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था. तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया
1: जी.
0: तो वो जो मोमेंट था.
1: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से, अपने दम से किया पूरा का पूरा
0: जी.
1: हाँ, बस ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था. इट वॉज एक्चुअली ट्रेमेंडस अचीवमेंट.
0: ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था
1: जी.
0: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है
1: जी,
0: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें.
1: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है. तो अपने आप में बस सबसे सुखद अनुभव था वो वाला. पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज से कि आगे भी अच्छे करते रहना है.
0: बिल्कुल सर, एक चीज यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को.
1: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ. इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
0: ठीक है,
1: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है. तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या 5वें में हैं
0: जी,
1: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन.
0: ओके.
1: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं.
0: अच्छा.
1: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं. तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अप्लाई करें तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं.
0: okay.
1: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती है जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं. तो ये रूल्स समय समय पे चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है. एंड

0: इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहां पर दाखिला होता है, पर
1: जी
0: यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं,
1: जी
0: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की
1: डिसिप्लिन
0: भावना डाली जाती है,
1: बिल्कुल
0: ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर
1: बिल्कुल
0: अगर चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग
1: जब
0: महत्वाकांक्षाएं हो
1: जी
0: सकती हैं,
1: करियर को लेकर
0: च्वाइस हो
1: के
0: सकती हैं,
1: जी
0: पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
1: यानी
0: जाता
1: कि
0: है।
1: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो
0: जी
1: मजबूत हो जाते
0: बिल्कुल
1: हैं और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही
0: बिल्कुल
1: ऑर्गेनाइज हो जाता
0: यस
1: है।
0: यस
1: तो सर
0: यस
1: इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
0: यस यस अगर गूगल करेंगे तो सैनिक स्कूल एडमिशंस की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल
1: ठीक है
0: सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है
1: ठीक
0: जिसपे
1: है
0: कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा
0: जी
1: प्रोसीजर सामने
0: जी
1: आ जाएगा
0: जी
1: उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो 5वीं पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो या
0: या जो
1: जो
0: पास आउट हो चुके
1: हो
0: हैं,
1: चुके हैं
0: हाँ
1: वो
0: 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल की
0: तो दस
1: लिमिट
0: से
1: है।
0: 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ। अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेज आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ अकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन, और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो आई ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल एक एकेडमिक्स में आकर के
1: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्डकोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड, से एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
1: जी, बट हाँ, चार साल हो गए वहां पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के, उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है, एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में। और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा,
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा। ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी करी, और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया।
0: तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप

0: कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। जो लखनऊ वाला पीजीआई है, दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट,
0: ठीक है
1: एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट
0: जी,
1: एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडी भी हैं, जो कि
0: ओके,
1: सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग
0: अच्छा
1: एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं,
0: जी,
1: जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं। ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री,
0: जी
1: ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना

0: और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
1: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
0: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी होता है,
1: अच्छा,
0: सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब
1: ओके,
0: संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं,
1: सर,
0: जहाँ
1: अगर हम एक लेमेन के हिसाब से समझें या
0: जी
1: आम
0: जी जी
1: आम भाषा के हिसाब से,
0: जी
1: तो उसको कैसे हम इसको
0: जी
1: समझेंगे कि ये कौन कौन से, आप
0: हाँ,
1: जो जो ये बता रहे हैं आप इन?
0: संस्थान में जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है, कि
1: अच्छा,
0: जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे
1: ओके,
0: कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई,
1: अच्छा, मतलब जो
0: ट्रीटमेंट्स हो
1: बहुत
0: गए,
1: ही सेंसिटिव
0: यस
1: या बहुत ही
0: यस,
1: गंभीर वाले,
0: जेनेरिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो
1: अच्छा,
0: इनका भी एक हायर लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे
1: अच्छा
0: किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीज़ों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं,
1: जी,
0: एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
1: ओके,
0: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये यह है कि भाई जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे,
1: जी,
0: उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा।
1: सर, लेकिन एक चीज यहां पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे
0: जी
1: बातचीत करते
0: जी
1: हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में आए होंगे,
0: जी
1: ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इनका
0: जी
1: इतने हाईली सेंसिटिव
0: जी
1: जो
0: जी
1: ट्रीटमेंट्स आपने बताए
0: जी
1: उनको और बेहतर से
0: देखिए सब,
1: बेहतर
0: दोनों
1: बनाना।
0: के दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वॉज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माई ओन डिस्पोजल।
1: जी,
0: यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, केपेबिलिटीज और अलग अलग
1: अपने अपने
0: इन्वायरमेंट से
1: काम
0: आती है।
1: कर रही
0: तो
1: है,
0: यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो
1: जी
0: अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है,
1: बिल्कुल,
0: ज्यादा लोग भी हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहां पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे, जंगल में एक तरीके
1: अच्छा,
0: से, जहां पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, वहां पे जहां फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे। तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द
1: जी
0: फैक्ट इज कि यस, बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज वॉट कीप्स मी गोइंग।
1: जी
0: जी
1: तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, कि मुझे भी एक ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
0: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट
1: जी,
0: टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू।
1: एग्जैक्टली,
0: तो भाई टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा,
1: बिल्कुल,
0: रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
1: तो बिल्कुल वो
0: जी
1: जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी
0: फिर
1: भी थमते या रुकते नहीं हैं, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं।
0: आगे बढ़ते हैं,
1: सर,
0: बिल्कुल
1: इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग, एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
0: जी। देखिए नर्सिंग कॉलेज एक, नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की।
1: ओके,
0: अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे।
1: ठीक,
0: डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी
1: बिल्कुल,
0: करनी है, बट उसके
1: जी
0: बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेज को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर उसके
1: जी
0: अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया,
1: जी
0: और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92, एंड
1: ओके,
0: पीजीआई वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे साहब कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये
1: तो ये
0: अपने आप में
1: भी बहुत बड़ा अपने आप
0: जी
1: में
0: जी
1: अचीवमेंट
0: जी
1: था,
0: जी
1: और जाहिर है ये बहुत टफ भी रहा होगा, तो
0: हाँ,
1: इसमें इसमें फिर किस तरीके का आपको?
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट
1: जी
0: हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और
1: जी
0: जो जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है। तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहां भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से, मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको
0: जी
1: करना,
0: जी
1: तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा
0: यस,
1: होगा।
0: रिस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैग कर रहे हैं।
1: हाँ,
0: जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो

0: किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं,
1: जी
0: जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस
1: ठीक
0: कराएं,
1: ठीक
0: और
1: ठीक
0: कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें. दैट इज वेरी वेरी
1: तो
0: इंपॉर्टेंट.
1: ये जितनी भी चीज़ें रही हैं यहाँ
0: जी
1: पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो
0: जी
1: ट्रेनिंग थी,
0: जी
1: वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज़्यादा असरदार साबित हुई? उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, कि आप ये
0: बिल्कुल
1: सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, इतने
0: बिल्कुल
1: ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए?
0: बिल्कुल. मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको
1: जी
0: अपनी टीम का हिस्सा बनाएं. देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं.
1: बिल्कुल
0: हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे
1: जी
0: उसको सिस्टम में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली.
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है.
1: जीवन शैली है, वो
0: जी,
1: एक लाइफ
0: इट्स अ वे
1: स्टाइल
0: ऑफ
1: जो
0: लाइफ,
1: बिल्कुल
0: इट्स अ
1: अलग है
0: वे
1: वो,
0: ऑफ लाइफ.
1: और
0: यस
1: बहुत ही स्पेशल है मैं
0: एब्सोल्युटली
1: समझता हूँ. तो
0: एब्सोल्युटली.
1: वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें, ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के भी एक
0: जी
1: जज्बा पैदा हो.
0: जी
1: तो इस चीज़ में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं?
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेस आर स्ट्रांग इनफ. सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है,
1: जी
0: वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि
1: जी
0: फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है. आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है. आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर सो मेनी एप्लीकेंट्स,
1: जी
0: 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं.
1: बिल्कुल
0: तो देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक इंथुजियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाएं,
1: सर्विस
0: नेवी
1: दें.
0: में जा पाएं, एयरफोर्स में जा पाएं. तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ
1: बिल्कुल
0: लॉट ऑफ यंग पीपल. हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो
1: जी
0: बरकरार रहे.
1: बरकरार रहे,
0: तो वो एक
1: वो
0: बहुत
1: जोश और
0: बहुत
1: जज्बा और
0: वो
1: देशभक्ति की जो
0: जज्बा.
1: भावना है वो बरकरार
0: एग्जैक्टली
1: रहनी
0: एग्जैक्टली
1: चाहिए. सर
0: एग्जैक्टली
1: एक चीज यहां भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है, कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जैसे आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसी,
0: जी जी
1: तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा.
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो. तो
1: अच्छा
0: एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है. तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ
1: जी
0: सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से.
1: अच्छा
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में, और वो अपना एनसीसी का 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है, और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है. बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपेयर करने से छूट मिल जाती है.
1: अच्छा
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द अकेडमी. तो
1: ओके
0: एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपेयर करने की छूट मिल जाती है. यू हैव टू अपेयर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी. एसएसबी आपने पास कर लिया
1: अच्छा
0: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द अकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो हम मुझे लगता है कि एनसीसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए, और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल इथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं.
1: कम से कम उनके
0: जी
1: अंदर वो
0: जी
1: चीज, वो
0: राष्ट्रीय
1: जज्बा, वो
0: भावना और
1: धारणा
0: वो राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट ना.
1: अपहोल्ड, बिल्कुल
0: यस
1: बिल्कुल, वो
0: यस
1: चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए, और
0: बहुत
1: उसके अंदर वो जोश से जज्बा, और
0: जी
1: देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि
0: माध्यम
1: हाँ
0: होता
1: भाई
0: है.
1: क्यों वो
0: जी
1: अपने देश से मोहब्बत करता है, और वो क्यों
0: बिल्कुल
1: उस पर जान निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है.
0: जी
1: सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे, और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जैसे जैसे
0: जी
1: अब आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर है एआई हर जगह पर है,
0: जी
1: तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको।
0: जी जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले

0: कर सकें।
1: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संध्या से आते हैं।
0: के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी वीएसएम। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो संदेश टू सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की फिल्म का ट्रैक। आप भी एंजॉय करें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से। 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज़ हर जगह है, हर चीज़ में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज़ हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज़ कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, चाहे आप किसी चीज़ को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज़ बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी? नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज़ को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीज़ों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट निगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीज़ों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटा बेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीज़ों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है
0: जी।
1: आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI विल, अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
1: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स

0: देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि एआई का जो असेसमेंट रहा है
1: जी
0: वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है और
1: अच्छा
0: स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो
1: बिल्कुल
0: ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि एआई के माध्यम से, एआई के आने से जो हमारा परफेक्शन है हम उसके और पास पहुंच सकते हैं। अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस
1: जी
0: कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
1: सर, एआई पर हमने बात की और एआई तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में।
0: जी
1: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए
0: जी
1: बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर,
0: जी
1: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
0: जी
1: थी,
0: जी जी
1: तो एक बार और प्लीज अगर बता
0: देखिए,
1: दीजिएगा।
0: ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है।
1: जी
0: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं।
1: जी
0: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम एनटीए कराता है और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज़ चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस,
1: अच्छा
0: वो सारा सारा कोर्स करिकुलम एग्जामिनेशन का पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को के अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं,
1: अच्छा
0: कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप पे है आपके। यू जस्ट
1: बिल्कुल
0: हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
1: ओके,
0: जी
1: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और
0: पूरा मिल
1: ऑनलाइन अप्लाई
0: जाएगा।
1: भी आप वहीं से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल
1: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड आरजे सर, जय हिंद। जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आर नेशन। आई गिव
0: थैंक यू।
1: रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
0: भारत माता की जय।
1: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं। लेकिन हम सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम
0: जी
1: उसी जिंदगी में, लाइफस्टाइल में,
0: जी
1: तो वो सोशल मीडिया के भी काफी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, वो आपने अपने तौर पर जो चीजें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
0: जी जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके
1: जी
0: पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है,
1: जी
0: अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं।
1: जी
0: बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है।
1: बिल्कुल
0: ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से।
1: जी
0: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
1: ओके
0: तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी
1: जी
0: फोन पे ही, इनका इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं।
1: जी
0: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं 5 लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम
1: अपने अपने
0: पे,
1: फोन पर वो
0: या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी
1: एग्जैक्टली
0: हिल रही
1: मैं
0: है
1: वही
0: बस
1: पूछने
0: खाली।
1: वाला था सर, ये
0: जी
1: रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो
0: जी
1: चुके हैं लोग,
0: जी जी
1: इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे।
0: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया
1: बैन
0: है,
1: किए हैं जी
0: दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
1: बिल्कुल
0: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो
1: जी
0: ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही। आप
1: एग्जैक्टली
0: जैसे मैंने
1: आपने सही
0: पहले
1: बताया
0: बोला,
1: जी,
0: इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है। जिससे बाहर

0: आंखें आने में बड़ी तकलीफ हो रही है।
1: सर एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है, वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता।
0: जी
1: तो इससे बचने का कोई तरीका, जो क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं ट्वेल्थ पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी हैं।
1: किताबें
0: देखिए साहब, आप
1: तो
0: बिल्कुल एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है। तो देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट यस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है,
1: ये बहुत जरूरी है। और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस किया है, और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: देखिए फौज में आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए कि किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीजें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
1: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया
0: अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है, आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीज़ों से। प्लस आपको पता ही कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत जरूरी है।
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहा है।
1: तो क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए?
0: देखिए कुछ चीजें तो
1: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं,
0: जी जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीजें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीजें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों।
1: जी तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लिसनर सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
0: तो थैंक यू सो मच,
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे, कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

संदेश टू सोल्जर्स अभियान आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोरपिंग

0: बंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर, सूरजपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडांड, गणेशपुर, खड़गवां, पंडोपारा, झींगापारा, बोझा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, सलका, मूड़गांव, शिवनगर, जनार्दनपुर, मेंढरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, पेंडारी, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 44 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चाउरपानी, बांसाझाल, आमापानी, घोघरा, मानपुर, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, सोनगिरसा, बीजाघाट, सारू ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये कूड़े केला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कादर, मड़ई, कोदवारी, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, जोबी, नोंदरहा, पौड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। लोदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, तेंदुचुआ, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गाँव के आस पास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई। संगवारी हो, बात करी हमार खरीफ फसल की तैयारी के, तो अभी हमार किसान भाई मन खरीफ फसल के तैयारी में लग चुके हवा। जोन किसान भाई मन करा सिंचाई के साधन है, पल्लो के साधन है, उमन 15 दिन आगा हो हमार जोन खेती किसानी के बूता काम है, जैसे कि बात करी नर्सरी तैयार करना या खुरा बाउ करना, तो एक प्रकार के हमार कतुक किसान भाई मन खुरा बाउ या नर्सरी के तैयारी में लग चुके हैं। कतेक किसान भाई मन आज भी खादों के संगे संग धान बीजा के एकर कौन प्रकार से किसना किस्म के धान हमन अभी बेरा में अपना बो के एकरो तैयारी में हमारे किसान भी हमन लगे हैं। और बात करी संगवारी हो कि अभी बेरा अधिकतर हमन देखी तो हमारे किसान भी मन का करते हैं कि अभी बेरा का फसल ही एक चिन्हारी नहीं कर पाए, एकर पर हमन का करते हैं कि जितके ज़्यादा हुआ हमन जो कृषि विस्तार अधिकारी पर कर जाके संपर्क करी ताकि उन बतावे कि कौन प्रकार के भूइया में कैसा हम खाद माट के व्यवस्था, बीजा के व्यवस्था हम कर सकी और ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार ले सकी। बात करब संगवारी हो, आज हमन कहीं न कहीं हमारे जो समाज है आज नशा के ओर बढ़त हवा, कारण यही आवे कि हमन में अशिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हवा। अगर शिक्षा हवा तो कहीं न कहीं हमन अपन जो लोग लैका है ओला हमन केवल सीमित ही रख पातन, वो मतलब शिक्षा में आगे हमन बढ़ा नहीं पातन। आज सबसे बड़े अगर हमारे समाज के दुश्मन आवे तो नशा हवा। आज नशा के माध्यम से कहीं न कहीं हम जो समाज है दूषित होते, चाहे हम शिक्षा के बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, चाहे हमार अच्छा समाज के बात करी, सबो क्षेत्र में आज हमार नशा है सबले बड़े हमार बा रुकावट बन जाती। एकर बार सबसे बड़े जवाबदारी होते हैं हमारा अपन जो घर में दाई ददर के हमन दाई ददर के हन उनकर जवाबदारी होते कि कैसे हमन लोग लैका मन ला नशा से हमन दूर रखें। काबर के आज देखा था तो गांव बस्ती में छोटे छोटे जो लोग लेकर आते हैं वो नशा कराते हैं। खास खास करके बात करबो जो रेलवे स्टेशन जातन, बस स्टेशन जातन, तो वहाँ भी हमार कतेक संगवारी मन ऐसे हवा जेमन संगी मन हवा जेमन छोटे छोटे उम्र में आंडी बनी के नशा करत हवा। एकर बुरा प्रभाव आज कहीं कहीं हमार समाज में देखे पर मिलत हवा। एला रोके के जवाबदारी केवल एक जन मनखे के नहीं रहे कि कोनो प्रशासन के नहीं रहे, एला रोके के सबसे बड़ी जवाबदारी होते है कि हमार समाज में रहिया जितका भी हमार संगवारी हों, चाहे हम मैं पंचू भाई हो गए, चाहे हमार अंशुल भैया हो गए, चाहे हमार बैसाखू भैया, चैतू भैया, जितका भी हमार संगवारी है सब जन हमारे समाज में रहन और समाज के रहिया हमन मनखे हन। तो हमार जवाबदारी होते कि जितके ज़्यादा हो हमन अपन जौन लैकावन नशा के क्षेत्र में आगे बढ़ाता हुआ ओला हमन रोक सकी। और अपन जानते हवा सहकारिता के मतलब ये होते कि हमन मिलजुल के काम बुतल करी और मिलजुल के काम बुतल करबो तो तभी हमन समाज के उद्धार करबो, तभी हम समाज ला आगे बढ़ा सकत हन। काबर कि अगर हमन शिक्षा के उद्देश्य अगर हम सही रूप से नहीं जान पाबो तो व्यर्थ हवे। शिक्षा के मूल उद्देश्य होते कि हम समाज ला कौन प्रकार से हमन आगे बढ़ा सकत हन। तो समाज ला तभी बढ़ावो संगवारी हो जब हमन मिलजुल के समाज के हित के तहत, समाज के भलाई के तहत बूता काम ला करबो। जैसे कि सहकारिता के मतलब अभी बताएं कि मिलजुल के हमला काम करना हो, गौर बात तो अपन करबो। आवाज सुनतन संदेश आलो।
1: मैं श्रीमती शेफाली घोष, एक समाज सेविका, आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ। नशे का रास्ता अंधेरा घना, जीवन को कर देता है सुना, करो जीवन में अब नया संचार, सेहत ही है सबसे बड़ा धन, नशे से तोड़ो तुम अपना बंधन, आओ मिलकर एक नई अलग जगाएं, नशा मुक्त समाज का सपना सजाएं। मैं श्रीमती शेफाली घोष, एक समाज सेविका, आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ। नशे का रास्ता अंधेरा घना, जीवन को कर देता है सुना, करो जीवन में अब नया संचार, सेहत ही है सबसे बड़ा धन, नशे से तोड़ो तुम अपना बंधन, आओ मिलकर एक नई अलग जगाएं, नशा मुक्त समाज का सपना सजाएं।
0: तो संगवारी संदेश के पहले हम गोड़ बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपन समाज ला सुघर बना सके, कैसे हम नशा मुक्त बना सके। तो नशा मुक्त तभी बनी संगवारी हो जब हम अपन जन घर में लोग लेकर आए ओला सही रूप से हमन पालन पोषण करी, सही शिक्षा दी। अब कभू भी घर में जो लोग लेकर हवा है मोला अकेला नहीं छोड़ना है, जिसे बाहरी पढ़े बह गए हवा शहर तो वहाँ भी हमला रोजाना फोन करके पूछना है का करत कैसे करत, रोजाना बात करी। कभी हमन जो लोग लेकर है दूरिया

0: पढ़े लिखे करेगा है, ओमन बिल्कुल हमें अकेला नहीं छोड़ना है। ये प्रकार से अगर नियंत्रण हमन अपन परिवार के, अपन पालक के प्रति जवाबदारी निभावत हन, लिखा के प्रति जवाबदारी निभावत हन, तो कहीं न कहीं हमन नशा में अपन लोग लिखल हमन दूर कर सकत हन। बात करी संगवारी हो खरीफ फसल के अंतर्गत, तो हमर किसान भाई मन तो खेती किसानी के बूता काम करत हवे, और खेती किसानी के बूता काम अधूरा थे जब तक हमन अपन घर में गाय गरुआ के पालन नहीं करब तब। अब बरसात के बेरा में कई प्रकार के रोग व्याधि घलो आते, तो रोग व्याधि आते तो संगवारी संशो ये रहते कि कैसे हम लोग को निदान ला पाई के। तो यही क्रम में आज के फोरिन कार्यक्रम हमें बरसात के पूर्व पशु में रोग प्रतिरोधात्मक के टीकाकरण हम कौन प्रकार से करी, पहुना विशेषज्ञ है डॉक्टर रंजना नंदा, पशु चिकित्सालय सहायक संलग्न पशु चिकित्सालय बरतोरी विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर। कार्यक्रम का संचालन करते हमारे संगवारी त्रिलोकी भैया।
1: किसान संगवारी हो, अपन नयारू चैतु भाई के झोंकाओ राम राम जय जोहार। हमर देश भारत ला कृषि प्रधान देश कहे जाते, और हमर पशुधन जौन है ये कृषि के आधार होते। फिर जैसे जैसे बेरा बेरा में मौसम बदलते, हमर पशुधन के स्वास्थ्य में तको बहुत अकन बदलाव देखे पर मिलते। बरसात के शुरू होते गाय भैंस भेड़ छेरी बकरी ये जैसन जन पशु है मन में विशेष रूप ले खुरपका मुंहपका गलघोटू लंगड़ा बुखार निमोनिया पेट मकीरा जैसन अब्बड़ अकन छोटे बड़े बीमारी हो के संभावना बढ़ जाते। अगर ये सब बात के बेरा रहते चेत कर ले जाए तो हमर पशुधन ला हो या बीमारी ले औखर नुकसान ले बहुत हद तक बचाया जा सकते है। तो आज के फोन इन कार्यक्रम में विषय है बरसात पूर्व पशुओं को रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, और ये विषय में आज हम विस्तार ले जानकारी देहे बर हमर बीच हमर पहुना हवे डॉक्टर रंजना नंदा जी, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न पशु चिकित्सालय बरतोरी बिलासपुर ले। तो सबले पहली डॉक्टर रंजना नंदा जी, आज के कार्यक्रम में हमर आकाशवाणी परिवार डहर ले, हमर जम्मू श्रोता संगवारी डहर ले, और चैतु भाई डहर ले आपला राम राम जय जोहार।
2: तो भाई जय जोहार चैतु भाई, और नमस्कार आप सब किसान भाई मनला जो फोनिंग कार्यक्रम के सुना था और सुन था वो मनला भी नमस्कार।
1: तो डॉक्टर साहब, सबले पहली तो हमन आज के कार्यक्रम में ये जानना चाहिबो कि जैसे ही बरसात लगते तब पशु मन में आनी बानी के रोग होए लगते, तो एकर प्रमुख कारण का होते और कौन कौन से प्रमुख रूप से रोग पशुधन में होते, एकर बारे में थोड़कर हमारे संगवारी मनला आप मन बताते।
2: चैतु भाई आप जानता भारत में पशु पशुधन माना गया है, जैसे हमन के पैसा धन है वैसे पशुधन है। चूंकि हमन ला धन ला देखभाल करना जरूरी है, तो पशु मन के धन के देखभाल करे बर सबसे पहली होकर देखरेख करना। देखरेख में अगर आप कोई भी डॉक्टर या कोई भी वैज्ञानिक ला पूछे तो सबसे पहली देखभाल में ही टीकाकरण। तो आप जैसे बोले कि बरसात के पूर्व हम किसान भाई मन ला बताना चाहते हैं का ज्यादा बीमारी होते। बरसात जब बरसात होते तब मौसम में आर्द्रता रहते, आर्द्रता की वजह से बहुत सारा जीवाणु और विषाणु उपने लगते, और चूंकि पशु मन बाहर खाते बाहर पियत है बाहर रेंगत हवे, तो एक वजह से घास मा हवा मा सब मा विषाणु और रोगाणु जो है वो जल्दी से जल्दी पशु के अंदर आ जाते हैं, जेकर वजह से बरसात के पहली सबसे ज्यादा 12 महीने में देखबो तो बरसात के पहली सबसे ज्यादा बीमारी हो के आकांक्षा है हमन के पशु मनला। तो जो पशु मनला बीमारी बरसात के पहली होते ओकरे बर हमन के विभाग के द्वारा जो प्रतिरोधात्मक जो टीकाकरण करे गए है वो है बरसात के पहली के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बरसात के जो टीकाकरण है बरसात के पूर्व, जैसे कि सब भाई मनला पता है गलघोटू के लगते बीक्यू के लगते खुरहा पखा बीमारी के लगते, ये सब बीमारी जो है विषाणु जनित है जेकर वजह से बहुत ज्यादा पशुओं में मौत हो जाते, पशुओं में अर्थव्यवस्था दूध की कमी हो जाते, पशुओं में जो खाए पिए की कमी हो जाते, एक वजह से एक पहली टीकाकरण करना हम सब किसान भाई मनला जरूरी है।
1: ये तो आप मन बहुत बढ़िया बताया हो मैडम जी। हमन यू देखथन के जैसे पानी गिरते तो हरियर हरियर बढ़िया छोटे छोटे कांदी मन जाम थे, पशु मन बड़ा चाव से एक मन के अतिहा चर लेते, तहा कुछ समय बाद देखथन तब पतला गोबर होए लगते और मन अपच हो जा रही थे, तो यह का कारण से होते एक बारे में बताओ ना वेला कैसे बाँच।
2: जैसे चैतु भाई सब लोग पता है कि बरसात के पहले बहुत छोटे छोटे घास उगते छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा, जैसे घास सब अपन बार अपन बरसात जैसे मिलते जैसे इंसान बहुत ज्यादा तैयारी करते खेती बाड़ी के, वैसे पशु मन कीड़ा मकोड़ा भी तैयारी करते हुए आ जाते, और वैसे जो छोटे छोटे पेड़ पौधा घास फूस है वह मना जाते। अब हमन के पशु मन तो नादान है, ओ मन जे मन ला चारा

0: समझ के खाते हो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रही थे जैसे जला हमन कही था वर्म्स कृमि वो पशु मन खाते तो ओकर वजह से वह ओकर पेट में चले जाते। अब पेट में जाते तो वह आना प्रकार के रिएक्शन करते जेका फल स्वरूप निकलते लूज मोशन या फिर डायरिया हो जाते, चार प्रकार की बीमारी हो जाते। एक बार हमारे अपन किसान भाई मन ला कही था कि भाई बरसात में जो गाय मन ला अपन खोलता तो सोच समझ के खोले करा, जहाँ भी चारा गाँव में ही चरा गाय ला चराना चाहिए, जहाँ के जो चारा है वो खाए लायक हो। एक वजह से बरसात के पूर्व जो बीमारी होते वह 80% पूरे साल भर में जो बीमारी होकर होते 80% ज्यादा हमन के पशु मन सफर करते।
1: ये जानना चाहिए डॉक्टर साहब, टीकाकरण होते पशु मन में बरसात के पूर्व तो कतेक दिन पूर्व के बाद कतेक दिन पहली टीकाकरण होना चाहिए और कौन कौन से टीका बरसात के पहली होते?
0: ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। एमा सबसे पहली तो बरसात के पहली हमन ला टीकाकरण बर किसान भाई मन ला और विभाग ला दोनों ला तैयारी करना पड़ते।
1: फोनिंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है संगवारी, कौन बोला था कहाँ ले बोला था जी आप मन?
2: मैं विनोद यादव बोला था धरास ले भैया।
1: विनोद भाई बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे ये कार्यक्रम में। आप मनन रखे है गरुआ गाय का?
2: हाँ रखे हैं, पशु में जो अभी बरसात में जो बीमारी लगते है बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा। जैसे कि बीमारी होते पशु में गलघोटू और लक्षण हवा सांस ले में तकलीफ जाते घर घर आवाज आते उखर पेट फूलते लार बैठे और एक टंगी रोग वो ऐसे होते उखर लक्षण एक है उखर एक टांग में दर्द रहते गर्म हो जाते भारी भारी लगते सूजन लगते में दर्द रहते वो लंगड़ा लंगड़ा की घिसल घिसल मतलब पैर लंगड़ा चलते ऐसे नहीं। और उखर एक ठो हवा सरसा रोग होते जला सर्रा भी कहते ये रोग खून जनित प्रोटोजोआ जो परजीवी से होते है एखर लक्षण हवा के रुक रुक के तेज बुखार आते अधिक कमजोरी हो जाते शरीर पेट और पैर में निचले हिस्सा में खरसूजन आ जाते। इस सब चीज के उपाय जानना चाहता एक ठहर रोग दो ठहर रोग बता था मैं भवरी रोग कथे जेला एक लक्षण होते पशु गोलवा गोलवा घूमते उमा मस्तिष्क का रीण में परजीवी कारण होते पशु चक्कर घला आ जाते गिर जाते कभी कभी भवरी भवरी होते लिपी जेला हमन पेचिस होते कि ठन पतला दस्त होते उखल लक्षण है पशु के मतलब दस तक साथ में खून आते बलगम आते यह संक्रमित पशु के संपर्क में आए घला हो जाते और बरसात के हरा भरा घास चारा खाते तब हो जाते। ये सब के जम्मो बीमारी के ठोकन उपाय बताता फोरिया के सुगर
1: विकट कन बीमारी के बारे में जानता था विनोद भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है डॉक्टर साहब मन बताते बढ़िया चित लगा के सुनिया है ना।
0: नमस्कार भाई, आप तो बहुत अच्छा जानकारी रखता बीमारी आप जतका कन बताया सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है जेकर वजह से पशु बहुत ज्यादा प्रभावित हो। तो जैसे चार पांच प्रकार के आप बीमारी बताए ओकर तो पहली मैं गलघोटू और लकड़ा बुखार जो आप बीक्यू बोले है ना वो दोनों के बताओ ओकर को सबसे ज्यादा उपाय आप जानता है अच्छा यादव आप दूध पाला था तो टीकाकरण जो कि आज हमारे टॉपिक भी है एकर कोई उपाय नहीं है। अगर बीमारी हो गई है तो पशु ला बचाना मुश्किल 90% तक मतलब मौत के मृत्यु के करीब में आ जाते हैं, लेकिन एक बचाए के उपाय वो है टीकाकरण। जैसे कि अब भारत सरकार के द्वारा जारी ये टीकाकरण है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है गलघोटू के और लकड़ा बुखार के बीक्यू के। तो पहली तो भाई आप जाना था किसान भाई की पहली दोनों के टीका अलग अलग लगे, पहली हमारे किसान हमारे स्टाफ मन आवे तो पहले HS के लगावे फिर BQ के लगावे, लेकिन अभी बहुत अच्छा वैज्ञानिक प्रतिधि से दो प्रकार के लगे हैं दोनों एक एक में लग जाते। आप एक एक टीका लगाना है एक बार लगाना है साल में बरसात के पहली और दोनों के इफेक्ट करी गलघोटू के और लकड़ा बुखार के। अब जैसे आप बोला कि गलघोटू मतलब HS हेमरेजिक सेप्टिसेमिया ये जो बीमारी है यह तो इतना खतरनाक बीमारी है कि एमा प्रायः यह जीवाणु से होते और मृत्यु दर एक 80% मानथन हमन 80% मतलब 100 गायला हो ही तो 80 गायला बचाना मुश्किल है
2: और एक संक्रमित बीमारी
0: संक्रमित बीमारी है और आर्द्रता और नम्रता से जो नम अवस्था रही थे ता ए जो विषाणु है पनप थे जैसे कि बरसात के पहली जब बरसात के पहली आर्द्रता आ जाते मौसम में एक वजह से फैलते है। चूंकि हमन के छत्तीसगढ़ हो या भारत के कहीं भी हो पशु लोग खोल दिया जाते अब खोल देते तो एक पशु में अगर प्रभावित है तो पूरा के पूरा गाँव प्रभावित हो
2: पशु के संपर्क पशु आ जाते हो जाते पहले
0: तुरंत हो जाते और यह जैसे हमन के माँ जब हो रही कोरोना जैसे एक से दूसरा फैला वो कल ले भी जल्दी फैलने वाला बीमारी है। और चूंकि इंसान में तो मास्क लगा सकत हन एक दूसरे ला टच नहीं करन लेकिन पशु में तो इससे जानकारी नहीं है पशु मन ला तो अतका जल्दी फैलते कि एकर सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय टीकाकरण जो कि अभी अभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलत है 1 जून ले चलत है और अभी आप चाह के अभी अगर लगे नहीं हुई तो लगा ले वो अभी चलते है एकल जो लक्षण
2: सब ढो डॉक्टर मतलब जानकारी हो है पशु चिकित्सा

0: हाँ पशु चिकित्सालय जो आपके निकटतम पशु चिकित्सालय है ओमा आप बोला और बोला गलघोटू लकड़ा बुखार के HSOBQ के। वैसे तो हमारे विभाग के नियम है कि दरवाजे से दरवाजा डोर टू डोर वैक्सीनेशन करना कंपलसरी है, लेकिन आप किसान भाई मन के बहुत बड़े गलती है जो लोग मैं बताना चाहता हूँ रेडियो के माध्यम से कि पशु आप मन सुबह ले छोड़ देता और हमारे स्टाफ जब जाते हमारे जो अधिकारी कर्मचारी मन टीका लगाए जाते तो पशु में रहे नहीं
1: घर में नहीं रहे
0: घर नहीं रहे और आप मन भी इतना बिजी हो जाता अपन खेती बाड़ी काम पढ़ाई लिखाई में कि बता नहीं पावा कि अगर एक पशु भी छूटा थे तो वो गांव में कोई लगाए के महत्व नहीं है। कवर की जो वैक्सीन हम लगाता वो आर्टिफिशियल तरीके से बने हैं और जो विषाणु फैलाते बीमारी वो नेचुरल है, तो आप जानता जो नेचुरल बने हैं जो भगवान के द्वारा बनाए गए वो जल्दी फैली। तो टीकाकरण अगर 100 में लगे और 2 जानवर छूटे तो 2 जानवर हो 100 जानवर फैला सकते हैं, टीकाकरण के फेल्योर आ जाते
1: हैं। तो ये करते कि ऐसे ध्यान देना है कि कोठी पशु है छूटे सब लग जाए टीका
0: लग जाए और बढ़िया एक गांव में एक गांव से दूसरा गांव भी पशु ज्यादा मत जाए बरसात के टाइम में खासकर। कब्र की वैसे भी जाने के कोई औचित्य नहीं है, कब्र की बरसात में हर गांव में घास फूस सब खाना पानी मिला थे। किसान भाई मतलब ये चीज के जागरूकता आना है कि कम से कम बरसात के पहले अपन पशु मतलब बांध है टीकाकरण लगवाए और एक भी जानवर छूटी तो गाँव के कोई महत्व नहीं है गाँव में टीकाकरण के। जैसे कि हमन कहीं 4 से 6 महीने के जो भी पशु है ओला आप गलघोटू के टीकाकरण लगवावा और टीकाकरण लगाए के 15 दिन पहली डीवर्मिंग यानी कृमि नाशक दवा देना जरूरी है और टीकाकरण के 4 दिन तक आप मन बाहर मत छोड़ा
1: बांध के रखा
0: कम से कम 2 दिन। जैसे कहते हैं ना कृत्रिम गर्भाधान कराए के भी बाद 1 या 2 दिन छोड़ना चाहिए। काबर की जो हम करथन वो आर्टिफिशियल है चाहे टीकाकरण हो चाहे कृत्रिम गर्भाधान हो, लेकिन जो नेचुरल होते चाहे वो नेचुरल सर्विस में आए या नेचुरल बीमारी विषाणु के द्वारा हो वो जल्दी पकड़ते आर्टिफिशियल से। तो किसान भाई मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि 5 दिन जब बंधुआत जब टीका लगाते होकर 2 या 3 दिन तक कम से कम पशु ला बांध के रखना चाहिए।
1: भौरी रोग के बारे में थोड़ा बताता, गोल गोल चक्कर चक्कर घूमते।
0: हाँ वही भौरी रोग जैसे मैं कहता हूँ ट्रिपैनोसोमैसिस कहते तो बेबेसियोसिस ये सब जो है ना प्रोटोजोन डिजीज है, मतलब एक अभी वैक्सीनेशन टीकाकरण नहीं आए हैं। सिर्फ एक जो हुमा गोल गोल घूमते वो थलेरिया बीमारी है ओकर टीकाकरण है वो साल में 1 बार लग, लेकिन वो हर सरकारी उपलब्धता नहीं आए होकर सरकार के तरफ से नहीं मिला, आप प्राइवेट वाला लगा सका था वो साल में 1 बार लगी। बरसात के दिन में भैया सबसे पहले जो आप बोला था
1: हरा चारा खाते नया नया चारा आते बरसात के बाद
0: तो भैया वो चारा देखिए क्या होते है जब ज्यादा हरा चारा जैसे आप मन हमन इंसान मन ज्यादा भाजी खाबो गैस होते ना हमन ला, तो जो पत्ता वाला जो सामान है जैसे पत्ता गोभी हो गए भाजी हो गए वो खा ले हमन ला जैसे लूज मोशन गैस होते वैसे पशु मन के अगर पशु हरा चारा खाते ज्यादा जितका वाला खाना चाहिए ओकर लिए अगर थोड़ा सा भी ज्यादा खाते तो वह जल्दी से शरीर में पचे नहीं मतलब जो ओकर रूमेन रेटिकुलम में जो कृमि है जो अच्छा कृमि है जो अच्छा बैक्टीरिया है वो वाला पचा नहीं पाए और पचा नहीं पाए जेकर वजह से ज्यादा गैस बनते अमोनिया गैस बनते और लूज मोशन गाड़ी पशु मन लो होने लगते। और दूसरा कारण ये है कि जैसे पैरा भी देता ना मन बरसात में तो जो पैरा में फंगस लग जाते आप मन ला नहीं दिखा है कबर की बरसात में इतना नम्र आद्रता रही थे अमन थे मौसम में जेकर वजह से जो पैरा आप दे था ओमा फंगस लग जाते थोड़ा बहुत दिखा है नहीं जेकर वजह से आप लोग खाना दे देता और वो फंगस जाके अंदर में रिएक्शन करते और इन्फेक्शन बढ़ाते जेकर वजह से डायरिया हो जाते। बरसात के देख रेखा जितका जरूरी गर्मी में और ठंड के देख रेख उतना जरूरी नहीं जितका जरूरी बरसात के, कबर की बरसात के देख रेख में पशु मन तो अब जाना नहीं कतका खाना है कैसे खाना है। आप मन सुबह ले छोड़ देता 8 बजे ले 3 बजे तक गाय बाहर चरा थे और वो खाते जाते हरा चारा उपलब्ध है मेरे, तो जेकर वजह से सब होते तो आप मन लभी पशुओं पर व्यवस्था करना पड़ी रोड में मत जावा पशु हरा चारा ज्यादा मत खावा घास फूस ज्यादा मत खावा। 10 घास उगा थे ना 10 में से सिर्फ 4 घास ऐसे है जला पशु खा सकते है और 6 घास ऐसे है जला नहीं खाए। और खेती बाड़ी चालू हो जाते जब फर्टिलाइजर आप क्या क्या डाला था यूरिया डाला था या कीटनाशक डाला था ओहूला चाट लेते जो घास फूस डाला थे ओकरो वजह से बहुत ज्यादा बीमारी पशुओं में आते खासकर पाचन संबंधी जो थे वो एक वजह से आते।
2: तो विनोद यादव जी बहुत बढ़िया आप मन के प्रश्न रही से और बहुत अकन प्रश्न रही से बड़ा जागरूक किसान हो पशुपालक हो आप मन और आज आप मन के जतका कन जिज्ञासा रही से समस्या रही से ओकर बड़ा बढ़िया ढंग ले हमारे डॉक्टर साहब मन समाधान करीन है ऐसे हमला लगत है। लोगन मन ला भी आप जागरूक कराओ लोगन मन ला बतावा के बताहा आप कतका कन प्रश्न करे है कतका कन बढ़िया जवाब मैडम दई से है ना फोन करे आज एक बार आपला बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब अपन बहुत बढ़िया बतात रहो हमार संगवारी मन बहुत अकन प्रश्न एक संग पूछे रही से। फोनिंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है संगवारी, कौन बोला था कहाँ ले बोला था जी आप मन?

0: हाँ भैया मोर माया भरे राम राम।
1: राम राम भैया, राम राम।
0: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
1: नारायण प्रसाद वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के आज के कार्यक्रम में।
0: हाँ भैया, जैसे अभी कहा भैया खेती किसानी में लगे हैं, तो हमारे खेती किसानी काम तो पूरा हो गए है। और जैसे ही पानी गिर ही तो खेत के बुआई करबन भैया। तो लेकिन आज मैं डॉक्टर साहब ने पूछा था, जैसे खेत के हम तैयारी करे है ना, वो कर देखभाल करबोन वैसने टाइप के भैया, ये बरसात के पहली हमर में पशुधन घलो हवा, तो बरसात के पहली एकर देखभाल करना बहुत जरूरी है भैया। तो यही बात ला पूछे बार मैं डॉक्टर साहब में फोन लगाए हवा भैया, पशुधन के जन है टीका है जन बीमारी है ओकर देखभाल कैसन ढंग ले करी।
1: तो बरसात के पहली कौन कौन बीमारी होते है और कौन कौन से टीकाकरण होते ये जानना चाहता हूँ, यही बात ला डॉक्टर साहब मन आप ला बताते है, चेत लगा के सुनिया।
2: नमस्कार भैया।
0: हाँ नमस्ते दीदी, राम राम।
2: राम राम। तो जैसे टीकाकरण के पशु बरसात के पहली केयर करे के या ध्यान दे के जो होते, जैसे आप मन खेती के पहली करता, तो पशुओं में भी हर मौसम के पहली ध्यान दे के जरूरत होते, तो बरसात के पहली तो सबसे पहले टीकाकरण है। मैं एला पॉइंट वाइज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली तो टीकाकरण, टीकाकरण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 15 दिन पहली ओला कि कृमि नाशक दवाई खिलाना। कृमि नाशक दवाई कोई भी पशु ला खिलाए के बाद ही टीकाकरण के इफेक्ट आते हैं। तो आप मन निकटतम पशु चिकित्सालय से सबसे पहले कृमि नाशक दवाई अपन पशु ला खिलावा, वजन के हिसाब से उम्र के हिसाब से, और वो खिला के 10 दिन में बढ़िया ओकर इफेक्ट आ जाए, ओकर बाद टीकाकरण करे के जो जिम्मेदारी है वो विभाग के है और आप मन के साथ मिल के है। तो टीकाकरण बरसात के पहले जो टीकाकरण करते वो हरे जिसे आप मन जानता गलघोटू, गलघोटू में सब बता दो 4 माह या ओकर ऊपर के जो भी पशु है ओला गलघोटू के टीकाकरण लगाना है। और प्रथम खुराक 4 महीना में लगी, ओकर बाद हर साल या 6 महीना भी लगा सकत हैं। जहाँ जहाँ प्रभावित एरिया है वहाँ 6 महीना में लगते, और जहाँ प्रभावित एरिया नहीं है तो साल में एक बार लगते वो। और साथ में ओकर बाद है लकड़ा बुखार, जेला ब्लैक क्वार्टर के थे, जमा मांस की बीमारी होते, मांस पूरा हवा भर जाते मांस के अंदर और पशु मुश्किल से 24 घंटे के अंदर मर जाते, जो कि ज्यादातर छोटे बच्चों में होते, 8 से लेकर 24 महीना के पशु है गाय या भैंस है वो में होते। तो जो लकड़ा बुखार है वह 6 महीना ओकरो भी 6 महीना या ओकर के ऊपर के पशु ला लगाना जरूरी है, इहू ला साल में एक बार लगाते। तो ये जो टीका है पहली अलग अलग लगत रही, 2 साल ले अभी एक साथ लगते, एक वैक्सीन में आप ला लगाना है, IM लगते जानवर ला बांध के रखना है। तीसरा है खुरहा पखा, खुरहा पखा जैसे आप जानता साल में 2 बार लगते, ठंडी के पहली भी लगाता हमन और थोड़ा बरसात के पहली भी लगाता, जैसे अभी लगाए हैं मई में और अभी जून में लगाते गलघोटू के। तो जो खुरहा पखा है वो हर 6 महीना में लगता है। खुरहा पखा से पशु के मृत्यु तो नहीं हुए लेकिन फिर भी ओमा जो उत्पादकता है ओकर वह 100 में से 100 अगर है तो वह 50% तक कम हो जाते। ये तीनों टीकाकरण विभाग के द्वारा लगाया जाते, फ्री में लगाया जाते, आपके घर तक पहुंच के लगाया जाते, जेकर वजह जेला आप मन जागरूक होना है कि पशु ला बांध के रखना है। ओकर अलावा जो एक और वैक्सीन लगाते जो सिर्फ मादा में लगते वो बरसात में, बरसात के पहले भी लगा सका था या बरसात के बाद भी लगा सका था, वो है ब्रुसोलोसिस। ब्रुसोलोसिस जो टीकाकरण है वो 4 से 8 महीना के जो मादा अवस्थ है ओमा लगते, ताकि जिंदगी भर किसी प्रकार के बच्चा से संबंधित ओमा प्रॉब्लम ना आए। ये जो टीकाकरण है ये टीकाकरण भी आप पशु चिकित्सालय जाके अपने से बोल के लगा सका था कि भाई मोरे यहाँ बच्चिया पैदा हुए है 4 महीना के है 5 महीना के है, जिंदगी में एक बार लगने वाला टीका है वो टीका लगा देवा, तो हमें लगावो तो जो भी आपके जो गर्भपात होते 5वां महीना 4वां महीना 3रा महीना में ये गर्भपात पशु ला बचा सका था। तो एक थैले रस्सी से जमा गोल गोल घूमते और खून निकलते पीछे ले नाक ले ओकर भी टीकाकरण जिंदगी में एक बार लगते प्राइवेट में लगते उहुला आप लगा सका था। और वह ज्यादातर विदेशी और संकर नस्ल में होते, तो हमारे देसी गाय जैसे गिर साहिवाल एमा कम है। जो टीकाकरण है भैया टीकाकरण लगाए पर आप लग जागरूक होना, और अभी टीकाकरण चला थे विभाग द्वारा पशुधन विकास विभाग द्वारा 1 जून से लेके 30 जून तक।
0: धन्यवाद भैया, डॉक्टर दीदी भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और जाके पशु चिकित्सालय में जाके बताना है कि हमें टीका लगाना है करके,
3: ये तो सुंदर जानकारी दिया कल ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप भी।
2: धन्यवाद भैया,
3: आज के जिन कार्यक्रम आकाशवाणी ये कार्यक्रम परोसित ओकरो लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई जय जवाहर राम राम।
1: तो संगी हो आज के फोनिंग कार्यक्रम के बेरा यही सिरावत है, और आज फोनिंग कार्यक्रम में हमन गोट बात करें बरसात के पूर्व पशुओं को रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण के बारे में, ये विषय में आज बहुत सुग्घर ढंग ले सारगर्भित ढंग ले जानकारी हमन ला दिहिन हमर पहुना डॉक्टर रंजना नंदा जी, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न पशु चिकित्सालय बरतोरी बिलासपुर ले। एकर पर हमर डॉक्टर साहब ला आकाशवाणी बिलासपुर परिवार

0: डहर ले और हमारे किसान भाई मन डहर ले बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमला तकनीकी सहयोग दिहीन सौरभ केसरवानी और एकरे संगे संग चैतु भाई लदा विदा। राम राम, जय जोहार।
1: संगवारी हो, अभी हम सुनत रहे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। विषय रिसावे बरसात के पूर्व पशुओं में प्रतिहात्मक टीकाकरण। पहुना रिसावे डॉक्टर रंजना नंदा, पशु चिकित्सालय सहायक संलग्न, पशु चिकित्सालय बरतोरी, विकासखंड बिल्हा, जिला बिलासपुर के। आओ सुनतन संदेशा।
2: अरे सुन तो।
3: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
2: किसको?
3: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
2: अच्छा ये बात है?
3: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
2: अब तो झट से बात हो जाती है।
3: ऐसा क्या?
2: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड कर

0: सहायक संलग्न पशु चिकित्सालय बरतोरी विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर के आव समर्थन संदेशा।
1: अरे सुन तो।
2: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
1: किसको?
2: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
1: अच्छा ये बात है।
2: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
1: अब तो झट से बात हो जाती है।
2: ऐसा क्या?
1: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
2: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
1: हाँ।
2: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
3: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछ ना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: संगवारी हो, यही कार्यक्रम संग पंचु बिला देव विदा। जय जोहार, राम राम। किसान उड़ी के प्रायोजक हिसाब से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला सभा।

0: देश का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र में स्थित है। यही कारण है कि हमारे देश में विविध प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु, जलवायु और प्राकृतिक संपदाएं देखने को मिलती हैं। सखियों, हम बताना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। सखियों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दुनिया के उन भागों को कहा जाता है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। भारत का एक बड़ा हिस्सा भी इसी क्षेत्र में आता है, जहां घने वन, औषधि पौधे और अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारी कृषि, जैव विविधता और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत अधिक बारिश भी होती है। इसी कारण से यहाँ पर हमें जैव विविधता दिखाई पड़ती है और अधिकांश लोग इस क्षेत्र में रहते हैं।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: मैं श्रीमती शेफाली घोष, एक समाज सेविका, आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ। नशे का रास्ता अंधेरा घना, जीवन को कर देता है सुना। करो जीवन में अब नया संचार, सेहत ही है सबसे बड़ा धन। नशे से तोड़ो तुम अपना बंधन, आओ मिलकर एक नई अलग जगाएं, नशा मुक्त समाज का सपना सजाएं।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सखियों, अब आइए चलते हैं आज के क्रम परिसंवाद की ओर। सखियों, नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए हानिकारक है। यह न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी बढ़ाता है। नशे की लत से परिवार टूटते हैं, अपराध बढ़ते हैं और युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। और सखियों, आज के क्रम में भी हम लेकर आए हैं नशे के खिलाफ एकजुट समाज के विषय पर ये चर्चा। और सखियों, इस क्रम के और इस विषय की चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं महिला थाना बिलासपुर से महिला आरक्षक श्रीमती लक्ष्मी नेताम जी और समाज सेविका श्रीमती शेफाली घोष जी। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आकाशवाणी परिवार की ओर से। नमस्कार।
7: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले आप एक बार हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दे देंगे कि आप कितने वर्षों से इस विभाग से या इस कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं।
7: मैं लक्ष्मी नेताम महिला थाना बिलासपुर में महिला आरक्षक के पद पर हूँ, जो कि मेरी सर्विस 16 साल हो चुकी है और फिलहाल मैं अभी सीसीटीएनएस ऑपरेटर के पद पर हूँ।
8: मैं श्रीमती शेफाली घोष, एक समाज सेविका, 30 सालों से ज्यादा मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ और मैं नशा मुक्ति निजात के क्षेत्र में जितना से जुड़ के काम कर रही हूँ।
0: तो जैसा कि आज का हमारा विषय है कि नशे के खिलाफ एकजुट समाज, और वाकई में जब समाज एक साथ एकजुट होगा तो बिल्कुल नशे को हम जड़ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और वाकई में हम इसे हटा कर रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे लक्ष्मी जी आपसे कि नशे के कारण घर और समाज किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, आप बताएं।
7: जो नशे की ये जो लत लगी है नए युवा पीढ़ी में, ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे जूझने के लिए पूरे समाज, पारिवारिक या मोहल्ले में जितने निवासी हैं, सब प्रताड़ित हैं। अब इसे जैसे बोला जाए कि जितने नशे से लत में जा रहे हैं आज के जनरेशन में, नई पीढ़ी हो या जिस वजह से जा रहे हैं, तो ये नशे की जो लत है इसको सबसे पहले मुक्त करना जरूरी है। अब ये कारण जानना भी जरूरी है कि लोग नशे की ओर ज्यादा अग्रसित क्यों हो रहे हैं, तो उसे बचने का या उनसे निकालने का समाधान खोजना चाहिए कि हमें जो को या नई पीढ़ी आने वाले भविष्य में कि समाज को, परिवार को इस चीजों से कैसा बचाए। लत तो छोटी हो या बड़ी हो, धीरे धीरे ही लत की आदत पड़ती है, तो पहले तो उसकी वजह जाने कि बच्चा जो है आज वो नशे की लत की ओर क्यों अग्रसित हो रहा है।
0: तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चे आज उस ओर जा रहे हैं, युवा वर्ग है जो नशे की ओर भाग रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है?
7: देखिए, बच्चे क्या होते हैं कि उनको मानसिक रूप से भी एक माहौल नहीं मिल पाता, माँ बाप से या फिर दोस्त से।

कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाले सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रभा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार, जय जोहार। सखियों, आप सभी कैसी हैं? हमारी आशा तो यही है कि हम सभी सखियां स्वस्थ और मन मस्त होंगी और अभी शाम के वक्त दिनचर्या के कार्यों से थोड़ा रिलैक्स होकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले रही होंगी। सखियों, हमारा भारत देश विविधताओं का देश है, जहां विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, वेशभूषाएं, खान पान और परंपराएं देखने को मिलती है। यही विविधता हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान और शक्ति है। सखियों, भौगोलिक दृष्टि की बात की जाए तो भौगोलिक दृष्टि से भारत देश

0: कि घर का माहौल ही बुरा हो, हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ का माहौल भी ऐसा ही होना जरूरी है। बच्चे की मानसिक स्थिति को देखा जाए तो अगर वो किसी चीजों से उब चुका हो या फिर उनको लगता है कि ये मन में अंदर ही अंदर दबाना किसी भावनाओं को, तब वो क्या करता है इंसान की थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें ऐसा जो उनको आत्मीय सुख देती है, जैसे सिगरेट पी लिए या फिर और उनको लगता है कि ये उनके लिए उचित है, तो वो बातें अपने माँ बाप को या परिवार दोस्तों को ना बता के वो धीरे धीरे धीरे उस लत की ओर बढ़ने लगता है। तो यही कारण है कि नशा एक रूप से दूसरे रूप में ले लेता है और वो दूसरे रूप से लेते लेते वो क्राइम की ओर बढ़ने लगता है, दोस्ती संगति में बढ़ने लगता है या फिर और उससे एक इंसान को लत लगने की आदत जब हो जाती है तो वो बढ़ते बढ़ते गंभीर रूप ले लेती है। तो यही कारण है कि बच्चों को नशीली दवाओं की ओर अग्रसित होते हैं कि हमें इन बातों को न रख के हमें नशे की ओर बढ़ना चाहिए।
1: जी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो अकेलापन भी है, हो सकता है कभी कभी परिवार का माहौल भी अच्छा नहीं रहता है, पिताजी को अगर वो देख रहे हैं कि वो नशा कर रहे हैं या सब कुछ है वो, उसके कारण भी वो उस तरफ भागते हैं बच्चे।
0: कारण तो यही हो सकता है मैम कि अगर उनके पिताजी और पहले से ही वो शराब के नशे में हैं या और कोई अन्य गतिविधियों में नशे कर रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति, घर की माहौल की स्थिति बिगड़ने लग जाती है, जिस वजह से बच्चा वो सब चीज अपने घर की परिस्थितियों को देखते देखते वो उस चीज से अपना भी सीखने लग जाता है कि मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरी माँ उनको कुछ नहीं बोल रही है, समाज उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये चीजें बहुत अच्छी है सोच के एक बच्चा भी उस ओर बढ़ने लग जाता है।
1: तो बहुत जरूरी है इसके लिए कि हम बच्चों के साथ संवाद करें कि उनके जो दोस्तों का माहौल है वहाँ पे कैसे लोग बैठते हैं, कैसा बातचीत है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है जिससे कि बच्चे इस ओर ना जाएं। और हम ये भी जानना चाहेंगे अगर बच्चे नशीली दवाइयों की गिरफ्त में आ गए हैं तो माता पिता को इस बात का पता कैसे चलेगा कि अब बच्चा नशा करने लगा है।
2: जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यदि बच्चा नशीली दवा की गिरफ्त में है तो उनके व्यवहार में और शारीरिक बदलाव, चिड़चिड़ापन, इससे पता लगाया भी जा सकता है। इसको पहचानने के लिए हम उसके व्यवहार को, अचानक से चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है और गुस्सा दिखाना और अपनों से दूर हो रहना और एक कमरे में बंद रहना, एकदम एकांत गुमसुम रहना, पुराने दोस्तों को भी वो छोड़ देते हैं और नए नए दोस्त बनाते हैं, अचानक से उनके कुछ कुछ बदलाव ऐसे हमको दिखने को मिलते हैं जैसा उनकी एक्टिविटीज में कमी, पढ़ाई लिखाई में भी कमजोरी, और पहले बहुत अच्छा था बच्चा पढ़ाई में और स्कूल में बंक मारना, इस प्रकार के हम उनका एक्टिविटीज से हम पता लगा सकते हैं। और दूसरी उसके शारीरिक, जैसा देखते हैं कि बच्चे के लाल लाल आंखें, अचानक से वजन का घटना बढ़ना और नींद न आना, भूख का न लगना, बच्चा रात रात पर जगे रहना और उसको थकावट महसूस होना, इस प्रकार के भी हम उसमें बदलाव देखते हैं। और चोरी की आदत, जैसे घर से कभी कभी पैसे चोरी करना और कीमती सामानों का गायब कर लेना, तो इस प्रकार का हम बच्चे पे देखते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे में किस प्रकार कमियां हैं।
1: जी जी, कहीं वो नशे की तरफ जा रहा है तो ये सब चीजें, अगर वो गलत राह में भी जा रहा है तो हमको इन चीजों से पता चल सकता है।
2: और दूसरी बात है जैसे उनके कपड़े वगैरह अपन कुछ देखे, कपड़े के अंदर में कभी पाइप, रोलिंग पेपर, जैसा अजीब सी कुछ स्मेल या केमिकल का स्मेल हमें अगर सूंघने को मिले तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा कुछ गलत रास्ते पे है।
1: जी जी बिल्कुल, तो ये ध्यान देने योग्य है, अगर बच्चा शुरुआती तौर पे नशे की तरफ जा रहा है तो हम उसे बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर बच्चा नशे की धुत में चला गया है, नशा बहुत ज्यादा करने लगा है, तो क्या उसे हम सही दिशा में ला सकते हैं?
0: हाँ, यह बिल्कुल संभव है प्रभा जी, जैसे कि नशे की लत में पड़े बच्चों को सही दिशा में लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और अपना जो घर का माहौल है उसकी मदद जरूरी होती है। इस मुश्किल रास्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ मुख्य कदम, जैसे बच्चे से गुस्सा होने या चिल्लाने के बजाय शांत मन से बात करें और उनको समझाएं और उनसे कारण जानें कि नशे की लत की ओर क्यों वो बढ़ा है। जैसे कि नशा किसी तरह का चाहे हो, जैसे ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, सिगरेट हो, उनका एक पहला जो कदम होता है इस ओर बढ़ना उनका ही नुकसान होता है। जैसे एक बार लत लगने पर या धीरे धीरे दिमागी, शारीरिक और मानसिक और उनको आर्थिक स्थिति को बराबर कर देता है। इससे निकलने के लिए योग और मेडिटेशन तो घर में जरूरी है। अगर जैसा बच्चा उस स्थिति में भी नहीं सुधर रहा है तब हम आगे और जैसे काउंसलिंग होती है नशा मुक्तियों की काउंसलिंग जहाँ केंद्र है वहाँ ले जा सकते हैं, या फिर उनसे और जैसे पुलिस डिपार्टमेंट श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक बिलासपुर में चेतना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिस चेतना कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो एक नशे से जागना, हमारे जितने बिलासपुर में हैं संबंधित जितने स्कूलें हैं कॉलेज हैं जितने भी अन्य कार्यक्रम हैं उसमें जा जाके बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप नशा की ओर

0: जो बढ़ रहे हैं वो उनके लिए आर्थिक, मानसिक, शारीरिक भी नुकसान है। इससे उनके परिवार, समाज और पूरे सोशल, ये सारे उनकी हानि ही होती है। हमारे यहाँ जा जाके लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि आप उससे कैसे निकले। जैसे चेतना कार्यक्रम है, ये चलाना सिर्फ नशे से दूर नहीं है, उसको उस चीज से निकालना भी जरूरी है
1: जी।
0: धीरे धीरे करके नशे की जैसे लत धीरे धीरे ही शुरू होती है, वैसे धीरे धीरे ही कम होती है।
1: तो इस चेतना कार्यक्रम में जैसे कि आप लोग कैसे उन लोगों को जो नशे करते हैं, तो कैसे आप उन लोगों के पास जाकर क्या क्या कार्य के द्वारा कैसे उनको ठीक करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: जैसे प्रभा जी, गांव में भी अपन कार्यक्रम करते हैं और शहर में भी। तो शहर के कार्यक्रमों में स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई सेंटर्स हो गए, वहां जाके बच्चों को, जितने भी युवा पीढ़ी है, जैसे कोचिंग सेंटर हो गए, वहां जाके हम ये जागरूक करते हैं कि आप अगर नशा की ओर अग्रसित हो रहे हैं, हो सकता है कि बच्चा मानसिक रूप से हो रहा हो, किसी को पढ़ाई की समस्या से हो रहा हो, किसी की घर की परिस्थितियों से हो रही हो, कि कोई अपने घर में जो देख रहे हैं माँ बाप से उनसे सीखता है, तो उनको हम ये समझाते हैं कि आपके आने वाले पीढ़ी आपको सपने की ओर भागना चाहिए। आपको जिस उम्र में अपने सपने की ओर भागना चाहिए उस उम्र में आप नशे की लत में ना जाइए, आप वहां से वापस आइए और अपने सपनों की ओर आगे बढ़िए जी, अपना भविष्य बनाइए और आगे बढ़िए। नशा एक वहीं पे इंसान को स्थगित कर देता है, वहां पे आपका स्टॉप लगा देता है, फिर वो इंसान आगे बढ़ के क्राइम दिमाग की तरफ चलने लगता है। वो नशे की लत के लिए वो उसका एफर्ट कैसे करें, घर में जैसे चोरियों करना, क्राइम बढ़ेगी, और जैसे माँ बाप को हाथ उठाना, कुछ चीजें अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वो मारपीट करना, वो नशे से धीरे धीरे सारी चीजें उत्पन्न होती है, अपराध बढ़ता है उससे। तो उस चीजों को रोकने के लिए सबसे पहला मुख्य काम है कि अपना नशा मुक्त करना। तो यही चेतना के कार्यक्रम के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर के द्वारा यही चलाया गया है कि क्राइम को रोकना है तो सबसे पहले नशा को रोकना है। तो चेतना के तहत ये जागना है और जागने के लिए नशा मुक्त करना है। तो हम लोग शहर में भी जाके लेडीजों को, उनकी संबंधित थाने जितने क्षेत्र हैं वहां पे जाके लोगों को समझाया जा रहा है कि आप नशे से दूर रहें, और अगर जो नशे से दूर रहना चाहता है तो उनकी काउंसलिंग कराते हैं कि आप आइए उस काउंसलिंग में सम्मिलित हुई और उस नशे के द्वारा ही आपको उस चीज से धीरे धीरे निकाला जाएगा। अब गाँव में क्या होता है कि सारी लेडीजों को बैठ के समझाया जाता है कि आपके घर में अगर कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही है नशे के विरुद्ध, तो उसमें हम सारी लेडीजों को ये समझाते हैं कि आपके घर में अगर कोई घटना हो रही नशे से, या उनके हस्बैंड हो गए या फिर बेटा हो गया जो शराब का सेवन या अन्य कोई सेवन मादक पदार्थ का यूज करते हैं, तो उनको पूरे गांव में बैठा के लेडीजों के द्वारा उनको समझाया जाता है कि आपके इस एक गलती से पूरा माहौल, पूरा समाज, पूरा गांव दूषित हो रहा है। तो उनको बारीकी से समझाया जाता है, उन्हीं लेडीजों के द्वारा पूरी रात में गश्त कराए जाते हैं। अगर कोई किसी के यहाँ कुछ गलत अनहोनी हो रहा है तो आप जाइए वहां पे बैठिए और बात करिए, आपको उसी मसले में होना है कि आगे ये बढ़ सकता है, मारपीट पे भी आ सकता है कि हस्बैंड पी के आ रहे तो अपनी पत्नी को मार रहे हैं या फिर अपने बुजुर्ग माँ पिताजी को मार रहे हैं। तब वहां से इस चीज को काउंसलिंग करा के सबको समझा के गांव-गांव में जाके इस चीज को रोका जा रहा है नशा मुक्त में, चेतना कार्यक्रम के तहत।
1: कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों के बीच मजाक मजाक में ही बच्चे नशीली दवाइयों के गिरफ्त में आ जाते हैं, यानी दोस्तों के कहने पर ही, जोर देने पर बच्चे नशीली दवाइयों का सेवन करने लगते हैं। तो क्या एक बार ही नशा करने से क्या उनमें नशे की लत लग जाती है?
2: एक बार अगर नशा करे तो नशे की लत दिमाग, शरीर में तुरंत नहीं लगता है, धीरे धीरे अगर वो नशा अगर करने लगे तभी उस नशे की लत में बच्चा आता है।
1: तो काउंसलिंग जैसे कि आप लोग करते हैं तो उसके द्वारा उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, आप बताएं।
2: कई सालों से हम लोग नशा मुक्ति निजात पे काउंसलिंग भी कर रहे हैं। कई नशेड़ी लोग, जिन लोग खुद ठीक होना चाहते हैं, वो ये लोग आते हैं, सुधरना चाहते हैं, मगर हम लोग उनको पूरा ग्रेजुअली, जिस प्रकार से लोग धीरे धीरे नशे की लत में उन लोग आगे आए हैं, उसी तरह ग्रेजुअली उनको धीरे धीरे कम करने के लिए बोलते हैं। एक हफ्ता तक उन लोग अपने ऊपर किस प्रकार अनुभव कर रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार उनको लगता है कि कमजोरी है, तो उसमें हम लोग हॉस्पिटल से जाके डॉक्टर से सलाह लेने के लिए बोलते हैं। उनको लगता है कि कुछ नशा हम करें तो हम लोग कुछ, जैसा कहना चाहिए, बिही का पत्ता मुंह में लेके उसको चबाते रहो या कुछ लौंग इलायची मुंह में रखो, इस प्रकार का बोल के उनको कम से कम लेने के लिए कहते हैं, तो ताकि वो ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे अगर कम करेंगे तो फिर नेक्स्ट वीक आके फिर वो हमसे मिलते हैं, फिर कितना कम किए वो खुद बताते हैं, फिर धीरे धीरे करके एकदम से टोटल बंद नहीं किया जा सकता है। और जितने भी नशेड़ी लोग हैं आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करो, टोटल बंद मत करो। तो इस प्रकार से कई परिवार सुधरे हैं और हम लोग उसमें जो काउंसिलिंग किए हैं उसमें काफी लाभान्वित हुए।
0: देखिए प्रभा जी, आपको

0: देखने में सुनने में आया है कि सड़क दुर्घटनाओं से मौत ज्यादा हो रही है। तो सड़क दुर्घटनाओं से मौत ज्यादातर आप ड्रिंक ड्राइव में देखेंगे। हमारे पास जितनी केसेस आती हैं ड्रिंक एंड ड्राइव ही होते हैं, चाहे वो सामने वाला पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, पर एक पक्ष तो से की हालत में ही रहता है। और जितनी भी अभी 90% जो अभी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो नशे से ही है। लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि आपका जीवन आपके लिए बहुत अमूल्य है, तो उसको देखते हुए हम यह चाहते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में जितने चलाए जा रहे हैं, अपने चेतना कार्यक्रम के द्वारा जितने चलाए जा रहे हैं, अगर उस नशा मुक्ति से हमें लाभ मिल रहा है तो वो लोगों को भी मिल रहा है। हमें आज देखेंगे कि एक्सीडेंट से जितने हमने देखे मौतें हो रही हैं, तो उससे उनका खुद का तो नुकसान हो रहा है, परिवार का भी नुकसान हो रहा है। तो अहम कारण है आपका नशा। तो आप ये नशा से जितने दूर रहेंगे आप दुर्घटनाएं से बचेंगी। यही है, हमको जागरूक करना है लोगों को, ये युवा पीढ़ी को, आगे भविष्य में आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको ऐसी सोच देंगे जिससे किसी भी नशे से ज्यादा कीमती इंसान के जीवन हो और उसके सपने।
1: बहुत ही आवश्यक है कि हम सभी नशे के प्रति और नशे में जो लत लगी है जो युवाओं को, लोगों को, उसे दूर करना, उन्हें जागरूक करना। हमारे आज का विषय भी यही था कि हम एक साथ जुट होकर, एक समाज जुट होकर नशे से लोगों को दूर रखें।
0: जी जी जरूर मैम।
1: लक्ष्मी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चा अगर खुद अच्छा होना चाह रहा है तो क्या उपाय है जो उन्हें हम सही दिशा दे सकते हैं?
0: देखिए प्रभा जी, ये आपने सही सवाल किया मुझसे कि अगर कोई बच्चा अपने से सुधारना चाह रहा है, या तो वो माँ बाप के साथ ही रह के वो सुधर सकता है, बट अगर उसको वो लत एकदम से बहुत ज्यादा लग गई है जिसके वजह से उसको चाहता तो है पर वो छोड़ नहीं पा रहा है, तब ऐसे कंडीशन में या तो नशा मुक्ति अभियान जहाँ चल रही है या फिर केंद्र बने वहां जाके अपनी काउंसलिंग कराए, और वहां से धीरे धीरे करके किसी भी नशे की लत, चाहे किसी भी चीज की नशे की लत हो या किसी चीज की लत हो, वो एकदम से नहीं छूटती है, धीरे धीरे धीरे धीरे ही छूटती है। तो माँ बाप को भी ये चीजें समझना चाहिए कि किसी नशे की लत को उनको जाके काउंसलिंग पे ही धीरे धीरे छुड़ाए, किसी चीज को खाने से रोके ना, टोके ना, उनको एक कदम उनका हाथ पकड़ने की जरूरत है, उसको एकांत ना छोड़े। ये चीजें हो सकती है धीरे धीरे नशा का, यही अच्छा है कि छोड़ दें अपने से। हमारे यहाँ सर के द्वारा जो चेतना कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें लोगों की काउंसलिंग कराई जाती है कि वो नशा से दूर रहे, और अगर वो छोड़ना चाहते हैं स्वेच्छा से तो उनकी बारीकी से काउंसलिंग की जाती है कि धीरे धीरे वो नशे से दूर हो जाए।
1: जैसे कि युवा पीढ़ी है जो, उनको नशे से रोकने के लिए समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: समाज की भूमिका तो ये होनी चाहिए कि छोटे छोटे मुक्ति के लिए केंद्र खोलने चाहिए, जैसे युवा पीढ़ी को बिजी रखा जाए, चाहे वो स्पोर्ट एक्टिविटी हो, बॉडी एक्टिविटी हो, या किसी गेम में को, या तो लाइब्रेरी में पढ़ाया जाए, कुछ अच्छी चीजें, ज्ञानवर्धक चीजें सिखाई जाए, गेम्स में हो गया क्रिकेट खिलाए या फिर वॉलीबॉल खिलाए, या फिर और उनकी जो मानसिक वो नशे से दूर रखे, जितना आज के डेट में बच्चों को उनकी एक्टिविटी से मानसिक जो बोलना चाहिए शांति मिलना चाहिए वो एक्टिविटी कराया जाए।
2: एक तो जागरूकता अभियान सामाजिक संगठनों और निजी समितियों द्वारा स्कूल, कॉलेजेस और मोहल्लों में नशे से दुष्परिणाम और नियमित सेमिनार और वर्कशॉप नियमित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि नशा से बच्चे मुक्त हो सके और मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि, जैसा युवा में तनाव, डिप्रेशन में है तो उसे तुरंत काउंसलिंग और मेडिकल की सुविधा देने, समाज को मदद करनी चाहिए। खेलकूद और सृजनात्मक गतिविधियां जैसे युवकों की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए खेल का मैदान और कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए। समाज में मिलकर नशा मुक्ति केंद्र की उपलब्धता और वाहन इलाज और सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद भी करना चाहिए।
1: लक्ष्मी जी और शेफाली जी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है कि किस प्रकार से नशे से बच्चों को, युवाओं को बचाया जा सकता है और एक अच्छा भविष्य उनका बनाया जा सकता है, और नशा मुक्ति से पूरा परिवार खुशियों से जी सकता है। और आप चलते चलते हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी लक्ष्मी जी?
0: मुझे ये लगता है कि नशा मुक्ति की जो शुरुआत है ना, वह डर से नहीं बल्कि एक अच्छी समझ और सूझबूझ से होती है। जब युवा अपने सपनों की और अपने लक्ष्य की और अपनी आदतों से बड़ा समझने लगे, तब बदलाव अपने आप शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला बदलाव है कि खुद को बदलना। तो अगर कोई युवा पीढ़ी वहां पे शुरुआत हो चुकी है तो अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। वो फिर अपने नशा से अगर दूर होते जाएगा तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा।
1: जी बिल्कुल।
0: आकाशवाणी बिलासपुर के माध्यम से मैं सभी महिलाओं और युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कोई नशा से जूझ रहा हो तो उनको नशा मुक्ति केंद्र संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में या फिर संबंधित थाना क्षेत्र जो आपका पड़ता है वहां जाके एक बार काउंसलिंग जरूर कराएं, ताकि लोग जागरूक हों। हम चाहते ही हैं कि नशा जितनी जल्दी कम हो तो अपराध भी उतनी ही कम होगी। जैसे आपको अगर सुविधाएं के लिए आप थाना नहीं जाना

0: चाहती हैं, तब आप पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल 112 या फिर आप 100 नंबर पे कॉल करके आप सूचना दे सकते हैं कि हमें नशा से मुक्त होना है, या फिर संबंधित आसपास में जो नशेड़ी हैं, जो वहाँ पे थोड़ा सा अपवाद मचा के रखे, आप उनके संबंधित में जानकारी दे के हमें अवगत करा सकती हैं। और आप जो स्थानीय लोग हैं या फिर महिलाएं हैं, आप हमारे पास थाने आइए, हम आपका पूर्ण रूप से आपकी मदद करेंगे।
1: समाज को नशे से मुक्ति के लिए हम संदेश देना चाहेंगे कि नशा सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार और समाज को तबाह करता है। इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर एक ऐसी सोच बनानी चाहिए जहां नशे से दूर रहना और शान और सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाए। नशेड़ी को अपराधी नहीं बल्कि रोग समझकर उन्हें सुधारना और मौका देना चाहिए।
2: जी बिल्कुल जी, और बिल्कुल आशा है हमारी कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो बिल्कुल नशे की लत को धीरे धीरे करके दूर करेंगे। शेफाली जी और लक्ष्मी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दी है नशा मुक्ति को लेकर के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: सखियो, अभी आप सुन रहे थे क्रमपरि संवाद में लक्ष्मी नेताम और शेफाली घोष को। विषय था नशे के खिलाफ एकजुट समाज। प्रस्तुति थी मोनाली ठाकरे की।
1: मैं श्रीमती शेफाली घोष, एक समाज सेविका, आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ। नशे का रास्ता अंधेरा घना, जीवन को कर देता है सुना, करो जीवन में अब नया संचार। सेहत ही है सबसे बड़ा धन, नशे से तोड़ो तुम अपना बंधन, आओ मिलकर एक नई अलग जगाएं, नशा मुक्त समाज का सपना सजाएं।
2: सखियो, अब आइए आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है भूल भुलैया फिल्म से। गीतकार हैं समीर, संगीत है प्रीतम का और स्वर है श्रेया घोषाल और MG श्री कुमार के।

सखियो, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। कार्यक्रम चिट्ठी मिली में हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बिलासपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर है 49, पिन नंबर है 495006। सखियो, आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ईमेल आईडी है patraemail@gmail.com। और सखियो, इन्हीं बातों और गीतों के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रभा कश्यप को। नमस्कार।

कार्यक्रम महिला सभा भी हम सुन रहे थे, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

आज शाम 6:30 से मैच की समाप्ति तक हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। शाम 6:20 पर सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। ये तो थी आज के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

0: कल प्रातः 6:30 पर सुनिएगा खेती के बाद सामूहिक सुझाव होगा जैविक खेती सीजन में अपनाए जाने वाला उपाय विषय पर। वचन स्वर होंगे चित्रलेखा तिवारी के। मेक इन इंडिया विषय पर फ्लैगशिप कार्यक्रम नव विहान सुनिएगा प्रातः 6:45 पर। गांधी चर्चा होगी प्रातः 7:20 पर। सुबह 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम इनसे मिलिए आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुबह 10:00 हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से विशेष भेंटवार्ता। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी को सुनिएगा सुबह 11:00 और शाम 5:00 सुनिएगा हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक बिलासपुर के श्री रजनेश सिंह से बातचीत। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। शाम 5:35 पर सुनिएगा युवा जगत जिसमें आज की बात होगी जल संरक्षण और हमारे दायित्व पर। और होगा क्रम मेरा शहर में छत्तीसगढ़ पीएससी से महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पद पर चयनित आर्यन राठौर से श्रुति साहू की बातचीत। शाम 7:20 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम ग्राम सभा जिसमें बेरा की गोठ में सुनिएगा बदलत पर्यावरण और हमार जीवन संखेती में प्रभाव विषय पर चर्चा। साथ ही फोन इन कार्यक्रम में सुनिएगा पशु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पर पशु चिकित्सालय बरतोरी विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर की पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉक्टर रंजना नंदा से वीरू भैया की बातचीत। साथ ही जानकारी होगी मंडी और मौसम की। मेहदी हसन के गाय गीतों को सुनेगा कार्यक्रम सुगम संगीत में रात्रि 8:00 और 8:15 पर सुनेगा कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं कल शाम 5:05 पर सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक बिलासपुर के श्री रजनेश सिंह से बातचीत। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। आइए अब सुनते हैं छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में बहुमंजिला भवन कोचिंग संस्थान होटल और व्यावसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए जाए मुख्यमंत्री हादीन निर्देश। आज संविधान हत्या दिवस में छत्तीसगढ़ के संग देश भर में आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून के प्रदेश में शून्य लेके 5 बच्चर तक के लयका मल्ला पोलियो के दवाई पिलाए जाए। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में जन सुरक्षा ला ध्यान में रखत हुए बहुमंजिला भवन कोचिंग संस्थान होटल और व्यावसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए के निर्देश दिन। मुख्यमंत्री हा मुख्य सचिव ला राज्य भर में अग्नि सुरक्षा भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था के जांच कराए बर कहिन। एकर तहत सबो जिला में विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाही। ए दौरान भवन के सुरक्षा फायर NOC अग्निशमन उपकरण आपातकालीन निकास बिजली व्यवस्था के जांच करे जाही। मुख्यमंत्री हा कहे है की सुरक्षा मानक के अनदेखी करैया मनु पर नियम के अनुसार कार्रवाई करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक मंत्री JP नड्डा ले मुलाकात करीन। ए दौरान जन स्वास्थ्य औषधि और उर्वरक क्षेत्र के संग आने आने विभागीय विषय में चर्चा हुई। बैठका के दौरान मुख्यमंत्री हा केंद्रीय मंत्री ला जानकारी दीन की राज्य में खाद्य वितरण व्यवस्था ऊपर लगातार

0: निगरानी रखे जावा थे। कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ घलो कार्रवाई करे जाते। संगे संग राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग ला बढ़ावा देवा थे। किसान मनला ए लाभ के जानकारी दे बर जागरूकता अभियान घलो चलाए जाते। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा हा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार और विकास मन के हित में उठाए जावत प्रयास के सराहना करत हुए हर संभव सहयोग के भरोसा दिलाई। एकर पहली काली मुख्यमंत्री हा नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले मुलाकात कर छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास काम और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करी। ए दौरान श्री साय हा छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्थापना के प्रस्ताव घलो राखिन। मुख्यमंत्री हा केंद्रीय बजट में देश में 3 नवा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के घोषणा के उल्लेख करत हुए आग्रह करीन कि एमाले एक संस्थान छत्तीसगढ़ ला दे जाए। उमना बताएं कि छत्तीसगढ़ में दुर्लभ औषधि वनस्पति और जड़ी बूटी प्राकृतिक रूप ले पाए जाते। केंद्रीय मंत्री हा राज्य में करे जा जन कल्याणकारी काम के सराहना करत हुए सहयोग करे बर बात घलो कहीन। नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ले मुलाकात करीन। एबेरा मास संगठन ले जुड़े आने आने विषय के संग प्रदेश के संगठनात्मक गतिविधि के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विद्यार्थी मन ले मुलाकात करके उखर उत्साहवर्धन करीन। ए बेरा मा उमनहा छात्र मनला मुख्य परीक्षा बर शुभकामना दीन। जानबा के मुताबिक यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा मा द्वारिका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 छात्र मनहा सफलता पाए हे। एमाले ज्यादा विद्यार्थी जनजाति ग्रामीण और सामाजिक रूप ले वंचित वर्ग के हरे। नगरी प्रशासन और विकास विभाग हा प्रदेश में सबो नगरी निकाय के मरम्मत और रख रखाव बर 22 करोड़ रुपया ले ज्यादा के आपात निधि जारी करे हे। विभाग डहर ले चालू वित्तीय बछर के पहली तिमाही अप्रैल ले जून महीना बर ए राशि जारी करे गए हे। एकर तहत 14 नगर निगम ला 13.76 करोड़ रुपया जारी करे गए हे। उन्हें 56 नगर पालिका बर 5.18 करोड़ रुपया स्वीकृत करे गए हे। विभाग हा 124 नगर पंचायत बर घलो 3.66 करोड़ रुपया जारी करे हे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ले ले गए विशेष भेंट वार्ता के प्रसारण आकाशवाणी डहरले काली 26 जून के करे जाही। ए कार्यक्रम बिहनिया 10 बजे ले 10:25 तक प्रसारित होही। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहरले तैयार एक कार्यक्रम के प्रसारण छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र ले करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। आज संविधान हत्या दिवस मनाए जाते। ए बेरा मा देश भर मा आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते। ए दिन 25 जून 1975 के लगाए गए आपातकाल के याद दिलाते जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप ले प्रभावित होए रहिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा संविधान हत्या दिवस में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्य के रक्षा बर दृढ़ संकल्पित रहे लोगन मन ला श्रद्धांजलि दिन। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी हा कहिन कि आपातकाल संविधान ऊपर सीधा हमला रहिस। प्रधानमंत्री हा कहिन कि ए दौरान लोकतांत्रिक संस्था घलो निशाना में रहिन। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा सोशल मीडिया में एक वीडियो साझा करत हुए आपातकाल ला भारतीय लोकतंत्र के सबसे काला अध्याय बताइन। उमन प्रदेशवासी मन ले लोकतंत्र सेनानी मन के त्याग और बलिदान ला याद करत हुए संविधान के रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य ला सशक्त बनाए के संकल्प लेके आह्वान करीन। पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून के प्रदेश मा शून्य लेके 5 वर्ष तक के लयिका मल्ला पोलियो के दवाई पिलाए जाही। उन्हें छूटे लयिका मल्ला 29 और 30 जून के मापअप अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाके दवाई पिलाही। स्वास्थ्य विभाग हा बालक मल्ले अपील करे है कि उमन 28 जून के अपन तीर के पोलियो बूथ मा जाके लयिका मल्ला पोलियो के दवाई जरूर पिलाए। राज्यपाल रमेन डेका हा लोक भवन मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया

0: शक्ति जिला के अधिकारी मन के संग चर्चा करके जन कल्याणकारी योजना के जानकारी लेन। राज्यपाल हा जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन ला सबले आगू राखे के निर्देश दिन। उन्हें राज्यपाल हा रायपुर के माना कैंप माई स्थित फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर, सेरेब्रल पॉलिसी गेट लैब और दिव्यांग जनमन बर संचालित महाविद्यालय के निरीक्षण करके वहां उपलब्ध सुविधा के जायजा लिन। ए दौरान ओमन हा दिव्यांग जनमन ला ट्राई साइकिल घलो दिन। वरिष्ठ आईपीएस बद्री नारायण मीणा ला बस्तर रेंज के नवा पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त करे गए हे। उमन बस्तर आईजी सुंदरराज पी के जगह ली ही। इस संबंध में गृह विभाग हा आदेश जारी कर दे हे। श्री मीणा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आईजी के पद में तैनात रही। एकर पहली उमन दुर्ग रेंज के आईजी के रूप में अपन सेवा दे चुके हे। जसपुर पुलिस आ काली 24 जून के जिला के सबो 766 गांव में एक संग जन चौपाल लगा के हेलमेट जागरूकता अभियान चलाइन। ये अभियान ला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करे गए है। जसपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के राज्य प्रमुख सोनल राजेश शर्मा हा, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेशीला वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान करें। काली छत्तीसगढ़ के संग देश के आने आने जगह मा मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के संग मनाए जाही। करबला मा सत्य और न्याय के रक्षा बर पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उखर साथी मन के शहादत के याद मा मुहर्रम मनाए जाते। ए बेरा मा ताजिया निकाले जाते और करबला के शहीद मन के सर्वोच्च बलिदान के याद मा मजलिस के आयोजन करे जाते। मुहर्रम के बेरा मा राजधानी रायपुर के संग राज्य के कतकोन शहर मा काली ताजिया निकाले जाही। रायपुर के करबला मा हजरत हुसैन के बड़का कुर्बानी ला याद करत हुए मजलिस यानी धार्मिक बैठक के आयोजन करे जाही। राजनांदगांव मा राज्य कर विभाग हा फर्जी बिलिंग के मामला मा कार्यवाही करत हुए मैसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरडिया ला गिरफ्तार करे हे। जांच मा करीब 76 करोड़ रुपया के कागजी लेन देन और 8 करोड़ 22 लाख रुपया के संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामला आगू आए हे। विभाग के अनुसार फर्म हा बिना वास्तविक खरीदी के फर्जी बिल के जरिया ले कर लाभ लेके प्रयास करें। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। प्रदेश मा बहुमंजिला भवन कोचिंग संस्थान होटल और व्यावसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए जाही। मुख्यमंत्री हा दीन निर्देश। आज संविधान हत्या दिवस मा छत्तीसगढ़ के संग देश भर मा आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून के प्रदेश मा शून्य ले लेके 5 बछर तक के लैका मन ला पोलियो के दवाई पिलाए जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 होने को है। कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, कल शाम 5:05 पर सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक बिलासपुर के श्री रजनेश सिंह से बातचीत। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। वक्त है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का। ईमेल करे गीत सुने का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिसा नायाब और लड्डू। हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू। जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा और इनके साथ हैं सुच्चा सिंह पाठक। धुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति निधि, निखिल यश, प्रयाण शिवम, रेखा धनेश्वरी वर्मा। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। भिलाई से हमारे साथी है अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर। गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन। कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शायना, हसन नाजिया और इब्राहिम। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद

शाकिर अल्तमश खत्री, अलकमा रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, लोतरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श और आतिका, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह, रिंगिनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवागढ़ कटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया, लोतरा खमरिया से नकुल शाम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तेवरता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ, शौर्य नामदेव, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया, साजिद और शाहिद, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूधी, महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहां नाज, तलत, फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया, शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े, बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल, पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन, संजय, दीपक और कमल, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाट से अजिता पॉल, प्रभारानी और प्रियांशी शर्मा, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरन गौतम, मंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम, टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं फरेब फिल्म का गीत। सुनिधि चौहान की आवाज़ है, सैयद कादरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत है अनु मलिक का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: सुनिधि चौहान के गाए फरे फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। कल शाम 5:05 पर सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक बिलासपुर के श्री रजनेश सिंह से बातचीत। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हो रहे हैं।
3: हमारे अगले कार्यक्रम
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।
3: टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
4: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Bangladesh of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
5: First Ball 20.
6: 25 जून वो तारीख जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है, क्योंकि आज ही 1983 में इंग्लैंड की भूमि पर भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था। 2026 में उसी इंग्लैंड की भूमि पर हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम टी20 विश्व कप जीतने का ख्वाब देख रही है। लेकिन पिछले दिनों इस राह में मिला एक स्पीड बंप, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार। पर कहते हैं हीरो वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो उठता है। आज फिर वही

0: मैनचेस्टर का मैदान है, सामने बांग्लादेश है और अपनी गलतियों से सीख बाउंस बैक करने की चुनौती है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, मेरा नाम है दर्पण और मेरे साथ है मुदिता।
1: शुक्रिया दर्पण। हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल। दर्पण, आपने 1983 के वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स में मौजूद हैं चेतन शर्मा, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, जो नाम हर भारतीय फैन के दिलो दिमाग पर आज भी है, क्योंकि 1987 के वर्ल्ड कप में वो पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी। चेतन, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: इसके अलावा हमारे साथ है विजय दहिया, जो फॉर्मर क्रिकेट खिलाड़ी होने के साथ ही अब एक बहुत सक्सेसफुल कोच की भूमिका में है। वेलकम विजय।
3: शुक्रिया।
1: और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शशांक शेखर। शशांक, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सो मच।
0: तो एक्सपर्ट से पूछेंगे कि कैसी होने वाली है भारत के लिए आज चुनौती, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे सीधा मैनचेस्टर, जहां

0: विजय
1: शुक्रिया
0: और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शशांक शेखर। शशांक बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच।
3: तो एक्सपर्ट से पूछेंगे कि कैसी होने वाली है भारत के लिए आज चुनौती, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे सीधा मैनचेस्टर जहां पर टॉस होने जा रहा है।
4: Are in the hunt for one of those top two spots. I've got Trudy Anderson, match referee, alongside the captains. I think Harmon, I think you've got the coin. Jolty, your call. It's fallen your way. You've won. What are you going to do today?
5: We wanted to bat first because in this sort of game, we really wanted to put some score in the board.
4: I'm just watching your team warming up and they are up and about. There seems like a real energy about the group as well because of the two wins. How do you just let the players sort of run with that, or do you want to try and keep them nice and calm?
5: I think this is really important game for us, and I think it's a huge opportunity for all of us to being in the top side. So I think we just wanted to give our everything in this game, and we are so happy that we are in a moment where we are count.
4: You've played this team a lot. That hasn't always gone your way. How do you approach this with a game plan? Is it what's worked for you well so far in this tournament? Are you going to change things up a little bit?
5: I think our batters been in a bad patches, but I guess they will come back in this game, that we hope. But our bowlers been very consistent in the last three games, so we will definitely looking forward for that.
4: Okay, any changes to your side today?
5: No, we are going with the same 11.
4: Okay, all the best for this big clash.
5: Thank you so much.
4: Harmon, I'll get you to come in. Bowling first, I just saw you rolling the arm over. Is that what we're going to expect to see?
5: Not really, I was just warming up myself.
4: Okay. You're going to be bowling first not here on this pitch. It's a run scoring, it's very, very flat. What's your thoughts on that?
5: Yeah, I think it's a good wicket to bat on, but if you keep yourself in the game and, you know, spend some time on the wicket, it's a really good wicket. But I think for bowling also, if you, you know, spin your fingers, there is something you can, you know, take from this pitch, and hopefully our bowling group come up strong today.
4: A little bit in your favour is that you have played here. You've also played on this pitch against South Africa. What did you learn from that?
5: Yeah, I think that was a very good pitch to bat and ball. And I think, as I mentioned, you know, you just have to read the pitch and react accordingly.
4: Okay. Is it just about the win, or is it a little bit of net run rate in there as well?
5: I think first to win, and then let's see how it goes.
4: Okay, let's see how it goes. Thanks a lot. All the best today.
5: Thank you.
4: Bangladesh have won the toss. They're going to be having a bat first.
3: तो टॉस बांग्लादेश ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश T20 क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 23 बार आमने सामने हुई है। केवल 3 बार बांग्लादेश को जीत मिली है और तीनों बार चेज करते हुए मिली है, लेकिन यहां पर फैसला पहले बल्लेबाजी करने का किया है। चेतन, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को?
6: देखिए, जैसे अभी तक खबर आ रही है मैनचेस्टर से कि विकेट थोड़ा सा लो एंड स्लो विकेट रहेगा, और जब आपको ये अनुमान रहता है कि लो एंड स्लो रहेगा तो चेज करना विद स्पिनर्स आपकी टीम के अंदर, तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके मन में यह है कि अगर जितना बैटिंग के लिए अभी तक विकेट अच्छा है, उसके बाद थोड़ा डस्टी की संभावना। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया यही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और हार का सामना करना पड़ा था, तो वो चीजें आप कैलकुलेट करते हैं एज ए टीम। आप वो देखते हैं कि पिछला मैच भारतीय टीम ने कैसा प्रदर्शन किया, क्या उनकी रणनीति थी, उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया कि अगर बाद में स्पिनर्स को कहीं मदद मिलेगी उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम में मैं हर समय कहता हूं विन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट। रन ऑन बोर्ड हर समय अच्छा रहता है टीम के लिए।
0: जी चेतन, बिल्कुल। लेकिन पिछला मैच अगर हम देखें तो विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट भारत ने यही निर्णय लिया था। हम क्योंकि बॉलिंग भारत करने जा रहा है, तो पावर प्ले बॉलिंग की अगर हम बात करें हमारी, तो बहुत सारे इश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले मैच को अगर हम खास करके देखें तो पावर प्ले में बहुत सधी हुई बॉलिंग की थी भारतीय बॉलर्स ने, केवल 25 रन, और आखिरी ओवर तो चरणी का मेडन विकेट। लेकिन उसके बाद भारत इस बढ़त को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। विजय,
1: अगर आप देखें जिस तरीके से आप गेंदबाजी का जिक्र कर रहे हैं, एक जो चीज़ जो भारतीय टीम के साथ जानी चाहिए या कंडीशंस के बारे में आप बात करें, तो जब आप अपने मीडियम पेसर्स की तरफ देखते हैं तो शायद उस तरीके का ये वर्ल्ड कप अब तक नहीं रहा है जहाँ गेंदबाजी के बारे में आप बात करने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जिसके बारे में हमने अभी जिक्र भी किया, साउथ अफ्रीका, उसमें अगर आप देखें तो आप बड़े मैचों के हिसाब से जितने रन आपको बोर्ड पर लगाने चाहिए थे वो थे वहाँ पर। वो गेंदबाजों के लिए था मैच जीत के वहाँ से मैच भारतीय टीम को जिताना, तो वो एक चीज़ है जो बहुत अहम रहेगा आपका इस टूर्नामेंट में आपको बनाए रखना या यहाँ से इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर जीत दिलाना।
3: आपने बात की कि अभी तक सीमर्स ने शायद उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया और इसके चलते कुछ बदलाव भी हमें टीम में देखने को

0: मिल रहे रेणुका सिंह ठाकुर जो कि सबसे अनुभवी सीमर है, उनको प्रथम एकादश में आज शामिल कर दिया गया है। साथ के साथ राधा यादव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। शशांक, लास्ट टाइम इंडिया वेंट टू बांग्लादेश, दे डिड अ क्लीन स्वीप, राधा यादव वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, शी पिक्ड अप 10 विकेट्स, दोज हैप्पी मेमोरीज मस्ट हेल्प हर अगेंस्ट बांग्लादेश।
1: होपफुली सो, दिस इज अ मैच विच इंडिया आर सपोज टू विन and I don't see any problems for India. I think it's going to be the spin department which will again do the needful for India. It's a very interesting stat that I would like to share. In the three matches that India have played, they have taken 24 wickets. 22 of them have been taken by the spinners.
0: Right.
1: Nandini Sharma has taken 2 wickets.
0: Right.
1: Kranti Gaur and Arundhati have not taken a single wicket, you know. So Manchester, this pitch, even Australia, for Australia, Sophie Molyneux, Wareham and all, their spinners took wickets against South Africa. So this is going to be a spinner's track. And as far as Radha is concerned, she's also a good left-arm spinner.
0: Mm-hmm.
1: She's a very good fielder and a competent batsman.
0: Mm-hmm.
1: But, it shouldn't be a problem for India today. The problem will be against Australia in the last game of the group stage.
0: विजय, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
2: हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप देखें किस तरीके से भारतीय टीम की थिंकिंग रही है, राधा की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी खिलाड़ी जो पिछले कुछ समय में हर एक लिहाज से, अगर आप उनकी फिटनेस देखें, मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं इस समय वो वुमेन क्रिकेट में, अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं। उनका पहला मैच है और आपकी सोच कहीं ना कहीं ये चल रही थी कि जो हम स्पिनर्स खिला रहे हैं वो इनफ है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको ये लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी और हमें चाहिए। शायद
0: श्रियंका पाटिल की इंजरी उसमें एक बड़ा
2: नहीं, बहुत बड़ा
0: जी,
2: क्योंकि जिस समय पे ये इंजरी उनको हुई है, सिर्फ गेंदबाजी नहीं, जिस नंबर पे वो बैटिंग करती हैं वो नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो एक ऐसी यंगस्टर इस टीम के अंदर रही है पिछले कुछ समय में, अगर आप देखें WPL के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली पिछले सीजन में इंजरी की वजह से पूरा सीजन बाहर हो गई थी, यहाँ पर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच फ्रीक इंजरीज ज़्यादा रही हैं उनको, तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ा लॉस ज़रूर है। लेकिन इतनी सक्षम है ये भारतीय टीम कि अगर आप किसी भी कंडीशन के बारे में बात करें, इस फॉर्मेट के बारे में बात करें, जो दो बचे हुए मैचों के बारे में बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए।
3: जी, सक्षम है भारतीय टीम जैसा विजय ने कहा। और दर्पण क्यों ना कुछ श्रोताओं को भी हम शामिल कर लें, तो अगर आपके पास हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। चेतन, रेणुका सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है आज प्लेइंग 11 में, सबसे अनुभवी बॉलर्स में है वो भारत की, एंड शी हैज अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड हैज द एबिलिटी टू स्विंग द बॉल अर्ली एंड स्ट्राइक अगेंस्ट देयर टॉप ऑर्डर। क्या ये सबसे बड़ा कारण बना है उनको प्लेइंग 11 में शामिल करने का?
4: देखिए, जितना मैंने अभी तक पूरा देखा, एक महीना पहले भारतीय टीम वहां पहुंची
0: जी।
4: आपके मिडिल ऑर्डर में अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं है, आप रीशफल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और हमारा एक स्पिनर की अगर हम बात करें, जो अभी आप बात करें श्रियंका पाटिल, वो इंजर्ड हुई, वहां से एक झटका लगा और अभी तक आप अपने तेज गेंदबाजों के साथ सेटल नहीं हो पाए। देखिए, वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप जितना शफल करते रहेंगे, जितना टीम में बदलाव करते रहेंगे, तो एक चीज है जो कंसिस्टेंसी हम कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर, एक भरोसा, वो प्लेयर्स को आप नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी। तो रेणुका को मौका मिला तो जितना रेणुका को हमने गेंदबाजी करते देखा, इनको तो आपको शुरू में मौके दे देने चाहिए थे
0: जी।
4: देखिए, इस कंडीशंस के अंदर आप वो तेज गेंदबाज को लेकर आते हैं जिसके पास एबिलिटी है स्विंग कराने की। देखिए, इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है, आप 120 पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, अगर आप में एबिलिटी है स्विंग कराने की, आप किसी को भी आउट कर देंगे, बड़े से बड़े प्लेयर को आउट कर देंगे। लेकिन आप गति आप जितनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपने कहा कि स्विंग बहुत अच्छा करती है, तो ऑब्वियसली आप इन कंडीशंस में उसी गेंदबाज को खिलाते हैं जिसके हाथ में अच्छा खासा स्विंग है।
0: लेकिन चेतन, इससे से जुड़ा एक सवाल है, अभी हम देख रहे हैं जो वेदर फोरकास्ट है, हीट वेव की वार्निंग दी गई है, 31 डिग्री अभी टेम्परेचर है और हम देख रहे हैं मैदान में धूप खिली हुई है, ऐसे में आपको लगता है कि वो उस तरह का स्विंग प्राप्त होगा?
4: देखिए, उस कंडीशन में इंग्लैंड 45 डिग्री तो है नहीं, इंडिया जैसी हालत है नहीं, और दोनों ऐसी कंट्रीज है जिनको गर्मी की आदत है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल गर्मी है। बेशक इंग्लैंड के अकॉर्डिंग 30 डिग्री बहुत ज्यादा है,

0: लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप में क्षमता है स्विंग कराने की, आप स्विंग करा सकते हैं। ये नहीं कि वहां के अकॉर्डिंग गर्मी है, अगर आप तो इंडिया में सारी उम्र क्रिकेट खेले, अगर आप यहाँ स्विंग कराते हैं तो वहां तो आपको ऑटोमेटिकली स्विंग कराना चाहिए।
1: फॉर मी द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इफ शी इज बोलिंग रियली वेल इन द नेट्स, हाउ कम शी डिडंट प्ले अर्लियर? सो देयर समथिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द स्विंग, इट्स अबाउट समथिंग दैट काइंड ऑफ रिदम, मे बी शी इज नॉट फाइंडिंग हर रिदम देयर। अदरवाइज व्हेन यू वेंट फॉर अ टूर लाइक दिस एंड यू आर मोस्ट experienced bowler not finding her place in the playing 11 in all the games, there's something going on where the team management feel that she's not in that kind of rhythm, and come this game they feel if they qualify, get into the semi-finals, they'll be needing her, and that's the reason why they're introducing her in this game.
2: But tell you who is always in rhythm, it's our listeners. Mudita ek shrota hamare sath jud chuke hain, aaiye unse baat karte hain.
3: Ji apna naam bataye aur aap kahan se hamare sath jud rahe hain?
4: Hello ma'am, namaste, good evening.
3: Good evening.
4: मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।
1: नमस्कार विपिन जी।
0: नमस्कार
4: जी। सर मेरा सवाल ये था कि अगर 160 170 का स्कोर मिलता है तो क्या इंडिया चेस कर सकती है इजीली, और दूसरा सवाल ये था कि आज की जीत के बाद क्या क्वालिफाई तय हो जाएगा या फिर संडे का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो मैच तो बहुत बड़ा है, इसलिए उस पर अगर ना जाएं तो क्या आज जीत जाएं तो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं?
2: चलिए शशांक, हम चाहेंगे कि आप ये सवाल लें और विपिन जी को इसका जवाब दें।
5: जी तो जैसा आपने पूछा है विपिन जी, 160 170 का टोटल अगर होता है तो हम चेस कर पाएंगे कि नहीं, तो जहाँ तक मुझे लगता है इतना स्कोर शायद बांग्लादेश नहीं बना पाएगी। ये स्लो विकेट है जहाँ स्पिनर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारी स्पिन अटैक अच्छी है। पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारे स्पिनर्स ने ही संभाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश 160 170 का टारगेट दे पाएगी। अगर 160 170 बना लेती है बांग्लादेश तो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या स्कोर बनता है। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, अगर हम आज का मैच जीत भी लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस फॉर्मेट में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को हराना हमारे लिए मुश्किल है, असंभव तो कुछ भी नहीं है, हमारी टीम भी बहुत अच्छी है। और साउथ अफ्रीका आज रात में 11 बजे से हॉलैंड के साथ खेल रही है, नेदरलैंड्स के साथ, और लास्ट मैच उनका, तो ये वो दे आर एक्सपेक्टेड टू बीट बांग्लादेश एंड हार जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो स्थिति अभी गंभीर है हमारी टीम की, देखते हैं आगे क्या
2: जी,
5: होता
2: सभी
5: है।
2: सभी समीकरण आपके सामने पेश कर दिए गए हैं विपिन जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए होंगे आप हमारे इस आंसर से। लेकिन सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं विजय, बॉलिंग की हमने बात की, आप मौजूद हैं हमारे पैनल पर, विकेट कीपिंग पर बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऋचा घोष,
6: अभी आप आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुन रहे थे। आगे के खेल की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे शाम 7 बजे से। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं, अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
9: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
10: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।

0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। जशपुर पुलिस द्वारा 1,766 गांव में चलाए गए हेलमेट जागरूकता अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। और कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा मुहर्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच कराने को कहा है। इसके तहत सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान भवन की सुरक्षा, फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान जन स्वास्थ्य, औषधि और उर्वरक क्षेत्र सहित विभिन्न विभागीय विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि राज्य में खाद वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जा रही है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, साथ ही राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान श्री साय ने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों सहित प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 छात्रों ने सफलता पाई है। इनमें से अधिकांश विद्यार्थी जनजातीय, ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के हैं। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया।
5: 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 25 जून 1975

0: को इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, संविधान की हत्या हुई थी, जितने भी गैर कांग्रेसी लीडर थे सबको जेलों में डाल दिया गया था, मीडिया जगत के अधिकार को भी छीना गया था। तो इस तरह से संविधान में जो नागरिक को अधिकार है वो अधिकार से भी वंचित किया गया था और कितनों का घर इसके कारण बर्बाद भी हो गया। तो इसीलिए 25 जून को हम सब लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं।
1: महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी की केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब साड़ी खरीदी के लिए निर्धारित राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य साड़ी वितरण में होने वाली गड़बड़ियों, बिचौलियों की भूमिका और गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों को पूरी तरह खत्म करना है।
2: जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का जो साड़ी होता है, अब बड़ा निर्णय हम लिए हैं कि इसको केंद्रीकृत करके डायरेक्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के खाते में जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से जाए। यहाँ से निर्धारित होगी कि कैसे कलर में रहेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं सहायिका स्वयं खरीदेंगे। कुल मिलाकर ये है कि इसको पारदर्शिता करने के लिए एक बड़ा पहल किया गया है।
1: नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को मरम्मत और रखरखाव के लिए 22 करोड़ रुपए से अधिक की आपात निधि जारी की है। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही अप्रैल से जून महीने के लिए यह राशि जारी की गई है। इसके तहत 14 नगर निगमों को 13,76,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। वहीं 56 नगर पालिकाओं के लिए 5,18,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभाग ने 124 नगर पंचायतों के लिए भी 3,66,00,000 रुपए जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमेन डेका ने लोकभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्ती जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा कर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। राज्यपाल ने जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। वहीं राज्यपाल ने रायपुर के माना कैंप में स्थित फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर, सेरेब्रल पाल्सी गेट लैब और दिव्यांगजनों के लिए संचालित महाविद्यालय का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कल विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची का सत्यापन किया गया। ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अंतिम सूची को निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज किया जाएगा। बैठक में 1 जुलाई से लागू हो रही विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। जशपुर पुलिस ने कल 24 जून को जिले के सभी 766 गांवों के ने एक साथ जन चौपाल लगाकर हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कल इन गांव में जन चौपाल, विशेष ग्राम सभा और हेलमेट जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। वरिष्ठ आईपीएस बद्री नारायण मीणा को बस्तर रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वे बस्तर आईजी सुंदरराज पी की जगह लेंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। श्री मीणा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आईजी के पद पर तैनात थे। इससे पहले वे दुर्ग रेंज के आईजी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा कल 26 जून को किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 10:25 तक प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई शहरों में कल ताजिए निकाले जाएंगे। रायपुर के करबला में हजरत हुसैन की बड़ी कुर्बानी को याद करते हुए मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। रायपुर जिले के अभनपुर में चल रहे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के 10 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल हुए। उन्होंने जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूत बनाने से संबंधित

0: दिशा निर्देश दिए। यह शिविर 29 जून तक चलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक की सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की बरमकिला शाखा में 18 करोड़ 13 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू करेगी। वहीं बलरामपुर जिले के सहकारी बैंक में करीब 30 करोड़ 51 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में निपनिया भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण के चलते आज से 29 जून तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 10 ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 3 ट्रेनों को निर्धारित स्टॉपेज के पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस बीच यात्रियों की सुविधा के लिए भुवनेश्वर और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बीच एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन कल 26 जून को चलाई जाएगी। यह ट्रेन कल भुवनेश्वर से रवाना होकर 28 जून को लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर और दुर्ग स्टेशन में दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। जशपुर पुलिस द्वारा एक साथ 766 गांव में चलाए गए हेलमेट जागरूकता अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। और कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा मुहर्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
2: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।
3: बनाए रखने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए देवायन स्वागत आपका। बहुत जरूरी ये मैच भारत के लिए।
4: एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर द वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी हू इज ट्यूनिंग इन एज वेल। इट्स एन इंपॉर्टेंट मैच। इट्स बीइंग प्लेड ऑन द सेम पिच ऑन व्हिच इंडिया प्लेड देयर लास्ट मैच एज वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर। एंड ऑफ कोर्स द टॉस हैज बीन वन बाय द बांग्लादेश टीम व्हिच इज अनचेंज्ड फ्रॉम देयर लास्ट मैच व्हिच फीचर्ड अ गुड विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान। सो टेक्निकली इवन बांग्लादेश इन द रनिंग फॉर spot in the final four, and India with two interesting changes because they brought in the experience of Renuka Singh and Radha Yadav and left out Prema Rawat as well as the seamer from the previous game, Arundhati Reddy. So those are the two changes. One would have thought that maybe they would have thought of including an extra bowler, but they've gone in with those five specialist bowling options and Shefali Verma of course also as a backup.
3: Yeah, aur is match mein Bangladesh ne toss jeet kar isliye ballebazi ka faisla kiya hai ki पहली पारी में बल्लेबाजों को थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। क्रैक्स हैं पिच में और उम्मीद की जा रही है कि ये थोड़े से बढ़ सकते हैं। सेकंड पारी में थोड़ी सी भारतीय टीम को परेशानी हो सकती है। इसी को देखते हुए बांग्लादेश की कप्तान जो हैं उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने कितना सही फैसला लिया ये जब मैच का परिणाम आएगा तब देखना होगा। लेकिन भारत के लिहाज से ये टूर्नामेंट अभी तक मिला जुला रहा है। पाकिस्तान को 64 रन से हराया था पहले मुकाबले में 14 जून को। 17 जून को नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया, लेकिन 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिली और वहीं से थोड़ा सा समीकरण भारत के लिए पलटा। हालांकि नेट रन रेट के लिहाज से दिवाइन अभी भी भारत दक्षिण अफ्रीका से आगे है और पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है।
4: Yes, it's a positive for India and it'll all probably boil down to that Sunday's match against Australia. But for the moment, they have to take on the two openers from Bangladesh who have made their way out to the middle, Dilara Akhtar and Juwairia Firdaus. And it does look like Shefali Verma is going to deliver the first over. So that sixth bowling option coming into play straight away.
3: बड़ा दिलचस्प है ये क्योंकि शेफाली आमतौर पर नियमित गेंदबाज नहीं है लेकिन हाल के दिनों में भरपूर उपयोग हुआ है उनका और पहला ओवर लेकर आ रही है। दिलचस्प होगा ये देखना कि किस तरह से उनका ये पहला ओवर चलता है। और इस समय स्ट्राइक पर बांग्लादेश की सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। फील्ड पूरी तरह से तैयार है और दिलारा अख्तर इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रही है। धूप पूरी तरह से खिली हुई है और बस कुछ ही सेकेंड्स में ये मुकाबला शुरू होने वाला है। भारत को अपना अंतिम मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। तो भारत अगर दोनों मुकाबले जीत ले

0: है, नेट रन रेट बेहतर रहता है, जो अभी दूसरे स्थान पर है उसको बनाए रखता है, तो सेमीफाइनल में पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पहली गेंद इस ओवर की और इसको सुरक्षित खेलना चाहती थी, बीट हुई पूरी तरह से, ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर निकली ये गेंद और चारों खाने चित हो गई। ये पहली गेंद कैरम बॉल थी और इस पर पूरी तरह से चकमा खा गई।
1: या ऑलमोस्ट प्लेइंग फॉर द टर्न व्हिच वाजंट देयर, सो वेल बॉल्ड बाय शेफाली।
0: जी हाँ, और शुरुआत भारत के लिए अच्छी हुई है। स्पिनर्स की मददगार पिच पर भारत क्या कमाल करेगा ये देखना होगा। और इस गेंद को खेलना चाहती थी, ड्राइव करना चाहती थी कवर की तरफ, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लिया इस गेंद ने। किस्मत वाली रही कि विकेट कीपर की तरफ नहीं गई ये गेंद, एक रन लिया और फिर दूसरे के लिए भी पलटी है और ये दो रन पूरे हुए हैं। इन दो रनों के साथ बांग्लादेश की स्कोरिंग की शुरुआत हुई है और भारतीय टीम चाहेगी कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश की पारी को समेटा जाए। इस पिच पर 130 के आसपास का रन भी काफी सुरक्षित माना जा रहा है। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर दिशा में परिवर्तन किया था, जिसको वो हल्के हाथों से खेला ऑन साइड में, इस बार एक रन मिलेगा और इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ तीन बगैर किसी नुकसान के। जैसा बताया दिबायन ने कि आज भारतीय टीम में दो परिवर्तन हुए हैं, राधा यादव और रेणुका सिंह की टीम में एंट्री हुई है, जबकि अरुंधति रेड्डी और प्रेमा रावत को विश्राम दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए मुकाबला। रेस में बांग्लादेश की टीम भी बनी हुई है। ग्रुप ए से जो दो टीम बाहर हुई है वो है नीदरलैंड्स की टीम और उनके साथ साथ पाकिस्तान की टीम। अगली गेंद इस बार फिर से लेग स्टंप पर, दिशा से थोड़ी सी भटकी हुई गेंद, हालांकि बल्लेबाज ये देख रही थी कि अंपायर क्या इस गेंद को वाइड बॉल करार देते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल फेयर डिलीवरी और इस पर कोई रन नहीं। ये ओवर चलता हुआ चार गेंदें हो चुकी है, पांचवी गेंद के साथ तैयार। इस बार शेफाली वर्मा की ये गेंद फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पाई। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी रफ्तार की गेंद और पिच का पूरा फायदा उठाते हुए। इस पिच पर अनुमान यही है कि गेंद थोड़ी सी रुक कर आएगी, अनइवन बाउंस भी देखने को मिल सकता है और अभी तक इस ओवर में परेशानी हुई है बांग्लादेश के दोनों सलामी बल्लेबाजों को। दिलारा नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं तीन रन बनाकर और इस समय फिरदौस ने इस गेंद को खेला कवर की तरफ, कोई रन नहीं और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में बांग्लादेश ने बनाए तीन रन बगैर किसी नुकसान के।
1: Three without loss, tidy start, and Shefali Verma just getting a couple of balls to spin, which will be encouraging news not just for the Indian spinners but also for the Bangladesh spinners themselves. A little bit about the two openers for Bangladesh: Dilara Akhtar, 22 years of age; Juwaria Firdaus, 20 years of age. Both right-handed batters and players who have a slightly better strike rate in terms of their careers. Dilara Akhtar, this is her 41st match; she has a strike rate of 115, and Firdaus, in her 18th match, also possesses a strike rate of 113, which is relatively better than many of their teammates, and that's why they have formed this combination. And in early June, Dilara actually scored 50 of 22 balls in a match against the Netherlands, which is the fastest 50 for Bangladesh in women's T20Is. They'll be hoping for that kind of explosive start if possible, but in that first over we did see some tidy bowling from Shefali, just looking to attack the stumps. The odd ball turned a little, the odd ball also bounced a little, and the very first one just left the batter after pitching. Dilara Akhtar was beaten all ends up, and for the second ball skipper Harmanpreet Kaur actually brought in a slip. Now Renuka Singh Thakur with her first over of this entire World Cup, her first match in fact, little short of a length, pulled away on the onside by Dilara, and she picks up a single to move along to four and takes the Bangladesh score along to four as well without loss. Second over in progress, Renuka Thakur making her first appearance in this World Cup. India have had a little bit of a merry-go-round with their seamers. They have played Nandini Sharma pretty much throughout, but they have alternated between Kranti Gaur. They also brought Arundhati Reddy in the previous match, so never really completely sure about where they want the exact combination to fall. This time it's back of a length and it's been pulled away. There's a fielder in the deep though, deep backward square leg, where N. Sri Charani does the cleanup. It's the first runs for Firdaus, takes her off the mark and takes Bangladesh along to 5 for no loss in 1.2 overs. And it's turning out to be a good tidy start. Just a little struggling in terms of finding her right length here, Renuka Singh. And that's why it's just provided easy pickings. Also staying onto the pads. Naturally has this ability to curl the ball in, and that's what she'll be hoping to do. Yet again down the leg side, this time beats the outside edge or the inside edge, will be called a wide. So the first extras in this particular match going the way against Renuka Singh Thakur. She's sometimes been guilty of doing this, just straying down the leg side. And if she doesn't find her range, then it can lead to some scoring opportunities for Bangladesh. Bangladesh, having won the toss, elected to bat.

0: So yet another dot ball, 3.4 overs completed, 18 for 1. Bangladesh winning the toss, electing to bat in this significant encounter for both teams. On a significant date, may I remind all the viewers, 25th June, synonymous with Indian cricket on two counts. We'll come back to that after the next ball. Again driven in the same direction, goes straight towards Shefali Verma. 1932, 25th June, of course, India's first ever test match, which was played in England. And then 1983, 25th June. That's a date that we cannot forget, Dharmendra.
1: Yeah, and today's day is also big. के लिए तो भारत के हाथ जीत आए.
0: Absolutely. The last shot, in fact, just taking a little bit of a deflection of the non-striker Shobhana, and that's what made it go a little quicker and faster straight towards Shefali. May well have found the gap otherwise. Three dot balls. Renuka will be looking to finish this over tightly. The next one is thwarted away but played on the onside, dropped by Radha Yadav. It goes for four.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: India are being very, very generous with Firdaus. Dropped on three and now on nine as Radha Yadav shells a pretty simple one at deep mid-wicket and it leads to a boundary. And that finishes the over at 21, 22 for one.
1: जी हाँ, ये एक मौका राधा यादव के हाथ से और फिसलता हुआ. पिछले मुकाबले को अगर याद करते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वहां पर भी राधा यादव से दो कैच छूटे थे और दो महत्वपूर्ण कैच छूटे थे, उसकी वजह से उस मुकाबले में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था. ये कैच छोड़ना भारत के लिए कितना भारी पड़ेगा ये जरूर देखना होगा. राधा यादव थोड़े से मानसिक दबाव में निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं. पिछले मुकाबले में वो अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में मैदान पर थी, इस मैच में वो 11 में शामिल हैं, उनको गेंदबाजी भी करनी है. लेकिन ये कैच भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ा सकता है. दो कैच अभी तक भारत के छूट चुके हैं इस मुकाबले में. नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और अश्विन चरणी की पहली गेंद को सुरक्षित तरीके से शॉर्ट कवर की तरफ खेला, कोई रन नहीं. बहुत हड़बड़ाहट में बांग्लादेश की टीम है नहीं, लेकिन मौके निश्चित रूप से दो दिए हैं और अगर आप मौकों को लपकेंगे नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है, मुश्किलें आपके लिए और ज्यादा हो सकती हैं. अगली गेंद को इस बार बाहर निकलकर ड्राइव करने का प्रयास, कवर में गई थी गेंद, हवा में थी थोड़ी देर के लिए. क्या ये मौका भी छूटा है? जी हाँ, एक और कैच छूटता हुआ फील्डर वहां पर फिर से, अगर हम कहें तो एक रन जरूर लिया है ये दी. इस बार इस कैच को हवा में खेला था, सीधा एक आसान सा कैच था, मुश्किल ज्यादा नहीं थी और एक और कैच जमीन पर टपकता हुआ.
0: आई थिंक दिस वन मे हैव बीन नंदिनी शर्मा एट कवर्स.
1: अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, फिर से हवा में गेंद, फिर से कैच छूटा, एक और कैच छूटता हुआ भारत के लिए चौथा. ये मौका जब भारत ने कैच छोड़ा है, भारत के खिलाड़ियों ने कैच छोड़ा है, नंदिनी से ये कैच छूटा है.
0: Second successive ball and second successive catch which has gone to Nandini, and the ball is following around because she's been moved now to short third, and that's exactly where the ball went off the outside edge, and she made a good effort this time actually getting across to it, and having got there she'll be disappointed that it came out.
1: जी हाँ, भारतीय ड्रेसिंग रूम के चेहरे भी मायूस, क्योंकि इस तरह के मौके नहीं छोड़े जा सकते. अगली गेंद इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, चार रन के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया फिरदौस ने और सीधे बल्ले से अपने सामने की तरफ खेला, सुरक्षित स्ट्रोक, कोई फील्डर वहां पर थी नहीं, और ये चौका एक और आता हुआ बांग्लादेश के लिए. स्कोर बढ़ता हुआ 27 एक विकेट के नुकसान पर. पांचवा ओवर चल रहा है, दो गेंदें अभी भी बची हुई हैं और इस ओवर में दो मौके भारतीय फील्डर नंदिनी के हाथ से फिसले हैं. अगली गेंद इस बार स्वीप करने का प्रयास कामयाब हुई है, फील्डर हालांकि डीप में है, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं. इस एक रन से स्कोर में और इजाफा होता हुआ बांग्लादेश के लिए और स्कोर बढ़ता हुआ 28 एक विकेट के नुकसान पर. अगर चारों कैच पकड़ लिए गए होते अभी तक तो क्या स्थिति होती बांग्लादेश की.
0: या एंड स्पेशली द थ्री इन सक्सेशन व्हिच हैव कम ऑफ द लास्ट कपल ऑफ ओवर्स इंक्लूडिंग टू ऑफ देम ऑफ श्री चरणीज ओवर.
1: अगली गेंद इस बार हवा में फिर से खेला, हालांकि फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए. गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, चार रन के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: तो इस तरह से चौके के साथ पांचवें ओवर की समाप्ति और इस समय बांग्लादेश का स्कोर 32 रन एक विकेट के नुकसान पर.
0: Yes, for the first time, I think, in this innings, Bangladesh and their run rate going over 6 runs per over. So that's a little bit of a danger sign from the Indian perspective because they've still got some batting up firepower to come. The likes of Sharmeen Akhtar, they've got the skipper, Nigar Sultana, they've got Ritu Moni, Shorna Akhtar, who can whack the ball around as well. Then some of the all-rounders, Rabia Khan, who can also wield the long handle. So India need to start taking those

0: और उस मैच में ऐसा माना जा रहा है कि फेवरेट है दक्षिण अफ्रीका की टीम, आसानी से वो मैच जीत सकती है और अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है. दिबायन
1: एब्सोल्युटली. एंड फॉर इंडिया वन बिलीव्स दैट परहैप्स द क्रंच गेम विल बी द संडे एट लॉर्ड्स व्हेन दे फेस द ऑस्ट्रेलियंस. एंड वन थिंग्स फॉर श्योर, व्हाइल ऑस्ट्रेलिया आर अ माइटी टीम, हिस्ट्री हैज शोन दैट वन टीम व्हिच हैज अपसेट देम अ फ्यू टाइम्स हैज बीन द इंडियंस. सो इंडिया नीड टू परहैप्स जस्ट प्ले अ स्लाइटली ब्रेवर ब्रांड ऑफ क्रिकेट. दस फार दे हैव सीम्ड अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट द आइडियल 11, इवन टुडे टू चेंजेस. सो इफ दैट कंटिन्यूज देन दैट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ एन एडवांटेज टू ऑस्ट्रेलिया. बट आई पर्सनली बिलीव इफ दे कैन रोप इन वन मोर बोलिंग ऑप्शन दैट कैन डू देम अ वर्ल्ड of good. At the moment they are playing an extra batter. In the initial matches it was Bharti Fulmali, since then they've gone back to Yastika Bhatia. But if they drop one of those or both of those and play a bowler instead or a bowling all-rounder, then that just enables them to play Jemima Rodrigues at 3, Harmanpreet at 4, and then maybe go from there, maybe have a Deepti Sharma or a Richa Ghosh at 5 and 6 respectively, and then the bowlers, all-rounders and the rest of them can get the runs.
0: Shayad ballebazon ki taraf se aatmavishwas abhi tak team management ko mila nahi hai. Agar hum मिडिल ऑर्डर की बात करें या उससे नीचे की बात करें तो उतना सफल अभी तक भारत का सफर रहा नहीं है. टॉप ऑर्डर ने अगर बल्लेबाजी की है तो भारत ने अच्छे स्कोर खड़े किए हैं, भारत को जीत मिली है. तो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इस मैच से भारत को वापस लाना होगा अगर सेमीफाइनल और आगे का रास्ता तय करना है तो. बहुत जरूरी है भारत के लिए मुकाबला हर लिहाज से. और अब नए ओवर की शुरुआत हो रही है. नंदिनी शर्मा गेंदबाजी के लिए आ रही है. 6 मैचों का अनुभव, 6 विकेट ही उनके नाम पर हैं और श्रीचरणी की जगह उनको मोर्चे पर लगाया गया है. 6 ओवरों में बांग्लादेश ने बनाए हैं 40 रन एक विकेट के नुकसान पर. फिरदौस 25 रन बनाकर खेल रही हैं, 23 गेंदों का सामना किया है. स्ट्राइक पर मुस्तारी जिन्होंने 5 गेंदों में 7 रन बनाए. पहली गेंद को सामने की तरफ खेला सीधे बल्ले से और मिड ऑफ से जब तक फील्डर पहुंचे वहां पर शेफाली वर्मा, तब तक एक रन लेने का मौका था. इस एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला. स्कोर हो गया 41 एक विकेट के नुकसान पर. 102.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये गेंद थी. बहुत ज्यादा रफ्तार थी नहीं लेकिन अपनी स्विंग से थोड़ा सा परेशान कर सकती. हवा भी चल रही है इस समय मैनचेस्टर में. अगली गेंद को जरा ड्राइव किया कवर की तरफ, मिसफील्डिंग हुई है. एक रन जहां पर नहीं होना चाहिए था वहां पर एक रन हुआ है और इस एक रन से स्कोर बढ़कर हो गया 42 एक विकेट के नुकसान पर. फील्डिंग का स्तर भारत का इस पूरे टूर्नामेंट में उतना अच्छा रहा नहीं है.
1: यस एंड टुडे दे बिगन वेल बट one just feels that it's probably been a cascading effect. Since that dropped catch there have been a few errors creeping into the fielding.
2: The cricket commentary will continue after a short FIFA update. World football update from the BBC.
3: Hello, I'm Mike Perkins at the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. South Africa is celebrating reaching the knockout stage of a men's World Cup for the first time. Their 1-0 win over South Korea saw them finish second behind co-host Mexico in Group A. South Korea must wait to find out if they'll progress as one of the best third place sides. Scotland also ended up third after a 3-0 defeat to Brazil in Group C, so must wait to discover their fate. Debutants Curaçao face Ivory Coast. They picked up their first point against Ecuador thanks to goalkeeper Eloy Roy making 15 saves. That's the most saves in a 90-minute clean sheet at a World Cup. They play in one of three groups concluding on Thursday. In the other match in Group E, Ecuador must beat Germany to progress. Germany have already secured top spot. In Group F, Sweden face Japan with Graham Potter's side looking to shake off their 5-1 defeat to the Netherlands. Sweden have 3 points, so aren't yet sure of going through to the last 32.
4: We've played 2 matches, and one we've won, one we've lost. It's not like everything is completely bad, but obviously we know we also have to improve, especially when we meet a team like Japan. The mood in the group is really, really positive. Everybody, I can tell, is ready to help. I've been really, really proud, I would say, of the players, how they've dealt with the situation and how they've dealt with the last results. And now we're ready to play again.
3: And in Group D, Australia will secure second place if they avoid defeat against Paraguay, while co-hosts USA are guaranteed top spot and can complete the group stage with a 100% record if they beat Turkey. And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
2: World Football Update from the BBC.
0: की उम्मीदें इस मैच पर टिकी हुई हैं, बांग्लादेश की उम्मीदें इस मैच पर टिकी हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं नजर टिकाए

0: थर्ड मैन पर गई ये गेंद, फील्डर थी वहां पर लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर थी, और चार रन उपयोगी इस समय आता हुआ बांग्लादेश के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन एक विकेट के नुकसान पर, चिंता की लकीरें भारतीय खेमे में गहरी होती हुई। सातवां चौका था बांग्लादेश की इस पारी का, 55 एक विकेट के नुकसान पर। नंदिनी शर्मा इस ओवर की अगली गेंद के साथ, इस बार ऑप्शन के बाहर की गेंद को हवा में खेला है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, खाली जगह में, नो मैंस लैंड में ये गेंद गिरी है और इस पर एक रन आया है बांग्लादेश के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 56 एक विकेट के नुकसान पर। आसमान पूरी तरह से साफ, बादलों का कहीं नामो निशान नहीं, और इस बीच में अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का, यानी फ्री हिट, बांग्लादेश के लिए तोहफा।
1: Absolutely, the Indian ill-discipline now extending to the bowling as well. It's a very marginal call, but it's a call nonetheless. It is a no ball. It's all about the first point of contact, and that's where Nandini's foot, not enough of it, was just behind the crease. The line also belonging to the umpire. So now this puts pressure on Mostari, because she was not on strike, but she has the license to really go for it and just rub some salt into the Indian wounds.
0: बांग्लादेश की पारी का ये अतिरिक्त पांचवा रन जरूर था, लेकिन फ्री हिट ही भी अब मिला है, और उस पर क्या कुछ होगा मुस्तारी की प्रतिक्रिया। और इस बार बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप की ये गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक और अतिरिक्त रन, और जो वो फ्री हिट है वो जारी रहेगा। तो अतिरिक्त रन तोहफे में जरूर आया है, और जिस गेंद की हम चर्चा कर रहे थे कि लेग स्टंप को गेंद छोड़ सकती थी, जहां पर बातचीत हुई थी थोड़ी सी कप्तान और गेंदबाज के बीच में, निश्चित रूप से वो गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। 41 गेंदों में 50 रन की ये साझेदारी हो चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है बांग्लादेश के लिए। भारत का आक्रमण इस समय उतना प्रभावी साबित नहीं हो रहा है, और इसकी वजह वो कैचेस भी हैं जो भारत की तरफ से छूटे हैं, चार कैच इस मुकाबले में अब तक छूट चुके हैं। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेलना चाहती थी विकेट कीपर के सिर के ऊपर से, धीमी रफ्तार की गेंद थी, चकमा खा गई, उछाल थी इस गेंद में, और इस गेंद पर जो फ्री हिट था उसका कोई फायदा हुआ नहीं बांग्लादेश को।
1: Yeah, very close to actually being a wide, and the batter will feel a little hard done by. It was a short bouncer. It was one for the over, called one for the over, but seemed to have gone over the head height even as the batter was trying to get up and get up to it. So, just a little unlucky on that occasion.
0: 58 एक विकेट के नुकसान पर, इस बार फिर से धीमी रफ्तार की गेंद, लेग और मिडिल स्टंप पर, जिसको हल्के हाथों से खेला, गेंदबाज खुद गेंद के पीछे भागी, लेकिन एक रन लेने का पूरा मौका था, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, और उस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 59 एक विकेट के नुकसान पर। हालांकि रन रेट की बात करें तो थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है उसमें, जिस रफ्तार से 7 के आसपास रन रेट था उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। बातचीत इस समय एक बार फिर से अंपायर, कप्तान और गेंदबाज के बीच में कुछ बताया है, और जो वो डेंजर जोन है वहां पर बार बार गेंदबाज जा रही हैं, वार्निंग अभी तक दी गई है,
1: सेकेंड वर्बल वार्निंग परहैप्स ऑफिशियल इफेक्टिवली, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली अ सोर्स ऑफ कंसर्न। इफ इट कंटिन्यूज देन नंदिनी विल नॉट बी एबल टू बोल एट ऑल इन दिस इनिंग्स।
0: नंदिनी के लिए थोड़ी चिंता की बात, ध्यान रखना होगा नंदिनी को, अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर की पांचवी गेंद, और इस बार इस गेंद को फॉलो थ्रू में खेला, सीधे गेंदबाज की तरफ, आउट, बढ़िया कैच लपका है नंदिनी ने।
1: Yes, and she's made up for her own lapses, because a couple of those lifelines were given by her as a fielder, and this time she holds on. So that's the breaking news, that Firdaus finally has had to go back to the dugout after a catch was taken. Just a little change in pace perhaps, and she was looking to smack it straight down the ground, but just went off the toe end of the bat, and Nandini in her follow through did very well to just get across to it. So fine innings of 33 comes to an end. That excellent partnership between the two of them, Shobhana Mustari and Zuaria Firdaus, also comes to a close. But you would think that Firdaus has done her damage with this innings. 33 from 31 balls. It's laid a good solid foundation for the skipper to walk in at number 4. 59 for 2 Bangladesh with one ball still to come in the 9th over.
0: Ji haan, aur strike rate 106 ka raha. Achha khasa strike rate bana kar unhone rakha. Ek aisi pitch par jahan par run banana itna aasan hai nahi. दबाव में थी गेंदबाज नंदिनी, क्योंकि उनको अंपायर की तरफ से वार्निंग भी मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। इस बार गेंद थोड़ी सी धीमी रफ्तार की डाली, जितना अनुमान कर रही थी बल्लेबाज, उस रफ्तार से गेंद आई नहीं, बल्ला चलाया, थोड़ा सा रुक कर

0: And that has meant that Bangladesh are at 74 for 2, continue to be at 74 for 2 after 11.4 overs. Two balls left in the 12th over if there are no wides or no balls. We've seen a few wides from Renuka. Richa Ghosh is standing up to the stumps, almost on cue, almost a wide, but played away on the onside, but straight towards Sri Charani, who's fielding at short fine, and it's gone so quickly that there's no possibility of a run. Mustari now just standing with a half teapot, one hand on her waist, the other alongside her bat, just looking away, thinking about where she needs to get the runs away from, because in the last couple of balls she's played a couple of good shots, but straight to the fielders. And that has meant that Renuka Singh has bowled dot balls. This time a slower ball just outside off stump, cutting it away towards Deepthi Sharma. But as she dives, they have enough time to cut through for a single. 12 overs completed. Bangladesh at 6.25 runs per over have gone up to 75 for 2.
1: Renuka ka ek aur badhiya over samapt hua. Halanki pehli gend par jab unko chauka laga tha, to thoda sa dabav tha unke upar. Lekin achhi wapsi ki unhone us dabav ke bawajood. Aur इस ओवर में ज्यादा आजादी दी नहीं बांग्लादेश की बल्लेबाजों को. शोभना मुस्तारी 23 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रही है, दो चौके अभी तक उनकी इस पारी में, और निगार सुल्ताना ने 11 गेंदों में 11 रन बनाए हैं. नए ओवर की शुरुआत होगी. आज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कोई परिवर्तन बांग्लादेश की टीम में पिछले मैच की जो टीम थी उसमें नहीं किया गया, वही टीम उन्होंने उतारी है इस मुकाबले में भी. और हम बार बार बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम ने किस तरह से इस बीच के ओवरों में वापसी की है. अभी तक अगर पिछले 5 ओवर के आंकड़ों को देखें तो 28 रन सिर्फ खर्च किए हैं, एक सफलता अर्जित की है. 5.80 की औसत से रन बने. अगली गेंद, नए ओवर की शुरुआत, राधा यादव की तरफ से पहली गेंद, और इस गेंद को खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ. एक रन और मिलेगा, इस एक रन से स्कोर में इजाफा और होता हुआ बांग्लादेश के 76 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर. खास बात दिबायन ये भी है कि अभी तक जो 2 सफलता मिली है भारत को, दोनों 30 गेंदबाजों की तरफ से मिली है. जबकि हम बार बार चर्चा कर रही हैं कि स्पिनर्स के लिए ये पिच काफी मददगार है, उस लिहाज से अभी तो कुछ कामयाबी आई नहीं है. अगली गेंद इस बार खेला है ऑन साइड में डीप मिड विकेट से, जब तक फील्डर आगे की तरफ आए उठाकर गेंद को वापस करें. एक रन और आता हुआ.
0: Yes, and it's also a function of how well Bangladesh, in a sense, have played against the spinners. Not too many risks taken, played from the crease, allowed the ball to turn. But things could be different in the second innings.
1: Agli gend is baar surakshatmak tarike se halke haathon se khela game ko, run ko chura liya hai fielder ke saamne se. Thodi si dheemi raftaar se fielder tak gend pahunch rahi thi aur uska pura anumaan lagate hue इस मौके पर रन को चुराया. एक रन और जुड़ता हुआ इस समय बांग्लादेश के लिए 78 2 विकेट का नुकसान पर. कैच जो आज भारत ने छोड़े हैं 4, उसका क्या नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन दबाव निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाजों के ऊपर था. वापसी की है भारतीय गेंदबाजों ने. एक रन और इस बीच में आया है. स्कोर हुआ 79 2 विकेट के नुकसान पर. रन रेट 6.24 का. 13वां ओवर चल रहा है. राधा यादव गेंदबाजी कर रही हैं, जिन्हें आज खास तौर पर टीम में शामिल किया गया है. 4 गेंदों में 4 रन अभी तक उन्होंने दिए हैं. और इस गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर लाभ किया सीधे फील्डर के हाथों में. एक कैच आसान सा मिड पर, और दीप्ति शर्मा ने यह कैच लपकाया. भारत की अनुभवी फील्डर, बहुत आसान सा कैच.
0: Yes, very well taken and well bowled by Radha, just changing the length of it. For a change, we saw Mustari using her feet, trying to be positive, just skipping down the wicket and almost pulling it off. But I suspect that's what made Radha just change, alter the length a little bit, and that's forced her to almost yawk herself and not quite get the right kind of elevation. The idea was right, the execution not quite so. Wanted to clear mid-off, but ended up chipping it straight to Deepthi Sharma. Big wicket because she was looking dangerous and she was dropped on one. So that will make Nandini Sharma feel a lot better now that Shobhana Mustari has to go back. 22 from 26 balls, caught Deepthi, bowled Radha.
1: जी हाँ, ये तीसरी सफलता भारत के लिए. और हम चर्चा कर रहे थे कि स्पिनर्स को अभी तक भारत की तरफ से कोई कामयाबी नहीं मिली है. राधा यादव ने वो सफलता स्पिनर्स की तरफ से भारत को दिलाई है और तीसरा विकेट भारत के लिए उन्होंने झटका है. अगर इस मुकाबले के अभी तक सभी विकेटों की बात करें, एक विकेट मिला था रेणुका सिंह यादव को, नंदिनी शर्मा ने दूसरा विकेट लिया था, और अब राधा यादव के खाते में एक विकेट. तो थोड़ी सी परेशानी इस समय बांग्लादेश के लिए बढ़ती हुई. और मुस्तारी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी. अभी तक 26 गेंदों में 22 रन उन्होंने बना लिए थे, और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से दूसरे विकेट के लिए साझेदारी उन्होंने की थी फिरदौस के साथ, एक और साझेदारी अपनी कप्तान निगार सुल्ताना के साथ अगर करने में कामयाब रही तो बांग्लादेश एक अच्छा खासा टोटल खड़ा कर सकता है. हालांकि तारीफ भारतीय

0: Shot Shokar.
1: Massive over the 17 of it. It's 96 for 3 after the 14th.
2: बहुत महंगा ओवर ये भारत के लिहाज से नंदिनी का. हालांकि नंदिनी ने एक सफलता जरूर दिलाई थी, लेकिन ये ओवर एक तरह से वापसी कराने में बांग्लादेश को कामयाब रहा है. इस मैच में एक दबाव बढ़ रहा था, बन रहा था बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन नंदिनी के इस ओवर से जो 17 रन का ओवर रहा है वो दबाव काफी हद तक हटता हुआ और स्कोर बांग्लादेश का बढ़ता हुआ 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर. हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस मुकाबले में अगर 140 के आसपास स्कोर हो गया तो इतना आसान होगा नहीं भारतीय टीम के लिए भी. हालांकि स्पिनर्स को अभी तक कुछ खास मदद भारतीय स्पिनर्स को खासतौर पर नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दूसरी पारी में ज्यादा गेंदबाजों के लिए मदद होगी इस पिच में.
1: Absolutely. And the other concern, Dharmendra, is that India shouldn't start thinking about the net run rate. First aim should be whatever Bangladesh make, their first aim should be to try and get past that, irrespective of how many overs it takes. Because if they start obsessing over trying to get there in a specific number of overs, then there's every likelihood that they'll bring some of the Bangladesh bowlers into this particular equation. And on this pitch, I suspect the Bangladesh attack, which is quite spin heavy, will also enjoy themselves. There's a lot of experience in their spinners. And just the one experienced off spinner which they didn't pick today, Sultana Khatun, who has a very good record against India. I was expecting them to perhaps pick her, but they've gone with the combination which won or did the trick against Pakistan in the previous match.
2: जहाँ तक इस मुकाबले की बात है, टॉस बांग्लादेश ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दिलारा अख्तर और जुआरिया फिरदौस ने पारी की शुरुआत की. जल्दी आउट हो गए अख्तर, जिन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए और रेणुका सिंह की शिकार हुई. शिचरणी ने उनका कैच लपका था. उसके बाद एक अच्छी साझेदारी हुई 50 से अधिक रनों की फिरदौस और शोभना मुस्तारी के बीच में. दूसरा विकेट बांग्लादेश ने जब गंवाया तो वो विकेट था फिरदौस का, जो 33 रन बनाकर आउट हुई. अच्छी पारी उन्होंने खेली. 31 गेंदों में 5 चौके उन्होंने लगाए थे. 106.45 की स्ट्राइक से रन रेट बनाए. और उसके बाद शोभना मुस्तारी तीसरा शिकार भारत के लिए हुई और भारत की तरफ से उनको राधा यादव ने आउट किया. दीप्ति शर्मा ने उनका कैच लपका था. 26 गेंदों में 22 रन बनाए थे, 2 चौके लगाए थे. इस समय क्रीज पर कप्तान निगार सुल्ताना और उनके साथ शर्मिन अख्तर दोनों इस समय बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं और इस पहली गेंद का नए ओवर की शुरुआत कर रही हैं श्रीचरणी के शर्मिन, और इस गेंद को स्वीप किया है स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे की तरफ. 1 रन और जोड़ने में कामयाब रही हैं इस नए ओवर की पहली गेंद पर. स्कोर बढ़ता हुआ 97, 3 विकेट के नुकसान पर. 15वां ओवर शुरू हुआ है. अभी भी बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं बांग्लादेश के लिए, और इस अंदाज में अगर बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करती रही, विकेट सुरक्षित रहे, तो 150 तक बेस्कोर जा सकता है. दूसरी गेंद इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, हवा में थोड़ी सी ज्यादा गेंद को छोड़ा था इस मौके पर श्रीचरणी ने, और अंत में सिर्फ आगे आकर बल्ले को दिखाते हुए मुंह उसका खोलते हुए सामने की तरफ खेला. कोई रन इस मौके पर नहीं बनेगा. अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेला है सामने की तरफ सुरक्षात्मक तरीके से फॉलो थ्रू में. 7 से 14 ओवरों के बीच की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 56 रन बनाए बांग्लादेश की टीम ने और 2 विकेट गवाए थे. धन्यवाद स्कोरर हमारे वेंकट बाला रेड्डी इस जानकारी के लिए. अगली गेंद इस ओवर की, और इस बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास पूरी तरह से गेंद की पिच तक नहीं पहुंच सके. अंत में बल्ला भर अड़ाया, अंदरूनी निगी किनारा लिया इस गेंद ने बल्ले का और मिडॉन की तरफ गेंद गई 1 रन के लिए. धीरे धीरे बांग्लादेश 100 रन के आंकड़े की तरफ बढ़ता हुआ, ये 15वां ओवर चल रहा है. लक्ष्य निश्चित रूप से बांग्लादेश के दिमाग में, उनके बल्लेबाजों के दिमाग में 150 का होगा. अगली गेंद इस बार बल्ले का मुंह खोला, थर्ड मैन की तरफ खेला, फील्डर भाग रही है उसके पीछे. गेंद को क्या रोक पाएंगी एक तेज रफ्तार से जाती हुई गेंद, हालांकि टाइम लगाकर इस गेंद को रोकने में कामयाबी, और निश्चित रूप से 4 रन बचाए हैं. 2 रन ही मिलेंगे इस मौके पर. इन 2 रनों से स्कोर जा पहुंचा बांग्लादेश का ठीक 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस 15वें ओवर में. अच्छी गेंदबाजी श्रीचरणी की तरफ से, लेकिन शर्मिन की तरफ से भी अच्छी बल्लेबाजी. उन्होंने देखा ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी जगह है, उन्होंने बल्ले का मुंह खोला और उस खाली जगह में गेंद को प्लेस सा कर दिया. 2 रन के साथ 100 रन हो गए स्कोर. अगली गेंद, और इस बार बीट हुई है पूरी तरह से ऑफ स्टंप के बाहर. हल्की सी टर्न हुई थी गेंद, ओवर समाप्त हुआ. 15 ओवरों के बाद स्कोर बांग्लादेश का 100 रन

0: दीप्ति शर्मा और राधा यादव। नए ओवर की शुरुआत और पहली गेंद पर ही भारत को सफलता मिली है। राधा यादव ने बल्लेबाज को निमंत्रण दिया आगे निकलने का। इस मौके पर कप्तान निगार सुल्ताना क्रीज से बाहर निकली बड़े स्ट्रोक के लिए, पूरी तरह से लाइन को चूकी और विकेट के पीछे ऋचा घोष ने कोई गलती नहीं की। स्टंप बिखेर दिया, गिल्लियां बिखेर दी, फ्लाइट से पूरी तरह से इस मौके पर चकमा खा गई और भारत के लिए चौथी सफलता एक अहम मौके पर।
1: Yeah, this was that intent, that aggressive intent shown by the skipper looking to skip down the wicket, but Radha may have spotted that, just fired it in a little quicker, a little wider, and that's what made the difference. She missed it altogether, sweeping it under the bat, and she goes for 32 from 27. It's been a quality innings, but the first mistake has led to her wicket, and it's a smart bit of keeping and stumping as well from Richa Ghosh. And now that she is gone, a lot of responsibility now on the remaining batters to try and get them to somewhere in the vicinity of 140, even a 135 from here looks like it could be a good total. But this has probably meant the difference between 140 and 150. Had Nigar Sultana Jyoti been out there, the chances of that extra 15 or 20 runs would always have loomed over the Indians.
0: निश्चित रूप से यहाँ पर एक मौका जरूर इस विकेट के बाद बांग्लादेश ने गंवाया है। कप्तान का आउट होना परेशानी का कारण बन सकता है और वो जो रन है 10 से 15 रन पीछे रह सकती है बांग्लादेश की टीम। और अगली गेंद को इस बार नई बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेला एक रन के लिए। शोरना अख्तर नई बल्लेबाज आई है और इस एक रन से अपना खाता खोला। स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन चार विकेट के नुकसान पर। शर्मिन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी अब आन पड़ी है। इस बार उन्होंने लेग स्टंप की तरफ हटकर थोड़ा सा स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी, खेला इस गेंद को स्वीपर कवर की तरफ, एक रन इस मौके पर उनको मिला है और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन चार विकेट के नुकसान पर। राधा यादव की अच्छी गेंदबाजी, अभी तक भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज, हालांकि एक कैच आज भी उनसे छूटा था, लेकिन उस दबाव से बाहर निकलते हुए दो सफलताएं अब तक अर्जित की। अगली गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, एक रन दूसरे रन के लिए पलटना चाहती थी, लेकिन फील्डर तेजी के साथ इस गेंद पर हावी हुई, दूसरे रन की संभावना को तत्काल समाप्त किया। इस एक रन से स्कोर हो गया 109 रन चार विकेट के नुकसान पर। राधा यादव को थोड़ी सी मदद मिली है, जब गेंद को उन्होंने हवा में छोड़ा है, फ्लाइट दी है, तो टर्न भी थोड़ी बहुत उनको हासिल हुई है। इस बार लगभग फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया, एक रन और आता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन चार विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सफलता अर्जित की थी और अभी तक स्कोर 110 हुआ है। एक गेंद अभी भी इस ओवर की आनी बाकी है। इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला, एक रन के लिए भागी गेंदबाज, खुद पहुंची गेंद तक, थ्रो किया स्टंप की तरफ, लेकिन स्टंप पर गेंद टकराई नहीं, सुरक्षित अपनी क्रीज में दोनों बल्लेबाज। इसके साथ ही 17वें ओवर की समाप्ति, स्कोर 111 है चार विकेट के नुकसान पर। रन रेट इस समय बांग्लादेश का 6.53 का, और ये जो विकेट गंवाया बांग्लादेश ने पिछले ओवर में कप्तान का, ये कुछ रनों में कटौती कर सकता है बांग्लादेश के लिए।
1: इट सर्टनली कुड एब्सोल्युटली, बट लेट्स नॉट फॉरगेट शोरना अख्तर इज द प्लेयर इन फॉर्म इन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। स्कोर 39 नॉट आउट फ्रॉम 22 बॉल्स, जस्ट 19 इयर्स ऑफ एज, प्राइमरीली प्लेज एज अ लेग स्पिनर बट हैज द एबिलिटी टू हिट इट लॉन्ग एंड वाइड, एंड दैट्स व्हाट द इंडियंस मस्ट बी वेरी ऑफ। एंड हु न्यू राधा यादव रिस्टोर्ड टू द टीम टुडे इज करंटली द बेस्ट बोलर विद टू विकेट्स अगेंस्ट हर नेम। Those wickets coming of Shobana Mustari for 22 and Nigar Sultana Jyoti, the skipper, for 32. One of them caught by Deepti Sharma and the other stumped by Richa Ghosh. So India, in spite of some lapses in the field, now seem to have got their house in order as Deepti Sharma now comes in for her third, or for a fourth and final over the 18th of the innings. Perhaps we'll be looking to finish with seam then, with one over each left for Renuka as well as Nandini after this. This one was played in towards deep mid-wicket, which picks up another single and takes the score with that particular single along to 112 now for those loss of four wickets that they have lost in the past. 112 for 4, 17.1 overs bowled. The maximum that they've ever managed against India was 142, but that was chasing one of those two victories, or one of those three victories that they have had against the Indians in this format. That was in the 2018 Women's Asia Cup. Next ball played away on the onside, picks up a single. The boundaries certainly have dried up, almost 4 overs since the last boundary was scored, and that's meant that the Indian discipline has been in evidence, especially from the bowlers, and their spinners in particular doing a very good job. Deepti Sharma into her fourth and final over, none for 16 from her. Radha Yadav 2 for 15 from her 3 overs, and N. Sri Charani 3 tidy overs for 18 runs, no wickets taken. Next ball played away on the onside, but Deepti is very

0: quick across the turf. Very good fielder as it is, but especially of her own bowling. Gets across to it and makes sure that there's no possibility of any runs. If there are no wides or no balls, there are still 15 balls to come. And how well can Bangladesh maximize this? Oh no, in the meantime, another no ball signaled, which will mean that despite a dot ball, it is a free hit now for Shorna Akhtar. And she needs no second invitation, but this will probably just help her free herself up a little bit more. The youngster, the teenager, 19 years of age, takes strike. Skips down the wicket, plays it away on the offside, and it's just got in through the infield, and this is running away for a four after a long time.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: India have bowled a few no balls, and this is the first one perhaps which has been properly punished.
2: बिल्कुल, और खास तौर पर दीपी शर्मा का ये दूसरा नो बॉल था, और इस मौके पर जरूर फायदा उठाने में बांग्लादेश की बल्लेबाज कामयाब रही हैं.
0: Shorna Akhtar is a danger woman in this situation because she can wield the long handle effectively, as she showed. She was able to access the offside with a strong ring of fielders. This time looking to go leg side with the turn and plays it away on the onside. Wants to, but very quick fielding yet again from the Indians. N. Sricharani was very quick to get across from square leg, and that single takes the score along to 119 in the process. 119 for 4 at the moment. And thanks to that no ball, this is turning out to be a remarkably good over from the Bangladeshi perspective, because they've already picked up 8 runs and there are still 2 balls, legal balls to come. Deepthi round the wicket, worked away on the onside, almost returning to her on the bounce. And then she whips in a throw at the striker's end, almost as if to tell Sharmeen Akhtar that there's no getting away from me. Let's not think about pinching a single of that one. Last ball of the spell from Deepthi. Remember, poised on 355 international wickets, needs that one wicket to move ahead of Julan Goswami, but looks like the legend will hold on to that record, joint record, for the moment, unless something happens of this last ball. Deepthi comes down the wicket, just past Deepthi, and this has been struck nicely enough, but it won't run away for four, because Jemima Rodriguez is very good to clean up and restrict the scoring to just one. 120 for four, 18 overs bowled, just 2 overs to come.
2: तो दो ओवरों की बल्लेबाजी और बांग्लादेश की टीम को करनी है, और इस समय बांग्लादेश की टीम अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है. रनों के लिहाज से अगर बात करें, 120 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर. दीप्ति शर्मा को इस मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला. 4 ओवरों की गेंदबाजी उन्होंने कर ली है, जो अधिकतम गेंदबाजी की जा सकती है. 23 रन खर्च किए, कोई सफलता उनके खाते में आई नहीं. इकॉनमी उनकी 5.75 की रही. राधा यादव सबसे सफल गेंदबाज, 3 ओवरों में 15 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए हैं. लेकिन अब जो ये नया ओवर होगा, 19वां ओवर बांग्लादेश की पारी का, ये जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी? क्या राधा यादव पर दाव लगाएंगी कप्तान हरमनप्रीत कौर? ये देखना दिलचस्प होगा इस समय, क्योंकि अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो उसमें रेणुका सिंह ठाकुर का ओवर भी बचा हुआ है और नंदिनी शर्मा का भी ओवर बचा हुआ है. तो इंतजार इस बात का कि गेंदबाजी किसके हाथों में सौंपी जाती है. शर्मीन अख्तर 12 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं, और शोरना अख्तर ने 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं. कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता इस समय बांग्लादेश के लिए, अगर उनको स्कोर को 230 से 240 के बीच में कहीं पहुंचाना है. 250 का लक्ष्य अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहां से 2 ओवरों में 30 रन बनाने होंगे अगर 250 तक पहुंचना है, और 15 रन प्रति ओवर थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर लग रहा है.
0: एब्सोल्युटली, इट लुक्स लाइक इट विल प्रोबब्ली बी इन द विसिनिटी ऑफ 130-135 एट द मोमेंट, एंड दैट विल बी अ गुड टोटल कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बांग्लादेश लाइज इन इट्स स्पिनर्स. हाउएवर, इंडिया हैज अ पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप एज वेल, मेक नो मिस्टेक. इन दैट टॉप 6 और टॉप 7 देयर आर एटलीस्ट 6 प्लेयर्स हु हैव मोर देन 1000 रन्स इन दिस फॉर्मेट.
2: और नए ओवर की शुरुआत, और पहली गेंद पर ही भारत को क्या यहां पर कामयाबी मिली है. अगली गेंद की तैयारी, और इस गेंद को खेला है ऑन साइड में 1 रन के लिए. 122 5 विकेट के नुकसान पर. 3 के साथ ये रन पूरा किया. थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी, लेकिन तेजी के साथ रन के लिए भागी. 122 7 विकेट के नुकसान पर. 19वें ओवर की यह दूसरी गेंद, हवा में इस गेंद को उठाकर खेला है. फील्डर वहां पर थी, लेकिन अनुमान उतना सही था नहीं. 1 रन और फिर दूसरे रन के लिए भी तेजी के साथ पलटी. 2 रन और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ

0: 124 पांच विकेट के नुकसान पर। राधा यादव के हाथ में ही गेंदबाजी है। राधा की अगली गेंद को इस बार खेला है ऑन साइड में, फील्डर पहुंच पाएंगी क्या? नहीं, जी नहीं, इस मौके पर नहीं पहुंच पाए। चार रन आता हुआ।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: Yeah, it looks like an interesting decision because from the look of things, Sharmeen Akhtar has been retired out. So that has meant that Ritu Moni has come in and she's been more than effective. 8 of 3 balls. So perfect start for this little cameo from Ritu.
0: जी हाँ, तो एक विकेट हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने गेंदबाज के जरिए नहीं गंवाया बल्कि रिटायर्ड आउट हुई हैं बल्लेबाज। अगली गेंद और इस बार स्टंप्स पर जाकर सीधी टकराई है गेंद। एक और सफलता इस समय राधा यादव के लिए, भारत के लिए एक और कामयाबी और बांग्लादेश ने इस बीच अपना छठा विकेट गंवाया।
2: Radha firing it in. She's done this well. She's actually stuck to this fuller length, almost a block hole delivery. And Ritu Moni was just looking to make some room and access the offside. But as a result of the accuracy of the ball, it's the old dictum, you miss, I hit. And that's exactly what happened. A little bit of turn and that put paid to all hopes of Ritu. But she's done a good job. She's scored 8 of 4. And it's just the kind of finishing kick which this Bangladesh innings needed as the 6th wicket falls eventually for 128.
0: तो रितु मुनि इस गेंद को यॉर्क करा बैठी और अपना विकेट उन्होंने गंवाया है। बहुत जोरदार वापसी भारत की कुल मिलाकर। हालांकि रन पिछले 5 ओवर में बांग्लादेश ने तेज गति के साथ बनाए हैं, 42 रन बनाए हैं, 3 विकेट भी गंवाए हैं। इस वजह से थोड़ा सा दबाव बढ़ा है बांग्लादेश के ऊपर। क्या लक्ष्य होगा भारत के लिए इस मुकाबले में, ये देखना दिलचस्प होगा। शोरना अख्तर अभी भी मैदान पर मौजूद हैं, 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। नई बल्लेबाज राबिया आई है मैदान पर, राधा यादव की गेंदबाजी का सामना करेंगी। 3 विकेट ले चुकी है राधा यादव। अगली गेंद इस बार स्वीप किया है इस गेंद को बैकवर्ड स्कारले की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद हैं। 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन से खाता खोला नई बल्लेबाज राबिया ने और स्कोर बढ़ता हुआ 129 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी जो एक लक्ष्य माना जा रहा था कि हो सकता है इस मैदान पर कठिन 130 135 के आसपास का, उस तरफ तो बांग्लादेश की टीम पहुंच गई है। उनकी गेंदबाज कितनी प्रभावी रहेंगी भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी के खिलाफ, यह देखना होगा। इस बार क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को हवा में खेला था, मिस फील्डिंग या कहीं की गेंद तक पहुंच नहीं सकी। 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी मौजूद थी लगभग उनके हाथों में गेंद पहुंच गई थी। डाइव जरूर लगाई इस गेंद के पीछे लेकिन पहुंच नहीं सकी, लगभग उनकी उंगलियों को छूते हुए गेंद पहुंची 4 रन के लिए।
2: And this is why somebody like a Shobana Akhtar is so useful for these particular situations because she can be unpredictable as a batter. We've seen 2 of those boundaries in that similar position, just coming down the wicket and then making sure that she pierces the offside field with a lot of power. And it was that power and the placement which completely foxed Deepti Sharma, who was fielding at that mid-off position, diving away to her left but in vain. So Radha Yadav finishes her 4 overs, outstanding effort from her, 3 for 28 from her 4 overs. The other bowlers to have bowled out Deepti, none for 23 from 4. And apart from that, Nandini, N. Sri Charani, Renuka, all with 3 overs against their name, and Shefali Verma with 2. So the big question will be who comes back for that final over. Maybe Sri Charani, considering she has been the form bowler. And indeed, the ball has been handed to her, but it also hands the opportunity to the Bangladeshis to perhaps go for a few big shots against spin. It's Rabia, who herself is a leg spinner, now goes for the sweep of the very first ball, nails it straight towards Radha Yadav, fielding at deep backward square leg. 1 of the first over, first ball of the last over. 134 for 6, Rabia on to 2 from 2 balls and brings Shobana Akhtar back on strike, 13 from 8 inclusive of those 2 outstanding boundaries that we saw right through the offside. 6.99 the current run rate, they'll be quite pleased with it, Bangladesh. It sees them on course to reach that 140 mark, which we have mentioned a few times on this commentary. Whether that is enough or not, time will tell. But as a fielding side or as a captain, Nigar Sultana Jyoti will be very happy with the kind of start that they've made after winning the toss and batting. Sri Charani comes in again, looks for the Yorker, but it's very well bowled. Shobana Akhtar was making room away on the offside, on the onside rather, and because of that, she almost accessed too much room and ended up playing it straight towards point. Another dot ball, vital for India at this stage. 10 dot balls delivered by Sri Charani, 10 also by Renuka, and 7 by Deepti Sharma in this innings. Harmanpreet has a quick chat.

0: कप्तान निगार सुल्ताना के 32 रन और ओपनिंग बैटर फिरदौस के 33 रन की बदौलत बांग्लादेश ने भारत को लक्ष्य दिया है 137 रन का। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण टिकिया
1: और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा मौजूद है। चेतन, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका।
2: धन्यवाद।
1: विजय दहिया हमारे साथ मौजूद है जो एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और आजकल आपको कोचिंग के रूप में एक बतौर एक कोच T20 सर्किट में बड़े सक्रिय नजर आते हैं, कॉमेंटेटर है, ब्रॉडकास्टर है और आज हमारे एक्सपर्ट पैनल में मौजूद है। विजय, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: शुक्रिया।
1: और साथ साथ

0: शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद है. शशांक, बहुत बहुत स्वागत.
1: धन्यवाद.
0: सो 136/8 इज व्हाट बांग्लादेश हैव मैनेज्ड. चेतन, सबसे पहले आपके तरफ, योर फर्स्ट रिएक्शंस टू दिस स्कोर एंड हाउ द इनिंग्स पैंड आउट.
2: देखिए, अगर आप बात करें, बीच में एक आधा बॉलर तो ऐसा होता है जो रन ज्यादा लौटाता है. अगर आप बात करें, नंदिनी काफी एक्सपेंसिव आज रही, लेकिन जैसी फील्डिंग भारतीय टीम की थी, अगर आप 136 की बात करें, 137 का टारगेट है, ये कम से कम 115-120 के आसपास का टारगेट होता है अगर सारे कैचेस पकड़े जाते. देखिए, कैचेस विन मैचेस, ये हर समय कहा जाता है, कैचेस ही हैं, विकेट्स गिरेंगी, रनों पे अंकुश लगेगा. तो आज मुझे लगता है कि भारतीय टीम अपनी फील्डिंग से बिल्कुल नाखुश होगी. जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी भारतीय टीम ने कैचेस छोड़े थे, हमने देखा नतीजा क्या हुआ, और आज हमने कैचेस छोड़े हैं. और कोई एक दो कैचेस नहीं, मैं कहता हूं पूरा बैग भर के आज कैचेस छोड़े हैं. एक हो मतलब चार गेंदों में आपने तीन कैचेस छोड़ दिए, तो वो कहीं ना ड्रेसिंग रूम में चीजें जाती हैं. वो आपको आपके बैक ऑफ योर माइंड रहती है. जिसने कैच छोड़ा वो अगर बल्लेबाज है तो उसको वो चीजें अफेक्ट करती है. लच्छो 136 रन, 137 का टारगेट, भारतीय टीम आराम से इसको पूरा कर ले.
3: जी बिल्कुल, ड्रॉप कैचेस भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय है. लेकिन विजय, एक जो पॉजिटिव आज देखने को मिला है वो है राधा यादव की वापसी. अपने पहले ही मैच में उन्होंने तीन विकेट, वो भी तीन इंपॉर्टेंट विकेट, पहला शोभना मुस्तारी का, उसके बाद कप्तान निगार सुल्ताना का विकेट, और फिर बाद में रितु मोनी का विकेट. शानदार कमबैक.
4: बहुत ही बढ़िया कमबैक, और आई थिंक ये एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा बहुत बढ़िया रहता है, और इसी वजह से शायद जो भारतीय थिंक टैंक है उन्होंने ये सोचा होगा कि आप एक उस खिलाड़ी को जिसका कॉन्फिडेंस एक ऑपोजिशन के खिलाफ बढ़िया रहता है, उनको आप ये मौका दें. लेकिन एक और चीज़ की फिर से यहाँ पर पुष्टि हुई है कि एक स्पिनर को खिलाया गया इस मैच में, जो इस टूर्नामेंट में उनका पहला मैच है, वो आके अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. आप बॉलिंग कार्ड की तरफ नजर डालेंगे तो दो मीडियम पेसर्स आपके आपको वहां दिखेंगे जिन्होंने अपने चार ओवर पूरे नहीं किए. तो जो चिंता का सबब आपके लिए बना हुआ है आज, वो प्रेशर जो आप हम बात कर रहे हैं, वो पहले छह ओवरों में बहुत बढ़िया बैटर्स ने जो थे बांग्लादेश के, उन्होंने भारतीय टीम के ऊपर डाला. मुझे लगता है कि अगर आप मैच शुरू होने से पहले उन्हें इतने रन देते तो शायद वो ले लेते, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर वो ये डिसअपॉइंटेड होंगे कि उन्होंने 150 का आंकड़ा पार नहीं किया.
0: और इसी चीज की हम चर्चा पहले प्रोग्राम में भी कर रहे थे. हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 16 खिलाड़ियों का इस्तेमाल भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में कर चुकी है. 15 का स्क्वाड होता है. श्रियंका पाटिल चोट के चलते बाहर हो गई. 16 खिलाड़ियों का प्रयोग भारतीय टीम कर चुकी है. और शशांक, हमने देखा कि कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने अपने 15 के 15 खिलाड़ी अभी तक इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए हों. कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि शायद अभी भी हम खोज कर रहे हैं उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन की.
1: डेफिनेटली बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने. इससे ये भी पता चलता है कि प्रिपरेशन के लेवल पे कुछ कमियां रह गई थी, सिलेक्शन और प्रिपरेशन और एक वेल इंटीग्रेटेड विजन के साथ इस टूर्नामेंट में हम शायद नहीं आ पाए, या पहले मैचेस में खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो था उम्मीद से नीचे रह गया. तो ये तय बात है कि आप इतने सारे खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, तो एक तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी घटता है, दूसरा कि वो एक जो 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन होता है जो सब एक साथ टीम में मैदान में उतरती हैं और फिर खेलती हैं, वो भी कई बार वो ब्रेक होता है. तो कुल मिलाकर के ये कहीं से भी आदर्श स्थिति नहीं है, और चैंपियन टीम्स इस तरह से तो डेफिनेटली नहीं उतरती हैं मैदान में.
3: जी चेतन, आपने बात करी क्योंकि ड्रॉप कैचेस हमारी फील्डिंग की, लेकिन तारीफ करनी होगी बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना की भी. कई सारे रिकॉर्ड्स हैं T20 में उनके नाम. बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड उनके नाम है, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, और T20 में शतक जड़ने वाली पहली बांग्लादेशी खिलाड़ी भी हैं वो.
2: देखिए, आज 32 रन बनाए, और अगर हम उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 118 के स्ट्राइक रेट से जब आप रन बनाते हैं वहां से आप अनुमान लगा सकते हैं मिडल ऑर्डर की तरफ से रन बने हैं. देखिए, हर समय कहते हैं कि अगर ऊपर से अगर आपको रन ना मिले, जैसे पहली विकेट 8 रन पर गिर गई थी, उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी, साझेदारियों की जरूरत थी. साझेदारियों को आप बुनेंगे तभी आप मैच में आगे जा पाएंगे. और आप बांग्लादेश की बैटिंग देखें, नंबर 2, 3, 4 सबने आके रन बनाए हैं, बेशक 33, 22, 32. तो अगर आप उस स्थिति में टीम को लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसे विजय ने भी कहा कि 15 रन 14 और 15 रन, 150 साइकोलॉजिकल आपके

0: मतलब जहन में चीज चलती रहती है कि 150 का टारगेट है, बट 135 137 जो चेज करना है वो भी चीजें इतनी आसान होगी नहीं। देखिए बनाना पड़ेगा, उन्होंने रन ऑन बोर्ड लगा दिए हैं, आपको करने पड़ेंगे, और चेज हर समय प्रेशर में चीजें आसान नहीं होती। तो लेट्स होप एक अच्छी साझेदारी ऊपर से पन पे, अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे मिडल ऑर्डर के लिए, यू विल डेफिनेटली विन दिस गेम।
1: मैं एक बार ये चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने बांग्लादेशी कप्तान के बारे में बात करी, कुछ लोग कप्तान होते हैं और कुछ लोग नायक होते हैं, ये उनमें से हैं। इनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनका रोल सिर्फ वही नहीं है जो फील्ड में नजर आता है, इनका रोल फील्ड के बाहर भी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो आप जिनको आप आदर्श मानकर वो इंस्पायर करते हैं। तो अगर बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट के बारे में आप बात करेंगे तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी यंग लड़कियों को वहां पर इंस्पायर किया है इस गेम को खेलने के लिए। तो इनका जो कद है वो और ज्यादा बड़ा है उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी जब आप बात करते हैं कुछ नायकों की तो इनका वहां जिक्र होता है। ये उस तरीके की खिलाड़ी है
2: जी। नायकों पर हम फिर से आएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अपना नाम बताए और आप कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
3: जी नमस्कार, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अभिलाष से।
2: जी अपना सवाल पूछे।
3: जी मेरा सवाल है कि भारत की फील्डिंग में और सुधार की जरूरत, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए फील्डिंग आज के जिस तरह से ड्रॉप करें तो इसमें बल्स को और के आगे ड्रॉप करना संभव होता, लेकिन और इस मैच के बाद जो भारत का दो अढ़ाई जो मैच है रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो मैच कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे साउथ अफ्रीका भी अपनी तरफ से सेमीफाइनल की जगह बनाने की कोशिश करेगी, वहीं पर भारत को भी अगर ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए तो भारत के लिए आगे जाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस मैच से क्या मतलब कि रन रेट से कुछ अंतर पड़ सकता है, इसमें फर्क पड़ेगा।
4: जी तो भारत ने कैच ड्रॉप किए, लगातार ये चर्चा का विषय है, और शशांक आपकी तरफ आऊंगा मैं। पहले छह ओवर में हमने देखा चार कैच ड्रॉप हुए, पाकिस्तान के खिलाफ भी तीन कैच ड्रॉप हुए थे, कैसे देखते हैं आप इसको, और ऐसे में फील्डिंग कोच की भूमिका को कैसे देखते हैं?
5: ये बड़ा दिस इज रियली ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक भारत की टीम डेफिनेटली तीन चार जो बड़ी टीम्स हैं महिला क्रिकेट में वर्ल्ड में, उनमें से एक टीम है, इस प्रकार की फील्डिंग का प्रदर्शन जो है, मुझे लगता है कि पहले भी कैचेस छूटते हैं मैचेस में और मिस फील्डिंग्स होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा खराब प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, राधा यादव जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं उन्होंने दो कैच छोड़े थे और आज भी उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ा, तो और बहुत सारी मिसफील्डिंग्स हुई, तो इससे ये क्यों हो रहा है ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है फील्डिंग कोच पे। लेकिन इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, बड़े मैचेस का इनको अनुभव है, तो ये और ये एक ऐसी टीम से खेल रही है जहाँ पे इनके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है, दे आर बिग फेवरेट्स टू विन दिस मैच, और बांग्लादेश को 23 में 20 मैचेस में हराया हुआ है इंडिया ने इसके पहले, तो इससे मुझे लगता है कि एक जिसको डिस्पिरिटेड टीम बोलते हैं ना, डिस्पिरिटेड और ये हारी हुई टीम, जैसे कि इनको लगता है कि अब ये टूर्नामेंट में इनका कोई भविष्य नहीं है, और जो फील्डिंग प्रदर्शन है इस मैच में उनकी बैटिंग पे शायद असर पड़ सकता है, और ये 137 रन जो हैं वो उतने आसान नहीं होंगे, और यही अगर ऐसा ही प्रदर्शन भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा तब तो कोई मतलब क्या कहें, आप समझ सकते हैं जो सबसे अच्छी टीम है।
4: जी तो अपने श्रोताओं को बता दें कि बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया भारतीय टीम के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है टी20 आईज में, तो 137 की चुनौती है, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं डिस्कस करने लायक, विजय फटाफट उन पर नजर डालेंगे। श्री चरणी ने आज एक बार फिर इंप्रेस किया, फिर दो विकेटें ली है, और इसी के साथ टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाली वो खिलाड़ी बन गई है,
1: पहला वर्ल्ड कप खेल रही हैं अपने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप है उनकी तरफ अगर नजर डालेंगे तो वो कौन से ओवर डालती हैं, सबसे मुश्किल ओवर आपको डालते हुए नजर आती हैं, पहले छह ओवर में डालती हैं और उसके बाद बहुत कम है वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें कि आखिरी ओवर में टी20 क्रिकेट के अंदर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करते हुए दिखे, और वो भी एक ऐसी खिलाड़ी जो अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आई है, नंबर वन बॉलर है इस समय टी20 क्रिकेट में। जहां तक वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में बात करें, ये सिर्फ स्किल के बारे में नहीं बताता है, ये इस यंगस्टर के माइंडसेट के बारे में भी बताता है कि वो मानसिक रूप से भी कितनी मजबूत है।
2: जी चेतन, अभी बात की विजय ने नायकों की, जैसे आज निगार सुल्ताना की परफॉर्मेंस रही है, और पिछले कुछ मैचेस में हम और खिलाड़ियों को देख चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका के लिए मारिजान काप ने वो काम किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस पेरी ने वो काम किया पाकिस्तान के विरुद्ध अपने मैच में।

0: अगर हम बात करें भारतीय टीम की तो भारत के सबसे अनुभवी प्लेयर हरमनप्रीत कौर 201वां टी20 उनका ये होगा। उनको स्टार्ट हर बार मिल रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं एंड शी इज नॉट प्लेइंग हर नेचुरल गेम, एक शेल में दिख रही हैं।
1: देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोशिश करते हैं, वो कोशिशें आपकी कामयाब होती नहीं है। हरमनप्रीत मतलब 200 अभी आपने भी कहा 201 का इंटरनेशनल गेम्स खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए वर्ल्ड कप का प्रेशर है और ये एक प्लेयर आपको मैचेस जिता नहीं पाएगा, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं ला पाएगा। देखिए इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव एफर्ट। स्मृति की आप बात करें, शेफाली की बात करें, जमीमा की बात करें, दे हैव टू कम कलेक्टिव। देखिए बहुत भरोसा है, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि ऊपर के क्रम के बल्लेबाज जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे ना, आप मैचेस नहीं जीत पाएंगे। आज भी ये अप्लाई करता है भारतीय टीम को, आप जाइए ऊपर से रन्स बनाइए, शेफाली और स्मृति की जैसे हम बात करते हैं ऊपर से अच्छा स्टार्ट दें, देन ऑटोमेटिकली आपके पास जमीमा है, उसके बाद आपके पास
2: क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार के लिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया, तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
4: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
5: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
4: And together becoming a force multiplier.
3: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
4: Partnership with UK is taking many more dimensions.
5: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
3: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराध

आर्थिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश

0: ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hiked to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from July 15. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
3: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
2: Venezuela's acting president, Delcy Rodriguez, today said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes rocked the country. The acting president had said earlier that at least 32 people had died after last night's 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes and that the toll was expected to rise. The quakes were among the strongest to strike Venezuela in more than a century and could be fell throughout the region. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile,

0: India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।
2: भारत ने पाकिस्तान को हराया था 64 रन से, नीदरलैंड्स को हराया था 95 रन से, दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिली थी। अगली गेंद को इस बार लॉफ्ट किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ और गेंद 4 या 6 रन अंपायर के इशारे का इंतजार और अब इशारा आता हुआ 4 रन का।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस मौके पर, पूर्वानुमान बिल्कुल सही था। शेफाली वर्मा का क्रीज से बाहर थोड़ा सा अपने कदमों को निकाला, गेंद की फ्लाइट तक पहुंची और फिर खेल दिया अपने सीधे बल्ले से ठीक सामने की तरफ। शेफाली वर्मा का एक और शानदार चौका, ये उनकी पारी का 6ठा चौका और भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें अभी तक इस ओवर में हुई हैं शानजीदा के, 2 गेंदें अभी भी बची हुई हैं, कुल मिलाकर 6 रन उन्होंने खर्च किए हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, फिर से लॉब किया इस गेंद को उसी दिशा में, फिर से 4 रन।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: 2 लगातार चौके दबाए।
4: Absolutely, and taking Shanjida Akhtar Meghla specially to the cleaners. Even her first over was quite expensive, 12 of it, and now 2 successive boundaries, making this a good over as well. Maximizing the power play, and yet again, Dharmendra, if you notice, straight bat shots. She's not going for anything fancy, just playing with the turn and playing with the angles.
2: बिल्कुल सीधे बल्ले से लगातार वो स्ट्रोक खेल रही हैं, और 62 हो गया भारत का स्कोर इस अंतिम गेंद पर 1 रन के साथ। ओवर की समाप्ति भी कुल मिलाकर 6 ओवरों की समाप्ति, और अभी तक भारत ने 1 विकेट गंवाया और ये दूसरे रन के लिए भी पलटी है। जी हां, 2 रन इस अंतिम गेंद पर, 63 हो गया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवरों के बाद।
4: Yeah, what a proper batting masterclass this is from Shefali Verma, and she has been in runs in this tournament. Began with 6 against Pakistan, got 55 against Netherlands, got that 31 of just 15 balls against South Africa, and you wish really from an Indian perspective that if she had batted slightly longer, it could have led to something significant. But today as well, she's gotten off to a start. She's moved into her 40s, batting on 45 at the moment with lots and lots of boundaries in that. 7 fours and a 6, and that has meant that it has really put a lot of pressure on Bangladesh. So India much more comfortably placed, 22 runs ahead of the point that Bangladesh were at the power play. So considering that, you would expect this to be a bit of a cakewalk for India, and maybe it may not be a bad idea to maybe get somebody from the middle order to walk in next who needs a little bit of runs, maybe skipper Harmanpreet Kaur herself, who's getting a few starts but not been converting them to a big score. Jemima Rodrigues has also been short on runs, 119 and 12 her scores thus far in this tournament. So things looking quite good from an Indian perspective. But really the big match is the one coming up on Sunday. Assuming they get the job done today. Cricket is a strange thing. Stranger things have happened. You get one wicket, you never know, things could turn around. And Bangladesh incidentally haven't gone through their senior most bowler, Nahida Akhtar. Somebody who has over 100 wickets. The left-arm spinner hasn't come on to bowl as yet. So maybe her introduction could just change things around. But at this moment, it does look unlikely, Dharmendra, that Bangladesh will be winning this match unless somebody can bowl a miraculous bowling spell.
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं देवायन आप, क्योंकि इस समय जिस तरह की बल्लेबाजी शेफाली कर रही हैं, कोई भी दबाव भारतीय टीम के ऊपर नहीं है। एक विकेट जरूर भारत ने गंवाया है स्मृति मानधना का, लेकिन उसका कोई खास असर शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी पर दिख नहीं रहा। उनको एक साझीदार चाहिए जो उनका साथ निभा सके, और पूरी आजादी के साथ खुलकर बल्लेबाजी शेफाली की तरफ से, क्योंकि अभी तक 7 चौके बहुत ही बढ़िया उन्होंने लगाए, एक छक्का भी उनकी इस पारी में है।
4: Yeah, 74 required of 84 balls, so India considerably far ahead. Ramesh Parab, our statistician, just helping along with those numbers. We owe a lot of what we say to him, as well as Venkat Bal Reddy, our scorer, and the entire team just helping us along with every little bit of information, nugget of info that we

0: this first over of the match for Nahida Akhtar. She comes round the wicket to Shefali, just outside off stump. Under edge. Oh, and this could be out. It is a stumping. Shefali had just momentarily stepped out of the crease. And Nigar Sultana Jyoti was very quick to respond. We'll have to wait for whether it's a run out or a stumping, because it did look like it took an inside edge. And then it was sharp reflexes from the captain. Think this is a big wicket, but it may have come too little too late for Bangladesh, Dharmendra.
1: Yeah, ye wicket aaya hai Bangladesh ke liye. Dusra wicket Bharat ne gawaya hai. Aur Shefali Verma is mauke par gend ko unhone khela, balle ke andruni hisse par gend chakra kar wicket keeper ke paas gayi. और फिर क्रीज से बहुत ज़्यादा बाहर पकड़ी गई शेफाली वर्मा. अपने सिर को उन्होंने ठोका, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा लगा कि अपना विकेट इस मौके पर गंवाया है.
0: सो इट हैज ऑफिशियली गॉन डाउन एज अ स्टंपिंग. सो नाहिदा अख्तर, बिकॉज शी इज कम ऑन दिस लेट, इट बेग्स द क्वेश्चन, व्हाट वाज इट डूइंग और व्हाट वर दे डूइंग बाय नॉट ब्रिंगिंग हर ऑन अर्लियर. It is something that we were discussing on commentary on repetitive occasions, and that's what's proved to be the downfall of India's top scorer thus far. Nonetheless, she's done the job and she's put India, one would think, on the road to victory. But as we were discussing, Dharmendra, at the drinks break, that strange things happen in cricket. Whoever comes next must try and carry on that momentum. They cannot let Bangladesh suddenly come back and get a foothold in this match.
1: Yes, after two salami ballebazon ka wicket lene ke baad, to nishchit roop se thoda sa unka manobal wapas lauta hoga. Agli gend aur is gend par koi bhi run nahi.
0: And interesting, it's Richa Ghosh who's come in at number 4. So India looking to up the ante and perhaps just try and finish this match in a hurry. So maybe that net run rate is also something that the Indians have kept in mind. But beautiful ball, the very first ball from Nahida. And Richa just showing the same thing to Yastika, that the ball was tossed up again, flighted outside off stump, beats the outside edge. Beautiful first over, one wicket and three singles of it. Nine overs bowled, India 76 for 2.
1: Bharat ko yahan se abhi bhi 66 gendon mein 61 run chahiye. 8 wickets surakshit hain aur pichle over mein bahut hi beshkimti wicket Bharat ne gawaya hai. Out hone wali ballebaz Shefali Verma, jinhone ardhshatak zarur banaya. 34 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुई, और 76 जब भारत का स्कोर था तब भारत ने वो दूसरा विकेट गंवाया और अच्छा खासा ओवर समाप्त हुआ नाहिदा अख्तर का, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए और शेफाली वर्मा जैसा महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब रही हैं. रन रेट भी थोड़ा सा भारत का नीचे आया है विकेट गंवाने के बाद. यस्तिका भाटिया और ऋचा घोष की जोड़ी मैदान पर है. ऋचा घोष को, जैसा देवायन ने बताया, कि संभवतः इसी सोच के साथ मैदान पर भेजा गया है कि भारत जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को समाप्त करना चाहता है ताकि नेट रन रेट और बेहतर हो सके. भारत का नेट रन रेट के मामले में अभी भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के बाद. दक्षिण अफ्रीका उससे नीचे तीसरे स्थान पर है. इसी वजह से अंक तालिका में अंक बराबर होने के बाद भी जो है वो भारतीय टीम आगे है.
0: One more catch drop, because this was played straight back at Rabia, but just not able to hold on. Yastika Bhatia living dangerously.
1: जी हाँ, एक और मौका भारत के विकेट का था. बांग्लादेश की गेंदबाज राबिया के पास फॉलो थ्रू में एक आसान सा मौका आया था. यास्तिका ने सीधे सामने की तरफ सीधे बल्ले से खेला था. आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन ये मौका हाथ से जाता हुआ. दो कैचेस तो अभी तक बांग्लादेश ने भी कम से कम टपकाए. इस बार इस गेंद को पैडल स्वीप कर दिया है विकेट के पीछे की तरफ, और ये 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: बिल्कुल आसान सी ये गेंद थी यास्तिका के लिए. दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी, बढ़िया ओवर की शुरुआत की थी, फॉलो थ्रू में एक मौका आया था, और इस बार लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद. आसानी से इस गेंद को देखा, छोटी गेंद भी थी, और पूरा फायदा उठाया, खेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए. इस चौके के साथ अब भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 80 दो विकेट के नुकसान पर. दो विकेट भारत ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के गंवाए हैं. पहले स्मृति मानधना का विकेट गंवाया और उसके बाद शेफाली वर्मा आउट होने वाली बल्लेबाज थी. ऋचा घोष ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया है. दो गेंदों का सामना किया जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा वो समय दूर नहीं है जब उनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं. 57 रन अब चाहिए भारत को. 64 गेंदों का सामना करना है. 10वां ओवर चल रहा है भारतीय पारी का. अगली गेंद इस बार कट किया इस गेंद को, और तेज गति से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, पीछे भाग रही है तो फील्डर क्या रोक पाएंगी. गेंद की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई है, और डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका गया है. 2 रन और फिर क्या ये 30 रन के लिए पलटेंगी. जी हाँ, 30 रन भी पूरा कर लिया आसानी के साथ.

0: माँ आउट होने वाली बल्लेबाज थी। ऋचा घोष ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया है, दो गेंदों का सामना किया जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा वो समय दूर नहीं है जब उनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं। 57 रन अब चाहिए भारत को, 64 गेंदों का सामना करना है। 10वां ओवर चल रहा है भारतीय पारी का। अगली गेंद इस बार कट किया इस गेंद को और तेज गति से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, पीछे भाग रही है तो फील्डर क्या रोक पाएंगी, गेंद की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई है और डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका गया है। 2 रन और फिर क्या ये तीसरे रन के लिए पलटेंगी, जी हाँ, तीसरा रन भी पूरा कर लिया आसानी के साथ। 1 रन जरूर इस मौके पर बचाया फील्डर ने, 3 रन और आता हुआ यास्तिका के बल्ले से। 83 हो गया भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। यास्तिका भाटिया पहुंच गई 15 गेंदों में 21 रन पर, उनकी पारी में अभी तक 3 चौके आए हैं। आज फील्डिंग दोनों ही तरफ से उतनी अच्छी हुई नहीं है, भारत को भी सोचना होगा अपनी फील्डिंग पर ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण मैच से पहले, क्योंकि उस मैच में एक भी मौका गंवाना यानी पूरे मैच का परिणाम बदलने के समान हो सकता है। अगली गेंद इस ओवर की 4थी गेंद और इस गेंद को इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, डाइव लगाकर रोकने का प्रयास और गेंद को रोक लिया गया, रन इस मौके पर कोई भी नहीं बनेगा। इस ओवर में अभी तक 7 रन आए हैं, 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें अभी भी राबिया की बची हुई हैं। ऋचा घोष स्ट्राइक पर हैं, 3 गेंदें खेल चुकी हैं, ऋचा के बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं आया है। यास्तिका दूसरे छोर से वो काम कर रही हैं जिस भूमिका के लिए ऋचा को मैदान पर बुलाया गया है। 15 गेंदों में 21 रन बनाए हैं यास्तिका ने। रिक्वायर्ड रन रेट भारत के लिए 5.22 का और वर्तमान रन रेट 8.58 का। अंतिम गेंद इस ओवर की और इसको खेला है ऑन साइड में 1 रन के लिए और फिर दूसरे रन के लिए पलटने का प्रयास, लेकिन दूसरा रन यहां पर है नहीं। इसके साथ ही 1 रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में, बढ़ता हुआ स्कोर 84 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 8 रन, जिस गति से भारत रन बनाता चला जा रहा है उसको अभी तक लगातार कायम रखने में कामयाबी। इस बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास, खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन और आता हुआ ओवर की समाप्ति। राबिया के इस ओवर में कुल मिलाकर 9 रन आए और भारत का स्कोर हो गया 10 ओवर के बाद 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
1: मच मोर कंफर्टेबली प्लेस देन व्हाट बांग्लादेश वर एट दिस स्टेज, 52 नाउ रिक्वायर्ड फ्रॉम 60, इट डज लुक लाइक अ मेयर फॉर्मेलिटी बट दे आर स्टिल ऑफरिंग चांसेस एंड यू नेवर नो बांग्लादेश इफ दे कैन कन्वर्ट सम ऑफ दोस समथिंग कुड स्टिल गिव फॉर देम। But not a surprise to see Richa Ghosh in at number 4, because when she was 16 years of age, she made her T20I debut in February 2020 against Australia in Australia. And in her very first match, the Indian team management thought it fit to send her in at number 3. She played as a specialist batter in that match, only made 17, but showed signs of the kind of courage and the kind of ability that she had. And also came on as an impact sub, or rather a concussion sub, in fact, in that World T20 final that year. Nayid Akhtar begins a fresh over, yet again driven straight back towards the bowler, wasn't very far away yet again from perhaps being a cotton bowled, but Nayida unable to stop it this time, and Yastika picks up a single from the ricochet as the ball goes away towards long on. Takes the Indian score along to 86 for 2, Yastika Bhatia with an impressive 23 from 17, but this is the phase where it can get a little ropey for her sometimes in these middle overs when the field gets spread and she doesn't get those boundaries to her will. Next ball just outside off stump. They are also doing a good job of keeping Richa Ghosh quiet, not offering her any pace to work with, because they know that much like Shefali Verma, her fellow 22-year-old, Richa Ghosh also loves feeding off that pace. Both these young superstars making their impression at 16 in that World T20 back in 2020, which was played in Australia. And Shefali Verma's bat throughout made a lot of runs. This time outside off stump, cut away fiercely all the way for 4 to backward point.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: Just a bit of room on offer and that's all it takes. Richa Ghosh has very strong wrists and those came into action and just made sure that she flayed it away. And once she did that, once she found the gap, there was absolutely no way that deep point was catching up with it. Nahid Akhtar was a little unhappy, but she really should be more unhappy about the fact that she was offering width to Richa Ghosh. So that boundary takes India along to 90. For the loss of that those 2 wickets, the 2 openers dismissed, Smriti Mandana for 8 and Shefali Verma after scoring a fantastic 53 from 34 runs, her second half century of this ICC World T20 2026. outside of some cutaway yet again.

0: Again, finds the gap, threads the needle, four more.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: And now that Richa Ghosh, Dharmendra has come to terms with the pace of this wicket, she's figuring out what Nahida is doing and responding accordingly, playing it very late.
2: बस वक्त की ही तो बात थी. इस बात का पूर्वानुमान था कि जैसे उनको मौका मिलेगा वो मौका गंवाएंगी नहीं और लगातार दो चौके इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अब उन्होंने पिच के मिजाज को भांप लिया है और इस तरह के स्ट्रोक्स उनके बल्ले से आते रहेंगे.
0: Just 43 runs required now as India move along to 94 for 2 and from 1, from 5 balls, she's on 9 from 7. The next ball looks for the sweep. It's a big LBW appeal. It's been given. India immediately review. It did look interesting, but well, it might stay umpire's call. That is the only concern. Otherwise, it seemed like it straightened, but may have been just about impacting somewhere around off stump. If not outside, what do you think, Dharmendra? That was close.
2: जी बहुत नजदीकी ये मामला है और चूंकि अंपायर का इशारा आया है बांग्लादेश के पक्ष में तो ये थोड़ी सी परेशानी की बात हो सकती है. बल्ले का किनारा क्या लिया है इस गेंद ने ये भी देखना होगा. बहुत करीब बहुत नजदीक से बल्ले के गई है गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर भी ऐसा लग रहा है एक बार की ये गेंद जा रही थी. ऊंचाई भी थी इस गेंद में तो yeah. अभी तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार करना होगा.
0: या डेफिनेटली नॉट टेकिंग एनी ऑफ द बैट. इनफैक्ट द बैट मूविंग क्वाइट क्विकली एंड बीटन बाय द पेस ऑफ दैट लैक ऑफ पेस. Richa Ghosh was completely committed to that sweep shot, but the question is where is that impact and is it actually going on to hit the stumps. The one factor in her favor, as we mentioned before, is that it has already been given out. So if it even as much as just glances a little bit of the off stump, then that will remain out. But there was a shuffle across. For the moment, it does look like the impact is outside off, so it would have gone on and missed the off stump in any case, perhaps. But yeah, impact outside off. India earn a reprieve, and Richa Ghosh given out. LBW at 9 is spared because of the timely review that she took.
2: जी हाँ, बहुत सही समय पर उन्होंने वक्त गंवाए बिना रिव्यू लिया और उनके पक्ष में गया ये रिव्यू. और इस तरह से जो भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा था वो टल चुका है.
0: Nahida Akhtar in her second over, second consecutive time that she has almost picked up a wicket, and again it begs the question, what was she doing coming in as the fifth bowler? So some strange decisions from Bangladesh, perhaps a little bit too defensive in their overall approach, especially while defending 137. Last ball played back towards the bowler and she does a great job diving away to her right and making sure that there's no runs on offer. 11 overs bowled, 94 for 2 India.
2: तो ये ओवर काफी कुछ घटनाओं भरा रहा. एक ऐसा मौका भी आया जब Richa Ghosh को अंपायर ने आउट करार दिया. उन्होंने रिव्यू लिया और उस रिव्यू में ये साफ तौर पर सामने आया कि इंपैक्ट जो था गेंद का वो ऑफ स्टंप के बाहर था और Richa Ghosh बच गई. हालांकि अंपायर का फैसला बांग्लादेश के पक्ष में जरूर गया था, लेकिन इंपैक्ट की वजह से Richa Ghosh मैदान पर अभी भी मौजूद है और भारत का स्कोर 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर्स के बाद. रन रेट अभी भी भारत का 8.54 का. रिक्वायर्ड रन रेट 5 से भी नीचे आता हुआ 4.77 का. और अंतिम जो 5 ओवर रहे हैं भारत के लिए उसमें 31 रन आए हैं. एक विकेट का नुकसान हुआ है और वो विकेट था शेफाली वर्मा का. 2 विकेट पर 94 रन बनाए हैं. नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस गेंद को लॉक किया है सीधे फील्डर के हाथों में. ये गेंद जाकर समाई है. ये नुकसान भारत के लिए बहुत बड़ा. यस्तिका भाटिया का विकेट भारत ने इस मौके पर गंवाया है. क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास था. रितु मोनी ने चतुराई भांप ली थी बल्लेबाज की. गेंद की लंबाई को थोड़ा छोटा कर दिया. गेंद तक पहुंच नहीं पाई बल्लेबाज और सीधे एक आसान सा कैच पकड़ा गया मिड ऑफ पर. इस तरह से भारत के लिए तीसरे विकेट का नुकसान 94 पर. और यस्तिका भाटिया इस समय मैदान से बाहर जा रही हैं. 18 गेंदों में 23 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके लगाए, लेकिन भारत के लिए एक बढ़िया पारी खेल रही थी. उनके विकेट के पतन से निश्चित रूप से जो रनों की गति है उस पर असर पड़ सकता है. और भारत का जो लक्ष्य है इस समय कि न सिर्फ मैच को जीता जाए बल्कि रन रेट, नेट रन रेट जो है उसको और बेहतर किया जाए, उस पर थोड़ा सा विराम लग सकता है.
0: एब्सोल्युटली. यस्तिका भाटिया अगेन just promising a lot but delivering not enough. 8 of 2 at one stage, so consequently she faced another 16 balls and she was only able to add 15 runs to that. and that sums up some of the issues that she has had in her career in T20 cricket.

0: It brings in Jemima Rodrigues, though. And I just think, even though she's come in at number 5, she's probably best suited to bat at number 3. If you recall, in the 50-over World Cup as well, India played its best cricket when Jemmy Rodrigues came in at number 3.
1: और उसकी वजह शायद ये हो सकती है पीछे भेजने की कि इस टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म उतनी अच्छी रही नहीं है. इस बार गेंद को ड्राइव किया उन्होंने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, एक रन के लिए खाता खोला जेमिमा रॉड्रिग्स ने. और इस एक रन से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर. सफलता निश्चित रूप से बांग्लादेश की उम्मीदों को बढ़ा रही है. 3 विकेट उन्होंने लिया है इस मैच में. संभावनाएं उनके लिए तभी बनती हैं जब वो लगातार विकेट लेते रहें और आश्चर्यजनक कोई परिणाम उनके पक्ष में. एज भी गेंद को कट करने का प्रयास किया था रिचा ने, लेकिन गेंद बल्ले से काफी ज्यादा दूर थी, थोड़ी सी नीची भी रही और पूरी तरह से चकमा खा गई रिचा घोष. 10 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रही हैं. एक बार फिर से अंपायर से स्टांस ले रही हैं अपना और अब खेलने के लिए तैयार हो रही हैं. लेग स्टंप का स्टांस उन्होंने लिया है. जगह चाहती हैं ऑफ स्टंप के बाहर कि मिले उनको और कोई बड़ा स्ट्रोक वो लगा सकें. उनकी बल्लेबाजी की शैली भी यही है, बड़े स्ट्रोक्स लगाती हैं, तेजी से रन बनाती हैं और अब अगली गेंद का सामना करेंगी रितु मोनी की अगली गेंद. और इस बार इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री की तरफ. 1 रन आसानी से फील्डर पीछे मौजूद हैं. इस 1 रन से स्कोर अब भारत का हो गया 96 3 विकेट के नुकसान पर. जो भारत ने 3 विकेट गंवाए, दोनों सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा और अभी अभी यास्तिका भाटिया का विकेट भी भारत ने गंवाया. एक आसान सा कैच लपका गया था मिडॉन पर यास्तिका का. अगली गेंद और इस बार इस गेंद को कट किया है खूबसूरत तरीके से, लेकिन पॉइंट पर मुस्तैद फील्डर डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका. निश्चित रूप से कुछ रन बचाने में कामयाबी मिली है इस बार. 96 अभी भी भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर. भारतीय खेमा थोड़ा सा निश्चिंत क्योंकि उनको ये तो लग रहा है कि जीत तो उनके पाले में आने वाली है, लेकिन कितनी जल्दी आएगी इसकी भी एक संभावना भारतीय टीम तलाश रही है. अंतिम गेंद इस ओवर की, 49 गेंदों में भारत को चाहिए 41 रन. रितु मोनी की ये गेंद और इसको ऑन साइड में खेला है मिड विकेट पर. जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई. 12वां ओवर समाप्त हुआ और स्कोर भारत का 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर.
0: 42 विन फ्रॉम 8 ओवर्स, सो एक्जैक्टली 5 रन्स पर ओवर रिक्वायर्ड. बट क्वाइट ओवर्स विल परहैप्स जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन. वी सॉ दैट हैपन इन द प्रीवियस ओवर वेयर रितु मोनी गेव जस्ट 3 रन्स एंड पिक्ड अप दैट 1 विकेट. And that kind of impact will help. If another bowler or two can deliver another couple of such overs, then we can suddenly see India staring at a situation where they need somewhere in the vicinity of 6 runs per over in the last 5 overs or so. But for the moment, they seem to have this chase well under control with 2 explosive batters out there in the middle, Richa Ghosh and Jemima Rodrigues, and still some batting firepower to come. They've got the skipper, Harmanpreet Kaur. They've got Deepti Sharma. And after that, it's basically the bowlers. So Bangladesh need wickets. Rabea has been a little inconsistent with her line and length. The leg spinner begins her 3rd over. And the very first ball outside off stump, punched away by Jemima towards sweeper cover, where Fahima Khatun is fielding as the substitute fielder. Rabea's 2nd over particularly was rather expensive. 9 runs of it, which began with a shot which was played by Yastika Bhatia behind the stumps, and from there on she gave another 3 to Yastika and then another couple of singles. But otherwise it's been good tidy stuff. This time looking for the sweep, this one will be given out and this one I suspect will stay out, although she has gone in for the review yet again. But this looked a lot closer, Dharmendra, because it kept a little low and after pitching it straightened as well.
1: Yeah, nishchit roop se is baar thodi si zyada mushkil hai Richa Ghosh ke liye. Sweep karne ka prayas kiya, gend ki line ko puri tarah se chuki, gend pad par takrai umpire ki ungliyan aasman ki taraf aur mushkilein thodi si is samay badhti hui Richa Ghosh ki, kyunki aisa lag raha hai ki gend lagbhag stumps ki line mein unke pad par takrai hai, niche bhi rahi hai gend. तो रिव्यू जरूर लिया है, लेकिन उसका कितना फायदा मिलेगा ये इंतजार जरूर करना होगा. लेकिन पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि रिचा घोष मुश्किल में है.
0: एब्सोल्युटली नो कॉन्टैक्ट विद द बैट व्हाट्सोएवर, सो मिसिंग द स्वीप बाय अ ह्यूज डिस्टेंस ऑन बोथ ओकेजंस. एंड इट प्रॉब्ली जस्ट शुड सर्व एज अ लिटिल नोट दैट इन दैट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया द स्वीप इज अ शॉट व्हिच अनलेस शी इज एब्सोल्युटली श्योर शी शुड प्रॉब्ली नॉट पुल आउट ऑफ अ शेल्फ बिकॉज शी इज गॉट सो मच ऑफ पावर. An ability to go straight down the ground as well, just across the line is where she winds up in a little bit of trouble. and just judging

0: by her body language as well. Now that she's seen a replay, she doesn't seem to convince that she will escape this time. In fact, the wicket stays at umpire's call. So the height was perhaps the only factor. It wasn't a bad review in that sense. But Bangladesh have struck yet again. Richa Ghosh up at number 4, but it doesn't come off. She has to go back for 10. And it's an important wicket for Rabia Khan because she's the leg spinner. And now that she has that wicket behind her, in a third over, maybe she'll bowl with a lot more confidence. India rocked at 98 for 4.
1: इस बार अगर अंपायर का फैसला ऋचा घोष के खिलाफ न गया होता तो शायद इस बार भी लकी वो साबित हो सकती थी, लेकिन चूंकि अंपायर ने फैसला आउट कर दिया था, गिल्लियों पर गेंद टकरा रही थी और तीसरे अंपायर ने आउट करार दिया. इस तरह से भारत को लगने वाला ये एक और नुकसान और चौथा विकेट गवाया है भारत ने. इस मौके पर ऋचा घोष का विकेट बहुत महत्वपूर्ण विकेट भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत के दिमाग में, भारतीय खेमे के दिमाग में जो जल्दी से जल्दी मैच को जीतने की एक रणनीति थी, उस पर काफी कुछ असर पड़ा है इस विकेट के गंवाने के बाद.
0: हरमनप्रीत कौर द स्किपर कम्स इन एंड इमीडिएटली निगर सुल्ताना ज्योति हैज अ स्लिप इन प्लेस बिकॉज शी डज लव प्लेइंग दोज लैप शॉट्स, दोज स्कूप शॉट्स एज वेल. Rabia with the very first ball right on the money, just about at middle and leg, and she taps it away on the onside, picks up a quick single. This will do Harmanpreet's cause a world of good as well, just getting off the mark immediately, because this can suddenly become a pressure situation. Just the way that Richa Ghosh wicket fell, India at that stage were coasting along not long ago. They were 94 for 2, but suddenly inside 4 runs they have lost 2 wickets and now stare at 99 for 4. And perhaps the last recognized pair. There are all-rounders after this, the likes of Deepti Sharma, as well as a couple of the bowlers who can bat quite usefully, but you don't want them coming in with too many balls left or too many runs left to get. Next ball outside off stump, Jemima drives it through towards long off, picks up a single and brings up the Indian 100. 12.4 overs. The first 50 had come very quickly. That had come off just about 28 balls. But the next one has taken a slightly longer route to get there. 100 for 4, 37 required now of 44. What Bangladesh wouldn't give for something like 15 or 20 runs more in the bag right now, but that hasn't happened. And that's why they have to work with the target that they have set, India. 137 today in this crucial Group 1 encounter of this 2026 T20 World Cup. Rabia comes in once again outside off stump. Harmanpreet goes for the cut and just about eludes the under edge. There's always been a spicy rivalry between her and the Bangladesh skipper, Nigar Sultana Jyoti. And surely, Jyoti will be making herself as audible as possible. Just indicating to the bowler that she wants her to attack the stumps. This time it's on the stumps, but it's driven down the ground. Harmanpreet retains strike with a single. She moves along to 2. And after 13 overs, India are at 101 for 4.
1: So, 13 overs ke baad, Bharat ne bana liye hain 101 run. 4 विकेट के नुकसान पर कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आई हैं जेमिमा रॉड्रिग्स का साथ निभाने के लिए. जेमिमा रॉड्रिग्स ने 5 गेंदों में 4 रन बनाए हैं और हरमनप्रीत ने 3 गेंदों में 2 रन बनाए हैं. मान्यता प्राप्त भारतीय बल्लेबाजों की अंतिम साझेदारी, इसके बाद दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी के लिए ज़रूर आएंगी. वो भी बहुत अच्छे रन बनाती हैं, अच्छी बल्लेबाज मानी जाती हैं. बहुत मौकों पर उन्होंने भारत के लिए अहम पारियां खेली हैं. राधा यादव भी भारत की बल्लेबाजी में एक अहम नाम है. उन्होंने भी, आपको याद होगा कि जो पिछला विश्व कप खेला गया था उसमें कई भारत को मैच जिताने वाली पारियां खेली थी. फिलहाल स्ट्राइक पर हरमनप्रीत कौर, 42 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता भारत को इस मुकाबले को जीत कर 2 अंक अर्जित करने के लिए. और इस नए ओवर की पहली गेंद जिसको कट किया, लेकिन पॉइंट पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग के बावजूद 1 रन जरूर लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज. और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की शुरुआत हुई है. बांग्लादेश को अपना अंतिम मैच लॉर्ड्स में खेलना है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 जून को, और उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को अपना मुकाबला खेलना है. अगली गेंद, इस बार इस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है ऑन साइड में. जब तक मिड विकेट की फील्डर आ गया है, गेंद को उठाकर वापस करें. 1 रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में, बढ़ता हुआ स्कोर 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर. भारत ने पिछला विकेट 98 के स्कोर पर ऋचा घोष का गंवाया था और

0: के बाद से यह साझेदारी भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बार स्वीप करने का प्रयास, बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आई नहीं, जड़ पर टकराई, एक रनआउट का मौका, लेकिन मौका हाथ से जाता हुआ बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर खड़ी हो गई थी और वापसी की कोई संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही थी। थ्रो आया और थ्रो पकड़ा नहीं जा सका, गेंदबाज ने उस थ्रो को पकड़ा नहीं और फिर वापस जेमिमा लौट आई अपनी क्रीज में। ये किस्मत यहां पर जेमिमा के साथ।
1: कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स एवरीवेयर। फर्स्ट हरमनप्रीत लुकिंग फॉर द स्वीप, जेमिमा वाज वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड, ऑलमोस्ट रीच द अदर एंड, देन हैड टू पुट द स्किड्स ऑन एंड कम ऑल द वे बैक, एंड इट वाज अ पुअर थ्रो टू बी फेयर, and Nahida just couldn't get enough control over that. Had it been on the stumps, that would have been a fifth wicket for Bangladesh.
0: Agli gend, is over ki chauthi gend, aur is baar is gend ko seedhe balle se samne khela long on ki taraf, ek run ke liye kaptan Harmanpreet ne. Ye wicket agar Bharat ne run out ke roop mein gawaya hota to nishchit roop se Bangladesh ki wapsi zordar tarike se is mukable mein ho sakti thi, lekin ye ek aasan sa mauka Bangladesh ke haathon se fisla hai. भारत के लिए राहत की बात कि अभी भी जेमिमा मैदान पर है और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रही है। इस बार फुल टॉस गेंद, इसको खेलना चाहती थी ऑफ साइड में, हालांकि जड़ में गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में, यॉर्कर गेंद एक तरह से हो गई थी जेमिमा के लिए। किसी तरह से अपने विकेटों से दूर ढकेला इस गेंद को, रन कोई नहीं मिलेगा। 104 अभी भी स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर, रिक्वायर्ड रन रेट 5.35 का। अगली गेंद इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, गेंद की लाइन को चुकी है, एक अपील हुई है विकेट कीपर की तरफ से, और क्या ये तीसरे अंपायर को फैसला रेफर किया जाएगा, इस बात का इंतजार। हालांकि जेमिमा के शारीरिक भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि क्रीज में अपने मौजूद थे।
1: Yes, but another tidy over, Dharmendra. So exactly what we were discussing about 3-4 overs ago, that you have a few tidy overs and you suddenly push that required run rate up to the vicinity of 6. And now from 6 overs, India need 33. And you have two players who are high quality, high pedigree, but just short on runs in this World Cup campaign. And it's being reflected in the way that they're batting. Harmanpreet Kaur, her batting ability or her batting form has been a topic of discussion. 36, 12 and 4, 24 thus far in this World Cup. Jemima Rodrigues 1, 19 and 12. And they are batting like they are under pressure. That run out chance also created because they were so desperate to switch ends. And it's just the moment that Bangladesh were probably looking for in this successful defense, if they are to get there, to get a couple of out of form batters in there and put the squeeze on them. And that's begun happening. This partnership has just about come into form the last few overs or so. Just 6 runs. How many balls faced between the two of them? If we can get those numbers in as well. But yes, just a tight squeeze coming in. 10 balls faced. So that just tells you that they are feeling that pinch and India not being able to maintain the momentum which was provided early on, especially by Shefali Verma. So since her wicket, it's been a pretty different story. Astika Bhatia losing a wicket, then Richa Ghosh also falling. And in that last over, we nearly saw a rather tragicomic moment. But it turned out well for India. But it could so easily have led to the dismissal of Jemima Rodrigues, Dharmendra.
0: Yeah, ye wicket Bharat ke liye kaha ja sakta hai ki tohfe ki tarah aaya. Kyunki ek hi chhor par lagbhag dono ballebaaz khadi ho gayi thi. Aur wahan se wapsi ki sambhavna to na ke barabar thi. Agar wo throw दूर न गया होता और उस थ्रो को गेंदबाज ने सफाई से पकड़ लिया होता तो फिर जेमिमा इस समय मैदान पर नहीं, पवेलियन में होती। लेकिन सुरक्षित हैं अभी और 5 रन बनाकर खेल रही हैं। हरमनप्रीत कौर 4 रन बनाकर खेल रही हैं और ये साझेदारी अब तक 12 गेंदों में, बल्कि 10 गेंदों में 6 रन की हुई है। रिचा घोष ने 12 गेंदों में 10 रन बनाए थे।
1: And Dharmendra, another very interesting factoid pointed out by our scorer Venkat Balreddy, that only one extra in this inning so far, just the one wide. So that tells you that Bangladesh have bowled with a considerable amount of discipline. But now is the time for some hard decisions because they've only used 5 bowlers. Do they go to a 6th bowling option? Now do they bring back Sanjeeda Akhtar because she's been a little expensive? Indeed, the skipper does go to her because she's the left-arm spinner. She's got 2 right-handers in front. There was a little drinks break just ahead of this over and that's when Nigar Sultana Jyoti took that opportunity to have a chat with her girls and just to tell her, just to remember.

0: गा और वहां पर टक्कर होते होते बची है। ये तीसरा मौका है जब रन लेने के दौरान दोनों के बीच तालमेल की काफी कमी दिखाई है देवायन।
1: एब्सोल्युटली एंड टू सीनियर प्लेयर्स एंड हरमनप्रीत इन पर्टिकुलर जस्ट लुकिंग सो ऑफ कलर। शी इज गोइंग फॉर रिस्की सिंगल्स, शी इज रनिंग अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट इनिंग्स फॉर हर। इफ शी स्टेज नॉट आउट देन इट विल डू हर कॉन्फिडेंस अ लॉट ऑफ गुड।
0: अगली गेंद और इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला है गेंद को, मिसफील्डिंग चारन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: सीधे बल्ले से खेला था इस मौके पर जिमी मा ने, और जिमी मा ने यह ठान लिया है कि अब कुछ भी हो बड़े स्ट्रोक्स लगाने ही है, जल्दी से जल्दी मैच को समाप्त करना है। इस बार लगभग ओवर पिच गेंद थी, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला, रोका जा सकता था इस गेंद को, लेकिन थोड़ी सी गेंद घूम गई पड़ने के बाद और गेंदबाज काफी निराश थी। इस चौके के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 128, चार विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास और इस गेंद को फिर से चार रन के लिए खेला है।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: फिर से सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक सामने की तरफ लगभग उसी दिशा में, और ये चौका एक और आता हुआ जेमी मा के बल्ले से। स्कोर भारत का बढ़ता हुआ 128, चार विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 9 रन चाहिए, 27 गेंदें बची हुई हैं। महंगा ओवर एक और चलता हुआ इस समय रितु मोनी का। रितु मोनी को एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन इस ओवर में अभी तक दो शानदार चौके जेमी मा ने जड़ने में कामयाबी हासिल की है। दबाव गेंदबाज के ऊपर, कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं और अब अगली गेंद खेलने के लिए तैयार जेमी मा। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी इस समय जेमी मा की तरफ से। दोनों के बीच अभी तक 19 गेंदों में 30 रन की साझेदारी, बहुत तेज तर्रार साझेदारी।
1: Absolutely, and 24 of the last 9 balls, but that first run of that 9 balls could have resulted in a run out.
0: अगली गेंद को इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद और ये कैच लपका गया। जेमी मा का विकेट आखिरकार भारत ने गवाया है। खेलना चाहती थी ऑन साइड में, बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद ने, पॉइंट पर गई गेंद और एक आसान सा कैच। इस तरह से जेमी मा की एक तेज तर्रार पारी का समापन हुआ है। जेमी मा रॉड्रिग्स कुल मिलाकर 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई हैं, 3 चौके और 1 छक्का उनकी इस पारी में। लग रहा था कि उन्होंने जो निराशा का दौर था उससे पार पा लिया है, लेकिन उनकी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मैच जीत कर भारत को नेट रन रेट में और बेहतर स्थिति में लाया जा सके, उसी कोशिश में उन्होंने अपना विकेट गंवाया है। हालांकि भारत के सामने अभी भी कोई खास परेशानी नहीं, 26 गेंदों में अब सिर्फ 9 रन चाहिए, 128 पर भारत ने 5वां विकेट गंवाया है।
1: Absolutely unselfish batting from Jemmy Ma, going for the big hit, and it looked initially that she had absolutely middled it, but went off the leading edge and was gleefully accepted at backward point inside the circle by Maroofa Akhtar. And that brings the all-rounder Deepti. Didn't quite get that 356th international wicket today with the ball. It was more than handy, 4 overs, none for 23, and now has a chance to put the finishing touches. But what Jemmy Ma, especially in that last short burst across the last 2 overs, has done is made this a much, much more favorable equation. Had Harmanpreet's wicket fallen when she went for that almost suicidal looking single, then things would have been completely different, but Bangladesh have missed a lot of opportunities today.
0: अगली गेंद दीप्ति शर्मा के लिए। दीप्ति ने इसको हल्के हाथों से खेला है 1 रन के लिए और फिर दूसरे रन को तलाश रही थी, लेकिन उसकी संभावना थी नहीं। 1 रन से और बढ़ता हुआ स्कोर भारत का 129, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 8 रन चाहिए 25 गेंदों में, 1 गेंद अभी भी इस ओवर की बची हुई है। दीप्ति शर्मा ने पहली गेंद पर ही अपना खाता खोला। जेमी मा एक अच्छा बल्ले का जोर दिखाते हुए वापस मैदान से लौटी है। इस गेंद को 1 रन के लिए अंतिम गेंद को खेला है इस मौके पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, और इस 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति हुई। कुल मिलाकर 130 भारत का स्कोर 16 ओवरों के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। हरमनप्रीत कौर 8 रन बनाकर खेल रही है, दीप्ति शर्मा ने 1 रन बनाया है। स्ट्राइक पर एक बार फिर से हरमनप्रीत रहेंगी।
1: सो जस्ट 7 रन टू विन एज रितु मोनी बिकम्स द फर्स्ट बोलर टू बोल आउट हर कंप्लीट स्पेल, 2 for 29, द मोस्ट सक्सेसफुल अमंग द बांग्लादेश बोलर्स। Wickets also for Maroofa Akhtar, Rabia Khan and Nahida Akhtar. But the left-arm spinner Nahida coming on very late, and that's probably one tactical error that they made. Had she come on earlier, maybe they could have had a way of stopping Shefali before she had done all that initial damage. So Shefali Verma with 53 from 34 Impressive also from Yastika, 23 from 18. And Jemima with a neat little innings, 26 from 15 balls, the three

0: प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत है।
1: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबकी मन की।
0: मेरे लिए मन की बात ये कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
1: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
2: प्लेयर ऑफ द मैच
3: शफाली वर्मा के 53 रनों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर
4: मैच जीता है और शफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया है। सीधा चलेंगे मैनचेस्टर, जहां पर सुनेंगे कि क्या कह रही है प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा।
5: 3 of 34, top scored in the last game and in this one. How pleased are you with your batting this tournament?
6: Yeah, of course, very happy the way I batted today. But if I will be no doubt, that will be so happier for me. But yeah, good confidence today and so happy I can grab some runs.
5: 136, I think it's fair to say you might have thought you'd be chasing a little less. What was the chat when you went out to chase and what was the plan in the power play?
6: Nothing much, just backing our batting, just whatever loose ball will come, we'll just go for the 4 or maybe 6, or otherwise we'll go for 1 run. So it's just a normal talks, not the different thing.
5: Any particular shots that you've been working on that you feel are now coming out very nicely?
6: Well, just try to, you know, choose the right ball, whatever come in my in my zone, just go for that. Otherwise, take single. It's just a very simple thing, but sometimes it's complicated a lot. But I just talk to myself a lot this time, and yeah, it's going good. I'm so happy for that.
5: What did you feel about when you got out and how you got out?
6: Of course, sad. The way I got out, as I said earlier, if I will be the not out and. That will be more happier for me.
5: I want to ask you one quick question on your bowling. You're now India's opening bowler as well. How much are you working on your bowling? At what point did this become a regular plan that yes, Shifu's going to play a big role with the ball?
6: Well, of course, in the nets I used to bowl with the new ball and with the old ball. Sometimes I laugh a lot, but in the end, what our team need, I'm there for that. And thanks to Harmandi, she always give me a lot of confidence when I bowl, give me a very good field set. So just thanks to her.
5: Ready for Australia?
6: Yeah, of course. We'll go to London and see them.
5: All right. Well done today. Good luck for that one, Shefali.
6: Thank you.
3: ये थी प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा और हम हाजिर हैं इसी कार्यक्रम में इसी नाम से प्लेयर ऑफ द मैच, जो अब आप सबको पता है कि कौन है। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया।
4: बहुत बहुत शुक्रिया मुदिता। और हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का एक पैनल जिसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व भारतीय सेलेक्टर चेतन शर्मा। बहुत बहुत स्वागत चेतन, एक बार फिर आपका
7: धन्यवाद।
4: साथ में साथ के साथ हमारे साथ जुड़े हैं विजय धैया, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। विजय, वेलकम टू द शो वंस अगेन।
8: थैंक यू सो मच।
4: और उसके साथ साथ क्रिकेट जगत पर अपनी पैनी नगाह दशकों से रखने वाले शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद है, जाने माने खेल पत्रकार। शशांक, बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
9: धन्यवाद।
4: चेतन जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे और वहीं से उठाएंगे जहां पर शेफाली ने छोड़ा। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा बड़े हरफन मौला अंदाज में कि विल गो टू लंदन।

0: एंड देन वी विल सी देम. ये जो एटीट्यूड है ये कितना जरूरी है.
1: मैं कॉन्फिडेंस कहूंगा इसको. देखिए बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस है. जब जीत, देखिए हर समय इंपॉर्टेंट है कि आप जीतते हैं, जीत से सीखते हैं. क्या भारतीय टीम ने सीखा ये तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि ये ड्रेसिंग रूम की बातें हैं, वो बाहर आएंगी नहीं. लेकिन एक कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छी बात लगी. मतलब शिफाली, मैं पहले से बात कर रहा था जब हम मिड शो में बात कर रहे थे, ऊपर से स्टार्ट मिलेगा आप इस मैच को जल्दी ख़त्म कर देंगे. नेट रन रेट का मुझे चिंता ज़्यादा नहीं है. देखिए आपको मैच जीतते चले जाएंगे, नेट रन रेट तो आएगा ही नहीं सामने. तो अब आपने बांग्लादेश को मात दी, अब आपकी ऑस्ट्रेलिया की बारी. आपको रणनीति प्लान करना है. अच्छी बात है. कुछ जो मुझे समझ आई है, जमीमा का भला चला आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. शिफाली ने ऊपर से रन बनाए. स्मृति की कोई टेंशन नहीं है, देखिए वो अपना रन बना देती है. वन ऑफ आप आउट हो गए आज. तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो रन्स बने हैं आपके. तो जब रन्स बनते हैं तो इम्पॉर्टेंट है. लेकिन कुछ चीज़ें जो बीच में हुई हैं, रनआउट्स, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आप तालमेल आपका नहीं है वो थोड़ा सा बना के रखिए. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको ऐसे मौके नहीं देगा जो बांग्लादेश ने आपको मौके दिए. ऐसे रनआउट्स कभी वो छोड़ेगा नहीं. तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें इंप्रूवमेंट है. हर समय क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आप करते हैं. देखिए कभी आप परफेक्ट नहीं है, आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है. इंप्रूव करते जाइए, जीतते चले जाइए.
2: जी बिल्कुल. शफाली खुश नहीं थी आउट होने से और उन्होंने कहा कि मैं तो चाहती हूँ मैच फिनिश करके जाऊं. शायद ये हम सब भी देखना चाहते हैं. विजय चेतन ने बात की शफाली के कॉन्फिडेंस की, इसके अलावा मैच्योरिटी और इंटेंट भी दिखता है अब उनकी इनिंग में.
3: आई थिंक इंटेंट आपको हमेशा नजर आएगा, पर जिस तरीके से जो स्ट्रोक प्लेयर होते हैं ना, जब ये खेलते हैं तो मिलियन डॉलर लगते हैं, जब आउट होते हैं तो कई बार आपको ये लगता है कि इस नादानी की ज़रूरत थी क्या, पर वो खेलते ही इसी तरीके से हैं. आप किस इस फॉर्मेट में किसी भी तरीके को खिलाड़ी के देखेंगे जो इस इंटेंट से खेलेगा, जो आपको पारी की इस तरीके की शुरुआत देगा, उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम नजर आएगी क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क उठाते हुए आपको नजर आते हैं, वो इस तरीके की क्रिकेट ज़्यादा खेलते हुए नजर आते हैं. आप जब इस स्टेज पे लगातार रन बनाने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है. उनको कॉन्फिडेंस शायद इस बात से भी अब देखने को लग रहा है कि जिस तरीके से उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिंग में भी दी जा रही है. सिर्फ यही है कि प्लेयर सारे बढ़िया ही होते हैं, उनको किस तरीके से आप महसूस कराते हैं और उनसे बेस्ट कैसे ले सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और फिर वो अपने आप को एक प्रमुख अंग उस टीम का मानने लगते हैं, जो मुझे लगता है धीरे धीरे शेफाली को वो महसूस हो रहा है कि मैं सिर्फ इस टीम में खेल नहीं रही हूँ, मैं एक प्रमुख उस तरीके की खिलाड़ी हूँ कि जिसके ऊपर सबकी नज़र रहती है और मेरा योगदान बहुत महत्वपूर्ण है.
0: और नज़र हो भी क्यों ना, नोवा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है उनका. और वुमेन्स टी ट्वेंटी आईज में सिर्फ हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज और स्मृति मानधना के पास उनसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं. लिव बाय द स्वॉर्ड, डाई बाय द स्वॉर्ड, दैट्स व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर शी इज. बट अनदर गुड पॉइंट दैट चेतन रेज्ड शशांक वॉज जमीमा स्कोरिंग दोज रन्स, बिकॉज अर्लियर वी सॉ in the last three matches she looked a little bit scratchy, but the boundaries started flowing towards the end.
4: Yes, that bodes well for India as they take on Australia come Sunday. Jemima, you know, she looked as if she wants to finish the match as early as possible, also keeping in mind probably the run rate. But she took on the spinners and hit some lusty blows, and she was trying another which got her out. So this is not a typical Jemima innings. It was a breezy cameo, but it came at the right time for India, and it helped India finish the match well before the final over. So that's, and she was timing the ball well. Now she came in the middle order. Earlier she used to bat at number 3, where she had more time to build an innings and all. But if she's coming at 4 or 5 or even 6, then she needs to, you know, start hitting from the word go. And she tried to do that, and she was successful to a large extent today, which is good for India.
2: जी. और अगर हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास भी हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. नंबर्स है 2342-1083 और 2342-1085. इसके पहले दिल्ली का कोड 011 लगाना ना भूले. बैटिंग की बात चल रही है विजय, तो यस्तिका भाटिया इस मैच में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है. जो कहा जा रहा था कि जिसकी वजह से हम उनको प्रेफरेंस दे रहे थे कि एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनता है और पावर प्ले में बढ़िया प्रदर्शन वो कर सकती हैं, क्या लगता है कि अगले मैच के लिए उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है आज के परफॉर्मेंस के बाद?
3: जिस तरीके से अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में इंजरी के बाद उनकी वापसी हुई है, उनके ऊपर जो विश्वास दिखाया गया है, वो टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो एक बहुत

0: महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं वो आपके लिए, और उनकी जगह भी वही है, वो टॉप थ्री में ही बल्लेबाजी आपको करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जमैमा के हम बारे में बात करते हैं, जिस तरीके का उनका खेलने का तरीका है, वो जितने ज़्यादा नीचे बैटिंग ऑर्डर में से जाएंगे उतनी ज़्यादा उनके लिए और ज़्यादा चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की खिलाड़ी हैं कि थोड़ा सा समय ज़रूर लेती हैं, लेकिन फिर वो समय लेने की भरपाई आखिरी में आके ज़रूर कर लेती हैं। वो वैसे खिलाड़ी के लिए शुरू से ही अटैकिंग खेलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। रिचा उस नंबर पर नहीं आती जिस नंबर पर आज बल्लेबाजी करने आई थी, नॉर्मली आप उन्हें चार पर बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखती, वो एक फिनिशर का रोल उनका रहता है। तो शायद आज टीम टैंक है, जो थिंक टैंक है, उनका ये सोचना था कि शायद इस मैच में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। रिचा के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बढ़िया नंबर है, तो शायद इस वजह से आप चाहते थे कि थोड़ा सा गेम टाइम उनको और ज़्यादा मिल जाए इस मैच के अंदर, पर वो खेलती एक ही तरीके से, उनको ये नहीं रहता ऑपोजिशन क्या है, उनको ये रहता है कि अगर बॉल मेरे हाफ में है तो वो अपने आप को बैक करती हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना है तो तीन चार प्रमुख जो खिलाड़ी हैं आपके बल्लेबाजी में, उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उस दिन।
1: जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौती होने वाली है कड़ी, और मस्ट विन चुनौती होने वाली है। खैर, मस्ट चीजों की हम बात कर रहे हैं, मस्ट इज आर कॉलर्स एंड यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन आर नंबर्स एंड जॉइन इन इन द शो। वी हैव वन कॉलर ऑनलाइन, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, अपना नाम बताइए।
2: जी, मैं विक्टर कुमार से बोल रहा हूँ।
1: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं समस्तीपुर ग्राम पोस्ट बोचा मोहिद्दीन नगर से बैरव फिले जिला से बात कर रहा हूँ।
1: जी, अपना सवाल बताइए।
2: तो सवाल ये है कि महिला टीम का इतना खराब फील्डिंग तो कभी नहीं चल रहा था, इतना खराब क्यों फील्डिंग चल रही है?
1: जी,
2: ऐसे में तो ये बड़ा मुकाबला में कभी भी महिला टीम नहीं ये असर कर पाएगी।
1: जी जी जी, हम आपका सवाल जरूर लेंगे, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। चेतन भाजी, वहीं पर बात घूम फिर कर आ गई है जो मिड इनिंग शो में हमने दोबारा डिस्कस की थी, और शायद सवाल वैलिड भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप चार कैच छोड़ेंगे तो फिर वहां पर मुश्किलात हो सकती है।
3: देखिए, आप किसी के खिलाफ भी अगर मैच खेलते हैं, उनके खिलाफ आप कैचेस छोड़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप सोचिए, अगर आपने आज कैचेस सारे पकड़े होते तो 110 के आसपास टोटल होता, तो यू वुड हैव इजीली वन दिस गेम 14-15 ओवर्स में आप मैच को जीत लेते। तो आज आपने जीत हासिल की है, वो इम्पोर्टेंट है।
1: जी, और अब सीधा लेके चलेंगे आपको मैनचेस्टर, वहां पर सुनेंगे कि कप्तान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सुनेंगे बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना को।
4: See, we have created a lot of chances in the middle, especially in the bowling, so we couldn't grab them, so they take this game away from us, and I think the way we actually bowled in the last game, we couldn't bowl.
5: How was 136 at halftime? Were you satisfied with the batting effort?
4: We are short of 15 to 20 runs, and we had a good start in the power play, what we are looking for with the last few games. So, but we couldn't carry on in the middle, and in the last few overs of the innings, I think what we should accelerate on that time, so couldn't capitalize ourselves.
5: Positives even after the power play when India were looking strong. You stayed in the game in the second innings break also, you got your team around, India needed 33-36. What was your message then to still try and keep the game alive? You still had a foot in the game at that stage.
4: Yeah, we are talking about like anything can happen anytime, so just be positive and try to bowl in the right areas, and try to be so calm. If it is the opportunity come, you have to grab it. So somehow I think we lost the momentum, and they played really well.
5: Are you happy with the progress the team has made in your first international cricket in England? It's not like you've had a lot of experience over here. Are you satisfied with the progress overall?
4: See, it's not about success every time. I think the way this whole unit actually growing day by day, and a lot of young players come up each and every game individually. So it was a kind of a success for me, but still we are here to win, and we had a massive opportunity to do well here, but I think I'm really proud the way I actually played.
5: What will it mean for you and your team to play at Lord's?
4: I guess this is a good opportunity for us, because being there is a good for the team. We really wanted to create some good memories there, and we are looking for the last game.
5: All the very best for that game. Tough luck today, Jyoti. Thank you so much. And now might I invite the winning captain, please, India's Harmanpreet Kaur. Harman, job done. How satisfied or happy are you about how you got the job done today?
6: Well, I think it's a good win. You're looking for this, and good that we'll we thought we'll finish a bit early, but unfortunately, you know. But still, I think two, three overs were there when we finished the game. So I think, yeah, that's a plus point for us.
5: What still needs improvement in terms of priority for you?
6: I think a lot of things, but I think fielding is something, you know, which we have been working really hard. But unfortunately, today again, we.

0: thinking, let's finish one opponent here in the league stage itself. So it's, I think the pressure is going to be on the Indian side playing against the top side, plus everything on stake.
1: एवरीथिंग ऑन स्टेक. और आपको ये बता दें कि उससे पहले एक और मुकाबला होने वाला है जो भारतीय दृष्टिकोण से अहम है, वो है दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच जो मुकाबला अब से कुछ देर में होने वाला है. ब्रिस्टल में ये मुकाबला है जिसका टॉस हो चुका है. नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. चेतन भाजी, ये थोड़ा सा भारत के लिए खतरे की घंटी है क्या, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास मौका है बड़ा स्कोर बनाने का और वो बड़ा नेट रन रेट बूस्ट पाने का.
2: देखिए मुझे, मैं अगर आप मेरी अपनी सोच से मैं बात करूं, तो मुझे दूसरे मैच में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने मैच के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है. ठीक है, अगर एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका हार जाते हैं वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन आप उसके ऊपर वो नहीं कर सकते, आप निर्भर मत रहिए. देखिए दूसरे के ऊपर निर्भरता और देन आप सोच रहे हैं वो हारेगा मैं जीतूंगा, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस. आपने आज अच्छी क्रिकेट खेली, यू डिड वेल, आप क्या यहां

0: जाते हैं वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन आप उसके ऊपर वो नहीं कर सकते, आप निर्भर मत रहिए। देखिए दूसरे के ऊपर निर्भरता और देन आप सोच रहे हैं वो हारेगा मैं जीतूंगा, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। आपने आज अच्छी क्रिकेट खेली, यू डिड वेल, आप क्या यहाँ से सीख कर गए हैं, आपने क्या गलतियाँ की उस पर सुधार कीजिए। एंड अगर जो नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का होना है वो मालूम पड़ जाएगा आपको 3 घंटे के अंदर, लेकिन आप अपनी तैयारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कीजिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो वैसे ही आप थ्रू हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो जो आपके हाथ में जो आपको करना है वो आप कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
1: मुझे लगता है कि रन रेट तस्वीर में नहीं आने वाला है,
0: बहुत
1: हाँ जिस तरीके से आप पॉइंट्स टेबल की तरफ नज़र डाल रहे हैं उसमें रन रेट बहुत बहुत मुश्किल है कि रन रेट वहाँ पर आए। सीधा सीधा है दोनों टीमों के लिए, आप अपने बचे हुए मैचेस जीतिए और जिंदा रहिए
2: जी। और अगला मैच नॉकआउट मैच हो सकता है भारत के लिए। विजय अभी आप बात कर रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक्सेल तो कर ही रहा है इस टूर्नामेंट में भी, लेकिन साथ ही साथ वो जिस किलर इंस्टिंक्ट के साथ खेलने उतरता है तो यू नीड दैट मेंटल स्ट्रेंथ, दैट माइंडसेट टू बीट देम।
1: तो वो मेंटालिटी ओवरनाइट नहीं बन सकती है, आपको उसकी तरफ अग्रसर होना पड़ता है। और जैसे ही हमने प्री शो में भी ये बात करी थी कि ये टीम एक बनती हुई टीम है, इस तरफ की तरफ आप नज़र डालें, बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम के अंदर ऐसे हैं जिनके लिए पहला वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप से हमारी एक्सपेक्टेशन जो है अगर आप उस तरफ नज़र डालेंगे तो उसमें आप कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे बॉक्सेस हैं जिनको टिक करते हुए नज़र आएंगे। दूसरी तरफ आप अगर उस टीम की तरफ नज़र डालेंगे ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपको ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे नज़र आएंगे जिनके पास बड़े मैचेस खेलने का अनुभव है। तो जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं वो तभी खेलते हैं जब लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और वो सिर्फ स्किल सेट नहीं है, एक बहुत चीज़ आपने यहाँ पर जिक्र की मैंटेलिटी। आई थिंक वो जिस मैंटेलिटी से उतरते हैं वो एक विनिंग मैंटेलिटी है। आप उनसे खेलते वक्त सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हम अपने अच्छे दिन पे जीतेंगे, कई बार आप ये भी सोच रहे होते हैं कि हमारा अच्छा दिन तो होगा, क्या उस दिन ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा ख़राब दिन हो सकता है जहां पर हम उनको पकड़ सकते हैं। इस तरीके की धाक कुछ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पिछले कुछ समय में जमाई है, और इसी वजह से आप सिर्फ उनको स्किल से नहीं हरा सकते, आपके उस दिन मानसिकता भी उनसे बेहतर होनी चाहिए।
3: खैर हम ये बैठे आकाशवाणी के स्टूडियो में ये सोच रहे हैं कि हमारे लिसनर्स क्या सोच रहे हैं, सीधा जुड़ते हैं एक लिसनर के साथ और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि आज की जीत पर। नमस्कार, अपना नाम बताइए।
4: नमस्कार, मेरा नाम राम अवतार है, मैं कैथल और हरियाणा स्टेट से बोल रहा हूँ। सर
3: राम अवतार जी, क्या सवाल करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से?
4: मेरा शहर सर, पहले तीनों क्रिकेट के जगत गुरुओं को नमस्कार मेरा।
1: नमस्कार जी।
4: और मैं सर ये चाहता हूँ कि जैसे यस्तिका भाटी को हम 3 नंबर पे उतार रहे हैं, तो 3 नंबर पे उतार के और हरमन को उतार के और ऋचा को उतार के फूलमाली को क्यों नहीं उतार सकते हम? वो भी एक बहुत बेहतर बैट्समैन है, आईपीएल में हमने देखा उसका जलवा।
3: जी जी जी। तो
4: और एक मैच से हम जज तो नहीं कर सकते ना किसी को कि मिस गया उसका।
3: जी शशांक, वेलकम टू यू विद दिस क्वेश्चन। भारती फूलमली स्टार्टेड ऑफ इन इंडियाज फर्स्ट प्लेइंग 11 व्हेन दे फीचर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, नाउ फाइंड्स हरसेल्फ आउट ऑफ द प्लेइंग 11, हाउ डू यू सी इट?
5: सो अभी जैसा कि हमारे कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि अब आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने मैचेस में इस वर्ल्ड कप में और 15 खिलाड़ियों को आपने खिलाया है, तो सारे खिलाड़ियों को आपने टेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने शुरू में ही ये सोच रखा था कि शुरू से ही कि जैसे मैच हम खेलेंगे हमारी अपोजिशन जैसी होगी उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से हम अपनी टीम चुनेंगे, जिसको हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कहते हैं। तो उस फुलमनी ने पहला तो मैच खेला, उसके बाद इनको लगा कि शायद वो कॉम्बिनेशन जो वो उतारना चाहते हैं वहाँ पे उनकी जगह नहीं बनती है। इसका अर्थ कहीं से भी ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी खिलाड़ी नहीं है, इंडियन टीम में है, इंडियन स्क्वाड में है, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में हम देखें उनको खेलते हुए, ये संभव है।
3: विजय, कुड इट बी द लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम स्मृति एंड दीप्ति देयर इज नो अदर लेफ्ट हैंडर इन दैट ऑर्डर, डू यू थिंक दैट इज व्हाई दे हैव हेज्ड देयर बेट्स ऑन यास्तिका भाटिया?
1: आई थिंक बिफोर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन नीड टू अंडरस्टैंड, और एज अ टीम मैनेजमेंट फॉर अस सिटिंग हियर नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे फील, हु दे थिंक इज कैन गिव यू द बेस्ट at the moment they feel that Yastika Bhatia can give them what they're looking for, then comes the combination, left and right hand combination. You have to pick up the best batter in the side. In their eyes at the moment it's Yastika Bhatia, and that's the reason why they're going with them. It's very simple to understand sometimes. You know, what happens is whoever is not playing, it's very easy to advocate and say that person can play as well. But the people

0: matter at the moment. They think that this is the person who can do the job for us, and they back that person.
1: जी विजय, थोड़ी देर पहले आपने रिचा घोष की बात की. रिचा नीड्स सम टाइम एंड देन शी एक्सप्लोड्स. व्हेन शी गेट्स मोर टाइम शी प्रूव्स टू बी मोर इम्पैक्टफुल एंड ऑलमोस्ट सेम एज विद जेमी ऑल्सो. शी परफॉर्म्स बेस्ट व्हेन शी हैज टाइम टू रोटेट द स्ट्राइक एंड देन एक्सेलरेट. आज के मैच में रिचा घोष को ऑर्डर में पहले भेजा गया. क्या ऐसा ही कुछ आप अगले मैच में एक्सपेक्ट करेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डिसीजन लेंगे?
0: अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही है, क्योंकि आज रिचा का उस नंबर पे आना आप नॉर्मली उन्हें देखते नहीं है. पिछले कुछ समय में अगर आप देखें कोई भी फॉर्मेट रहा है, चाहे 50 ओवर की बात करें या T20 की बात करें, आपने हमेशा उनको एक फिनिशर के रूप में इस्तेमाल किया और उन्होंने वो काम किया भी है. लेकिन कई मैचेस ऐसे भी रहे हैं जहां पर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे और आपकी उतनी विकेटें नहीं गिरी थी, लेकिन वो मोमेंटम आपको चाहिए था, तभी रिचा का बैटिंग ऑर्डर हमेशा थोड़ा सा चेंज किया गया है. क्योंकि उनकी पास जो एबिलिटी है, कई बार आपके पास बीच में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो आपको गेम सेटअप करके देते हैं. जेमी का आपने जिक्र किया, वो कुछ इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि गेम सेटअप करके देती हैं. कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो गेम सेटअप करते हैं, कुछ होते हैं जो मैच को फिनिश करते हैं. पिछले कुछ समय में रिचा आपकी फिनिशर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनका इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाएगा. लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ बराबर की लड़ाई लड़नी है, तो आपके जो अपने इस तरीके के खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलती हैं. उनको सिचुएशन और ऑपोजिशन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को बैक करती हैं और ऐसे ही खिलाड़ी बढ़िया टीमों के खिलाफ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं.
2: एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे. ऑस्ट्रेलिया 4 में से 4 मुकाबले जीतकर ग्रुप ए में इस वक्त शीर्ष स्थान पर बना हुआ है. भारत ने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जिसके बाद आज भारत नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसने 1 मुकाबला कम खेला है. 3 में से 2 जीत उनके नाम अर्जित है, और अगर आज दक्षिण अफ्रीका नेदरलैंड्स को हरा देता है तो फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका बराबरी पर आ जाएंगे. और बात आएगी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वर्सेज बांग्लादेश, ये दोनों ही मुकाबले लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जाएंगे. चेतन बाजी, थोड़ा सा हम चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को बताएं, क्योंकि आप तो लॉर्ड्स में खेले हुए हैं, बार बार चर्चा होती है लॉर्ड्स पर उस स्लोप की और अलग डायमेंशंस की, क्या परिस्थितियां रहती हैं वहां पर और क्या वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना होगा, खासकर हमारे बॉलिंग यूनिट को?
3: देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप स्लोप के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दें, बिकॉज हम लोग एज ए क्रिकेटर्स स्लोप के यूज टू नहीं होते हैं. हर ग्राउंड का डिफरेंट डायमीटर्स है, तो हर ग्राउंड पे आप जाएंगे आपको डिफरेंट कुछ ना किसी का अप द हिल आपको गेंदबाजी करनी है, कोई डाउन द हिल है, और लॉर्ड्स में भी ऐसा है, एक डाउन द हिल है, एक अप द हिल है. वो प्लेयर्स को बहुत जल्दी अनुमान लग जाता है उस चीज़ों का. और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. देखिए, लॉर्ड्स द मक्का ऑफ क्रिकेट का हर समय कहा जाता है. एक आपकी उम्मीद रहती है, एक तमन्ना रहती है कि आप लॉर्ड्स में जाएं और वहाँ प्रदर्शन करें. देखिए, लॉर्ड्स में खेलना एक अपने आप बड़ी बात है, लेकिन वहाँ पर खेलकर जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी आप अच्छा प्रदर्शन कुछ करते हैं लॉर्ड्स के ऊपर, वो बोर्ड के ऊपर आपका नाम जाता है. वो बोर्ड के ऊपर नाम सारी उम्र रहेगा, तय उम्र रहेगा, और जो भी वहाँ पर जाएगा हर क्रिकेटर आपका नाम वहाँ पड़ता है. तो एक आपके दिल में वो रहती है कि मैं यहाँ जाऊँ, अच्छा प्रदर्शन करूँ और इस बोर्ड में अपना नाम को शुमार करूं. और वो तभी हो सकता है भारतीय टीम के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया को जाकर वहां मात देते हैं. तो मात देना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार आपने हरा दिया उनको, तो ऑटोमेटिक आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं. क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए, जो विजय भी बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया विल गो फॉर ए किल बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू प्ले इंडिया अगेन. वो अगर यहां से जीतती है इंडिया, तो दे हैव टू प्ले इंडिया समवेयर और द अदर. फाइनल्स में मिल सकती है इंडिया, क्योंकि इंडिया में दमखम है, तो दे विल गो फॉर ए किल. तो वो इंडिया को भी अपना पूरा दमखम के साथ क्रिकेट खेलनी जरूरी है.
1: जी विजय, अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम पे नजर डाल लें तो मल्टीपल मैच विनर्स हैं उनके पास. हर मैच में एक नया नाम, एक नया खिलाड़ी उभर के सामने आ जाता है जो जम के खड़ा होता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी उसका साथ दे रहे होते हैं. कभी कैमियोज में कर रहे होते हैं या फिर कभी कुछ और साथ में अच्छे स्कोर्स बना रहे होते हैं. भारतीय टीम को भी एक ऐसे एंकर की जरूरत पड़ेगी. हम जो स्कोर्स देख रहे हैं कि शेफाली वर्मा ने आज शानदार खेला, लेकिन 53 पे जाके वो पारी खत्म हो गई है. वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपनर बेथ मूनी को अगर हम देखें, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 74 वो बना चुकी हैं. पिछले मैच में एलिस पेरी 71 बना चुकी हैं. भारतीय टीम को इस एंकर रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है.
0: अगर आप इस फॉर्मेट की तरफ नज़र डालेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कम रोल है एंकर का. होता क्या है कि जो आपके टॉप 3 हैं उनके पास सबसे ज़्यादा समय है सबसे ज़्यादा बॉलिंग खेलने का, तो वो आपको

0: नजर आते हैं सबसे ज्यादा रन बनाते हुए, या कभी भी आप देखेंगे टॉप थ्री के पास है, तो आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो शीट एंकर का रोल अदा करेंगे। लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर जो टॉप के तीन खिलाड़ी हैं उनका खेलने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आपने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बात करी और जो दो नाम आपने लिए वो वर्ल्ड क्रिकेट में हर फॉर्मेट में अपना लोहा मनवा चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे खेलेंगे, शेफाली से आप कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं कर सकते, उनसे आप इम्पैक्टफुल पारियों की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। जो कंसिस्टेंसी आएगी वो दूसरे छोर से किसी और खिलाड़ी को करनी पड़ेगी, क्योंकि शेफाली अगर इस तरीके का स्टार्ट आपको देती है तो वो प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर डाल देती है, जिसका फायदा दूसरे छोर से उठाना और बल्लेबाजों के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी, और हम उम्मीद करेंगे 28 जून को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा ही इंपैक्ट देखने को मिले। आज का दिन 25 जून भारतीय क्रिकेट में यादगार, क्योंकि लॉर्ड्स के ही मैदान में कपिल देव की उस टीम ने पहली बार विश्व कप उठाया था, और इसी कामना के साथ कि 2026 में T20 विश्व कप भारतीय टीम, भारतीय महिला टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में उठाए, हम लोग आते रहेंगे इस विश्व कप का ब्रॉडकास्ट आपके साथ लेके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। चेतन शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
2: धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच विजय भैया फॉर गिविंग योर टाइम,
0: मोस्ट वेलकम।
1: एंड थैंक यू सो सो मच शशांक शेखर फॉर बीइंग ऑन द
3: पैनल। लेकिन साथ ही चलने से पहले दर्पण हम अपनी टेक्निकल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें शामिल थे जयराम, संदीप दहिया, सुशील कुमार, राम आशीष यादव, और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्शन टीम, जिसमें शामिल थी कविता वी, तन्मय पंत, अमीशा पटेल, और उस सब से भी ऊपर हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
1: इन सभी के एफर्ट्स, सभी के मिले जुले प्रयत्न से ये ब्रॉडकास्ट संभव हो पाया है। उम्मीद करते हैं आपको सुनने में मजा आया होगा। मैं दर्पण, मेरे साथ
3: मुदिता,
1: और हम आपसे विदा लेते हैं 28 जून को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का लाइव ब्रॉडकास्ट लेकर वापस आएंगे, सुनना ना भूलिएगा। नमस्कार।
4: प्लेयर ऑफ द मैच, अभी आप आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
5: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
6: आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम से।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन आया?

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। ICC महिला 2020 विश्व कप में

0: In the Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in at 1:30 a.m. IST. And that's the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।